ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون

वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: station for civilization. 101 Hits FM.
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above. आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Bantu Records, Qawwali Season 1.

0: Alrighto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficial, Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ali Pakistan. Janab se mukhatib, aapka host, aapka dost, DJ Sahil, signing in. Aur janab, kaise aap tamam log, you getting thik thak, everyone fit hai, mazze mein hai, khub enjoy kare apni zindagi ko. Well, mujhe kehte hai Sahil Khan, aur mere saath maujood hai, one and only.
1: Rebecca Abdullah, Assalamu alaikum, Sahil, kaise hai aap?
0: Alhamdulillah, aap kaise hai?
1: Allah ka shukar, bilkul khairiyat se sabhi sunne walo ko, Assalamu alaikum and good morning. It's Sunday morning. और संडे मॉर्निंग आमतौर पर थोड़ी सी लेजी होती है बिकॉज बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि सुबह तो काम पे जाना है
0: हाँ।
1: तो आज हम आराम करेंगे
0: बिल्कुल और ये अच्छी बात है कि हाँ। लोग थोड़ा रेस्ट कर लें
1: लेकिन आज आपको पता है मतलब लिटरली क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई हुई है तो वो और 3 दिन चलेगी और मैं ये सोच रही हूँ घर में काम भी चल रहा है और मुझे इन 3 दिनों में रेडियो में भी आना था साहिल लिटरली ना मुझे अम्मी और अब्बू ने और मेरे अलार्म से भी बोले हैं मैंने अपने अलार्म कॉन्शियस होकर बंद किए हैं कि मैं उठूंगी
0: yes,
1: और मेरी अम्मी अब मुझे जगा रहे हैं तुमने जाना है तुमने कहा था तुमने जाना है हमें बताओ तो हम क्यों उठा जाना है मैं उठ रही हूँ जाना है कहते उठ जाओ फिर क्या मसला है उठ क्यों नहीं रही
0: हाँ।
1: लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो मेडिसिन खाई हुई थी उसमें कुछ गनूदगी थी ना मुझे
0: हाँ
1: तो नींद आ रही थी लेकिन बहुत मुश्किल था बट संडे इज ऑलवेज अ हैप्पी डे फॉर मी बिकॉज मुझे एफएम करना होता है और मैं आमतौर पर कोशिश यही करती हूँ कि मैं जल्दी जाग जाऊँ खैर जिनके घर में बच्चे होते हैं वो वैसे भी जल्दी जागते हैं क्योंकि बच्चे आपको सोने नहीं
0: सोने
1: देते,
0: नहीं देते।
1: हाँ, और अब तो हमारे घर क्योंकि काम चल रहा है तो हमने दरवाजे बंद किए हुए तो हमारी बेटी एक रूम से दूसरे रूम में दूसरे रूम से फिर वापस उस रूम में सिटिंग वेटिंग सारा एरिया ऑक्यूपाई है
0: तो कोशिश करें क्योंकि हफ्स वाला मौसम है तो ये आपको और तकलीफ देगा तो साथ के साथ सफाई रखें
1: प्लीज सफाई
0: के साथ सफाई रखें अगर आप खुद कर ले तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर सकते
1: तो
0: जो आपके हेल्पर्स हैं उन्हें कहें कि वो करें वरना उन्हीं मजदूरों से कह दें कि इसको सही तरीके से साफ कर दें
1: नहीं करेंगे नहीं
0: करते लेकिन नखरे की बात नहीं लड़की बात यह है कि एक्चुअली वो कुछ भी कर लें जो सफाई आप खुद करेंगे जो करवाएंगे वो ही बेहतर होती है ताकि आपको भी दिल को तसल्ली होती है कि जगह साफ हो चुकी है क्योंकि आपको पता है कि घर के अंदर जूते पहनकर आना और कीचड़ का आ जाना पानी का गिरना और बहुत सारी मिट्टी गर्द इस तरह से फैल जाना ये चीज़ें खराब कर देती हैं स्पेशली अपने ड्राइंग रूम्स और अपने बेडरूम्स के दरवाजे बंद रखें और कपड़े शपड़ा ऊपर डाल के रखें सोफो शोफो पे ऐसा
1: हाँ,
0: ही है
1: वो तो डर है जी
0: ये बड़ा हाँ। वो होता है
1: मेरी मेरी अम्मी का तो प्रॉब्लम है मुझे शायद अपनी अम्मी से ये मसला मिला हुआ ये जो डस्ट होती है मुझे एक्चुअली डस्ट एलर्जी भी है तो लेकिन ये जो
0: अच्छा ये भी है
1: हाँ मुझे डस्ट एलर्जी है
0: अच्छा ये भी है
1: हाँ, बहुत सारी एलर्जी है मुझे अजीब और गरीब लोगों से भी एलर्जी होती है लेकिन आप सोचे मैं हफ्ते के 2 दिन वो उसी एलर्जी में बैठ के शो करती हूँ
0: बिल्कुल
1: सोचे जस्ट थिंक फॉर अ मिनट
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी देखिए मैं यही सोच रहा था कि खाली एलर्जी मुझे है या इनको भी है
1: नहीं आपको
0: आप मेरे जैसी है
1: नहीं मैं बिल्कुल आप जैसी नहीं हूँ भारी भरकम क्यों मैं आप जैसी मैं दुबली पतली मैं अभी जो शूट कर रही थी
0: दुबली पतली खाने को मिलता नहीं घर में गरीब लोग
1: हाँ गरीबों के लिए लेके भी आती हूँ मैं आम की पेटियों से निकले हुए आम
0: और आड़ू भी था
1: आड़ू भी था हाँ एक आड़ू था वरना मैं आमतौर पर 2 लेकर आती हूँ कि हमने 3 लोगों ने खाना है
0: अच्छा।
1: तो था ही एक आड़ू
0: चल अच्छा वो हमने पहले खा लिया
1: मैंने एक्चुअली पहले से खाया था कि वो आम का टेस्ट आम बहुत मजेदार है ना
0: यस
1: मुझे ये रियल आम बहुत पसंद है
0: दिस इज चौसा
1: जॉन साहब एक पीले रंग वाला होता है ना पीले वाला आम
0: सारे आम पीले होते हैं
1: नहीं ये पीला नहीं था इसका छिलका थोड़ा ज्यादा
0: ग्रीन था ये चौसा ही था
1: लेकिन जो पीले वाला आम होता है उसको क्या कहते हैं
0: मुझे नहीं उसकी वाला होता है वो सिंदड़ी आम होता है जो आप पहले लेकर आई थी वो सिंदड़ी आम था वो जो आम होता है ना उसका बेसिकली शेक बहुत अच्छा बनता है वो बहुत मजेदार बनता है उसमें सही होता है
1: जब से गर्मी आई है ना मैंने कल पहली बार आम का शेक पिया मैंगो शेक
0: ना करें
1: ना मजा आया नहीं टाइम ही नहीं मिलता
0: अच्छा
1: गरीब आदमी नौकरी करे खाए पिए
0: अच्छा हम लोग रोजाना की बुनियाद पे हमारे घर में बन रही है क्योंकि मेरी बेटी बहुत शौक से पीती है और वो बाकी चीजें नहीं खाएगी तो हम इसमें भी होते हैं कि भाई इस बहाने कम से कम शेक पिएगी तो वो हो जाएगा तो हम उसको तकरीबन ना 1.5 ग्लास जबरदस्ती उसको हम देने की कोशिश करते हैं कि वो पी लेती है
1: अच्छा हमारे घर में एक और चीज भी होती है क्योंकि हमने ना स्ट्रॉज ला के रखी हुई है तो उसका ये है ना कि अगर आपने उसको वो टच देना है जो आप बाजार से खाते पीते है ना तो जो भी अच्छे बड़े जार्स हैं आपके पास या ग्लास हैं उसमें डाल के ना आप उसमें सिर्फ स्ट्रॉ फेंक दे उस ग्लास में ट्रस्ट मी आपको ना एक और ही माइंड हो जाता है
0: वाइब ही चेंज हो जाएगी
1: ओह वाओ माय गॉड योर वाली फील
0: अच्छा, हमारे पास जो जार्स हैं वो उस तरह के हैं वो जो हैंडल सा बना होता है पकड़ने वाला, वो और उसके ऊपर बंद होने वाला होता है, उसी में स्ट्रॉ होता है, और वो जो बने हुए बड़े खूबसूरत है, उसमें किसी पे वाटरमेलन बने हुए और बहुत डिजाइनिंग हुई हुई, तो बड़े मजे का है।
1: नहीं, हमारे तो सादा ग्लास है, बड़े वाले जो ग्लास वाले होते
0: हैं, मतलब सादा से लोग, क्या पता नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम लोग नहीं आए ना, तुम्हें स्पेशली कि मतलब बाजार में कितनी एडवांस चीज है, महंगी भी है ना एक्चुअली।
1: नहीं, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, देखिए जी मैं ऑन एयर बता रही हूँ, मैं फालतू की कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदती,
0: बिल्कुल,
1: चाहे कपड़े जो मैं सच बता रही
0: हूँ। एक बहुत अच्छी चीज तुम्हारी लगती है, दोस्त महंगा रखा हुआ है, आई एम रियली
1: मेरा कौन सा दोस्त है जो महंगा है, पता नहीं, मेरे तो सारे सस्ते दोस्त है, सस्ते एलर्जियों के मारे हुए दोस्त है। कौन है मेरा महंगा दोस्त? नाम नहीं लिया।
0: मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, मैंने देखा कुछ लोग हमसे मुसलसल कोशिश में होते हैं कि हमें किसी तरीके से वो आहो वो, लेकिन वो हमारा शो पूरा सुन रहे होंगे बैठ के।
1: साहिल हम इतने मकबूल है, हम इतने मकबूल है, हम मकबूल है, बहुत मकबूल है,
0: मकबूल है,
1: खाफ दुरुस्त होना चाहिए।
0: हाँ जी, जो फारसी जबान है, दरी जबान एक्चुअली, उसमें मकबूल कहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन और बुलंद इंसान है, अच्छे इंसान है, तो वो कहते हैं आप मकबूल है, हमारी एक बहुत सीनियर दरी जबान की जो थी, फारसी जबान की एंकर थी, जो वहाँ के टीवी पे भी थी अफगानिस्तान के, तो वो जब शोज वगैरह करती थी हमारे पास, एज अ ट्रांसलेटर वो थी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थी, तो कहती थी कि साहिल सर आप मकबूल है, आप मकबूल है, और जब हम मुझे कुछ अच्छा कहते थे कुछ, तो वो आगे से तशक्कुर तशक्कुर, तो ये दो चार लफ्ज हमने उनसे से ब्रिल्ले कहती थी, वो चश्मों को हमें उन्होंने सिखाया है, टिश टिश कहती थी टेबल को, मतलब वो बहुत सारे वर्ड्स उनसे हमने सीखे। तो कहने का मकसद ये है कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे।
1: उम्र का तकाजा है
0: जी, नहीं, बहुत सारी चीजें जहन में चल रही हूँ एक साथ,
1: नहीं नहीं, उम्र का तकाजा है, ठीक है, आपने अच्छा कवर मारा है, और मेरे लिसनर्स जो हैं वो भी समझते हैं कि बस मैं एक बुजुर्ग आदमी के साथ बैठकर शो कर रही हूँ, क्या करें भाई, मैडम सदफ ने ड्यूटी लगा दी एक बुजुर्ग आदमी के साथ,
0: और मैडम सदफ ने हमारे लगा दी है, और
1: आज की पोस्ट बड़ी मजे की है जी,
0: आज हम आए हैं
1: स्पेशल शर्ट्स खरीदी है जी, क्या करें,
0: वीकेंड स्पेशल विद आरजे साहिल एंड आरजे रेबेका, दिस टाइम इट्स फीफा, हु इज गोइंग टू बी द विनर टुनाइट, ये लगी है जी हमारी।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने कश्मीरी आवाम के नाकाबले तंसीख हक खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सियासी सिफारती और अखलाकी हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बरामदात गुज़श्ता माली साल के दौरान 4.60 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मारूफ उर्दू शायर सागर सिद्दीकी की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप का फाइनल आज निस्फ शब न्यू जर्सी में अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

なるわ。

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तंसीख हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल सियासी सिफारती और इखलाकी हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बरामदाद गुज़श्ता माली साल के दौरान 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। मारूफ उर्दू शायर साकिर सदीकी की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप का फाइनल आज निसफ शब न्यूजर्सी में अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तंसीख हक के खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सिफारती सियासी और इखलाकी हिमायत की असम का इरादा किया है। रेलवे के वजीर ने मुल्क भर के मुसाफरों को महफूज मौसर और अर्जा सफरी सहूलियात फ्राहम करने के लिए हुकूमत के अजम को दोहराया है। पाकिस्तान और चीन ने अफजाइशी हैवानात और गोश्त की बरामद के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 19 साल से कम उम्र खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा। सदर आसिफ अली सरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तंसीख हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतजलजल सिफारती सियासी और इखलाकी हिमायत की अजम का इरादा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: This is FM 101.

ढोला सानू प्यार दे नशे ते ला के आप मरी टुर वैंदी। यासीन ड्राइवर भाई गए वदन जनाब पहाड़ी इलाके दे विच छड्डे इलाके दे विच सुनदे पए ने प्रोग्राम आखदे पए नेट ते तुहाडा प्रोग्राम सुन रहे हां प्रोग्राम चंगा लग गया आखदे ने ट्रिप नाल आए होया हाय मैं सदके जावां भाऊ मैनूं वी नाल लई जावां। और ड्राइवर दे बिल्कुल खब्बे पासे एक है उत्ते उत्ते फुड़ा जिहा लगो हुंदा सीट जी बनी हुंदी बड़ा मैनूं तू उत्ते बहा लवें आ ओ नहीं तो ड्राइवर दे पिछू बंदा हेठां बोंह ते बह जांदा उत्ते बहा के लई जावें आ पर मेरा किराया भी बच जाए सैर सपट्टा भी हो जाए तो जी थू तुसा टुकुर खावना उतू मैन भी लाभ जावना चौकट सुने ड्राइवर राह च होटल आए मुफ्त खाना दें दे। तो मैं थोड़े नाल वड़ जावना तो ले जावा यासीन भाई ज्यादती की नहीं बहरहाल जिथे अल्लाह पाक तो ने अपने हिफ्ज़ो अमान ही रखे और खैर खरीयत नाल वापस ले आवे।

0: लो जनाब, एक मेरा प्यारा जहा मासूम जहा भरा है असद अली। असद अली भाई मेरी आवाज़ नू मेरी बोली नू कापी करते हैं, बड़े प्यारे लगते ने। मैनू अपनाइयत जी महसूस होंगी है कि इतने अच्छे दोस्त ने, इतने मन मोहने सोने और बड़े प्यार बोलते हैं, मेरे प्रोग्राम के शामिल होंगे ने। असद भाई थोड़ा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं वेखदा जो गाने की फरमाइश की अगर लभ गया तो ठीक है, ना लभ्या तो अगला गीत जो तुम्हें डेडिकेट करना, बल्कि आ लवो आ, मजबूर ना करो, नाराज़ भी ना हो कि मेरी पसंद नहीं सो चला, एवं समझो आई पसंद हो गई तो जनाब शमीम आपी की पसंद हो गई। सुनो, इंजॉय करो, मैं दसो कैसा लगा। मेहरबानियाँ प्रोग्राम में शामिल होने, बिल्कुल लाइव कॉल का टाइम होने लगा, जे थोड़े जे मिनट रह गए, जे बल्कि 3 मिनट रह गए ने। अज का साडा टॉपिक है कि बचपन दियाँ केड़ियाँ केड़ियाँ चीज़ां जिहड़ियाँ हुण तक तुसीं हिफाजत दे नाल संभाल के रखी हुई ने, वह की चीज़ है।
1: और शायद इसीलिए बेवफा हो, बेवफा हो, बेवफा हो, बेवफा हो।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम
0: जी। कौन
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: कौन गल कर रहे ने?
1: अदरीस
0: जी। अदरीस भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
1: सब तो पहले तो मैं ओ छोटे बेबी दो भाई दो कहते थे तीजे अपने दो साल की ना मुबारक कहवागा।
0: खैर मुबारक खैर मुबारक।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम थोड़ा तो टॉपिक ते मैं कहवा के जेरे पलंग ते मैं सोदा सी ना
0: जी जी पलंग। क्या बात क्या बात है पलंग और झूला ये बचपन की बड़ी पहचान है। सही
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम साहब तुसी करा रही है यादा ताजिया करा रहे हो बड़ा अच्छा टॉपिक ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਭ
1: ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦੇ ਕਲਬ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼
1: ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਖਾਲਾ
0: ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना, मुझे

सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

Big Radio, Big Style. Please, FM 101. Big Radio, Big Style. FM 101.

This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.

0: one above. FM 101.
1: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

कुछ दिल में रह गया, क्या अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था, हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी, उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Now, your request. Dave's Hot Music, Q101.

हमेशा की तरह पहला सॉन्ग, पहला गाना प्यार वतन पाकिस्तान के नाम। जहां तक हो सके पाकिस्तान की तरक्की में अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी। फ्रीक्वेंसी वायलेशन 101 हिट्स एफएम। नॉट मिनी नॉट माइक्रो बट मेगाहर्ट्ज़।

पाकिस्तान को जन्नत दे बना। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, जो जहां रहे खुश रहे, अब खुश ही रहे। The Pride of Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan।

जी 10:18 मिनट हुआ साथ है आपके मेरा साथ रहे इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। मैं सोच रहा था आपको बैक टू बैक कुछ म्यूजिक जो है वो सुनवाया जाए। क्यों नहीं?

आवाज सुन के आपको भी लग रहा है कि ये वो तो नहीं है कहीं। नहीं वो नहीं है, परंतु हर बना शौक हो जाता है। वॉइसेस जो है बहुत ज्यादा मिलती जुलती भी हैं, तो ये पाकिस्तानी वॉइस है। पीछे आते हैं टॉपिक की तरफ। ऐसे ही बस माइंड में रहा तो मैंने कहा ये रख लेते हैं, शॉर्ट सा टॉपिक है और ताकि इस पे आप लोग इजीली बात कर सकते हैं। आप तो वैसे भी इजीली बात कर सकते हैं। आप अगर किताब होते तो आपका क्या नाम होता, क्या टाइटल होता उस किताब का? अगर आप कोई किताब होते तो आपका क्या टाइटल होता?

0: Assalamu alaikum, Zuni from Lahore. Thank you so much, GR. RP. सच में नहीं है, बस पता नहीं क्यों ऐसे नहीं दिल करता शो करने का।
1: नंगे पैरी हसदा आशिक बलदा देख लिया, नंगे पैरी हसदा आशिक बलदा देख लिया।
0: ओके जी, बिस्मिल्लाह कर दी। दिल को सुकून वाकई मिल जाता है जब आपका बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है।
1: प्यार वाले दाला पताए जाना पताए फिर
0: है। अभी जी हम फुप्पू के घर बैठे हुए हैं और हम नहीं जी, मैं तो सादा का बंदा हूँ।

लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले जी टॉपिक जो है उस पे करनी है बात, और टॉपिक जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलते हैं कि टॉपिक क्या है और ये बीच में क्यों आ गया, इसको साइड पे होना चाहिए ताकि मैं ठीक है जी। अगर आप कोई किताब होती तो क्या आपका टाइटल होता, क्या टाइटल होता या सब टाइटल होता या सबका सभी टाइटल होता? ऐसी रिक्वेस्ट भी आ गई है सामने और शामिल भी कर दिए, तो एंजॉय करेंगे साथ साथ।

शुक्री जी, मैं अपनी किताब का नाम रखती मुझसे तुम तक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, और क्यों सुन रहे हैं, अपनी ड्राइव पे ध्यान दीजिए।

Assalamualaikum, Ziaullah Khan from Mia Valley. Welcome to the show, dear Muhammad Yusuf, the great. Show is awesome, voice is so nice. Thank you so much, bahut shukriya. Shahzadi Manzoora Mashad maujood hai Islamabad se, aur ye kyun aapka dil nahi karta show karne ka? ये दो वीक से जो आप कह रहे हैं कि दिल नहीं करता शो करने का, लास्ट वीक भी बहुत अच्छा आपने शो जो है वो प्रेजेंट किया, और आज भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा।

जिन लोगों स्पेशली अभी सुनने शुरू किए उनको बताते चलते हैं कि टॉपिक है प्रोग्राम में छोटा सा टॉपिक रखा है ऐसी आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए टॉपिक रखना जस्ट आप लोगों की पार्टिसिपेशन बस कि अगर आप सिंपली सी बात अगर आप कोई किताब होते हैं मोस्टली लोग जो है वो किताबें पढ़ते हैं उनको शौक होता है शौक होता है तो उसका क्या नाम होता अपने पर्सनालिटी के हवाले से आप उसको नाम दे सकते हैं

10:30 की ब्रेक के बाद आप लोगों की कॉल्स को शामिल करेंगे, आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन करेंगे, गपशप लगाएंगे। 0511111 अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आपने सेंड करना है अपने जवाब के साथ 4471 पर। facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज है।

जीशान कोई कमर्शियल तो नहीं है? ओके जी, 1:01 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 10:30 हुआ चाहते हैं।

बड़ी खूबसूरत एक आवाज मैंने कल सुनी और मैंने कहा अच्छा इतना अच्छा भी काम हो रहा है म्यूजिक के हवाले से, तो मैंने कहा उसको शामिल कर दें। पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत सी एक आवाज, बहुत ही खूबसूरत वॉइस, इनके दो से तीन स्लो सॉन्ग थे वो भी बहुत अच्छे थे।

जी अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। मुझसे भी हो कर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। आदमी इतना भी बाजारी ना हो। जी हम लोगों की कॉल्स शामिल करेंगे, लाइव गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ और देखेंगे कौन कहां से है। टॉपिक अगेन आपको बताए चलते हैं कि अगर आप कोई किताब होते तो आपका क्या नाम होता। तो कोशिश कीजिए सिर्फ टॉपिक के रिलेट ही बात करें, बाकी गपशप, सलाम दुआ, शेर सुनाना, बबर शेर सुनाना, गाने सुनाना बाद में सुन लेंगे। कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि सिर्फ बोलने का दिल करता है। बहुत सुन चुके हैं, आओ क्या ना, अच्छा आओ रे लैला, संग चल दे खैर रे।

0: अभी जी देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। आप कैसे हैं, तबीयत से ठीक है? कोयटा के लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं? ये कोयटा के लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं? नहीं, कोयटा के ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा ठीक हो गया, सही है। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम होता अगर आप कोई किताब होते? ड्राई फ्रूट? क्या होता?
1: मेरा नाम वक्त होता था।
0: वक्त होता, वक्त,
1: बिल्कुल
0: वक्त। ठीक हो गया, सही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: वक्त एक वही चीज है, हर रोज इंसान जरूर उसे याद करते हैं, 10-15 मरतबा, एक मरतबा तो हर इंसान याद करते हैं कि हमसे वक्त गुजर गया, वक्त ने ये किया था, ये वक्त क्या लाभ क्या है, ये सिर नहीं आया, अभी कितना वक्त बाकी है।
0: बिल्कुल अच्छा, वक्त की बात आप कर रहे हैं, वक्त। ठीक हो गया, सही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: आपका हमेशा खुश रखे।
0: थैंक यू सो मच, बहुत खुश हैं आप। थैंक यू सो मच जी, अब तो खुश ही खुश हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय हाय, ठीक हो गया जी, टॉपिक आपको समझ आ गई है। और चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कि कौन कहां से हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। 0511111001। अच्छा जी, कहते हैं कि जी सबकी रिक्वेस्ट तो फौरन मिल जाती है पर मेरी रिक्वेस्ट को मौत आ जाती है। नहीं, ये सच में नहीं है, ऐसा ही बिल्कुल रैंडमली आ गया। ओके जी, संजानी गए और वापसी पे सदर गए सिटी मॉल। अच्छा जी, और ठीक हो गया, मतलब कि रश्का चलाने दो जी। 0511111001। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, लाहौर से।
0: बिस्मा कैसी हैं आप?
2: यूसुफ भाई,
0: शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक के हवाले से आपसे बैठ के वही सोच रही थी कि मैं क्या नाम रखूँ अपनी बुक का, इतने पंगे में लेती हूँ उल्टे सीधे, तो मेरी बुक का क्या नाम होना चाहिए?
0: पंगे वाली बुक?
2: क्या
0: पंगे वाली बुक?
2: हाँ, मैं सोच रही थी ऐसा रखेंगे नाम कि फैसला फैसला रखेंगे, एक फैसला आपका आपकी जिंदगी को जो है वो आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्या सोचती और मैं पंगे लेने बैठ जाती हूँ। अब मेरी से पहले एक सीन थी ना, वो उधर मैं गई, एक ऑप्शन था पीन वाला, उधर मैंने कहा कि ये पीन है, ये क्या सीन होता है यहाँ पर। मैंने उल्टी सीधी पिन डालना शुरू कर दी वहां पर, ठीक है। वो तीन दफा मैंने डाला तो उसके बाद ना वो आ गया ऑप्शन PUK कोड आ गया, ठीक है। अच्छा, वो दस बार उन्होंने बोला था कि आप डाल सकते हो,
0: वो पक कोड होता
2: है। मैंने उल्टे सीधे डालना शुरू कर दिए, पूरे 10 बार मैंने डाला, उसके बाद मैंने कहा है ये ब्लॉक तो हो गया, ये क्या मतलब मेरी सिम क्यों नहीं चल रही। तो मैंने फिर वो ChatGPT से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, मेरी सिम बंद हो गई है, ये क्या हुआ क्या ये। तो फिर उसने सारा ChatGPT ने बताया, अभी मुझे पता चला मैंने क्या किया है, खुद करके कह रही हूँ ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। इस तरह के पंगे लेती बैठे बैठी, तो अपने सिम ब्लॉक करके बैठ गई। उसके बाद फिर वो शॉप के वो कहते अगर आपके पास 1-2-3 अटेम्प्ट भी होता ना, आप ले आते ये मोबाइल तो हम आपकी सिम को ओपन कर देते। तो कहते अब आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हो या फिर इसको जो
0: है यानी कि
2: आपकी लाइफ हो जाएगी, मीन्स की लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छे फैसले करोगे तो अच्छी जिंदगी होगी ना।
0: बिल्कुल ऐसे, چلیں ٹھیک ہے, صحیح, اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے,
2: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. 0511111001. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟
3: نذیر کیانی بول رہا ہوں.
0: کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ جی, شکر اللہ کا.
3: میں کتاب کا نام رکھتا ہوں پہلا وصال.
0: کیا رکھتے؟
3: پہلا وصال.
0: اچھا, کوئی اس کی کیا ریزن؟
3: یہ شاعری پہ کتاب ہوتی.
0: اچھا,
3: کا نام ہوتا ہے پہلا
0: وصال. پہلا وصال, ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
3: اور اگر دوسری کتاب ہوتی تو میں رکھتا وہ جنا کی نگاہ.
0: اچھا, ٹھیک ہو گیا, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں ایک سانگ لب رہی ہوں, اگر میں نے لب گیا تو انہوں میں شامل کروں گا تھوڑے واسطے. پتہ نہیں ویسے دل کر رہا ہے آج کچھ ایسا کہ بس آخری شو کر کے چلا جاؤں. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: شکر اللہ کا, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں,
4: آپ کی دعائیں ماشاء اللہ, بہت اچھی زندگانی گزر رہی ہے جی, بہت اچھا آپ کا شو ہے ماشاء اللہ.
0: تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.
4: جو آپ کا موضوع ہے نا, اس پہ میں کتاب پہ لکھتا, محبتوں کا غلام.
0: محبتوں کا غلام,
4: جی جی.
0: وجہ محبت ہوتی تو
4: وجہ یہ ہے کہ ہم تو ہے محبت کے غلام. ہم جہاں بھی جاتے ہیں محبت کرتے اور پیار کرتے اور خوشیاں دیتے, اس لیے کہ کتاب کا نام یہ رکھنا.
0: ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا.
4: ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے آپ کو, بہت بہت دعائیں آپ.
0: تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. 0511111001. اگر آپ کتاب ہوتے تو آپ کا کیا نام ہوتا؟ ون آف مائی فیوریٹ غزل, اور اوریجنلی زن بائے خان صاحب, یسم خان صاحب, لیکن یہ ینگ سنگر ہیں. اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مسعود ملک صاحب پاکستان کے بڑے فیمس گائک گزرے ہیں, جن کا سب سے مشہور سانگ تھا کہ ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا رقص میں سارا, جنگل ہوگا. یہ ان کے بیٹے ہیں جی, یارک مسعود ملک, اور ریپ انجینئرز کے نام سے انہوں نے ایک بینڈ بنایا تھا. بہت خوبصورت وائس ہے.

कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। क्रेडिट जो है वो पूरा पूरा देना चाहिए।

मतलब देखिए यहाँ पे हम अपना रोना धोना धो रहे हैं और इस वक्त मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सामने फीफा का जो फाइनल मैच है आज फुटबॉल का, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। उसने खुशबू, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और जितनी वो हले गुले से हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि या तो मैं शो बंद करूँ या फिर मैं टेलीविजन बंद करूँ।

ओके जी, मजीद हम लोग उनके कॉल्स को शामिल करेंगे 0511111001 और देखेंगे कि कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। और कहते हैं जी आखिरी शो क्यों बताएं सर, परेशान कर देते हैं ऐसी बात करके। नहीं जी परेशान ना हो, परेशान जिन्होंने होना था वो

अभी 10:00 हुआ चाहते हैं 53 मिनट। हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते,

जी लंबी नहीं, बहुत लंबी होनी चाहिए ताकि इंसान जाने का भी सोचे ना तब भी उसको

ये वक्त जो है, ये वक्त की चाल मुझे बहुत पसंद है कि ये वक्त रुकता नहीं है, वक्त गुजर जाता है लेकिन इंसान क्या कुछ सोचता है, क्या करता है, लाइव हो जाता है। क्योंकि जब आप दिमागी तौर पे डिसऑर्डर हो जाए ना, तो फिर लव्स भी साथ में देते हैं। हैदराबाद कैंट से पाक आर्मी से तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? शो नाइस है, और अगर मैं कोई किताब होता तो मेरा नाम होता नादान, क्योंकि मुझे हर कोई बेवकूफ़ बना लेता है। जैसे मैं नादान बच्चा हूँ भाई, एक सॉन्ग प्ले कर दो। मैं कोशिश करता हूँ जी।

मतलब बंदा इतना गाइस जो है काम कर रही है और उसके बाद भी उसको बड़ा उस पर प्राउड हुआ है। तो इंसान कसमें भी खाए,

जी न्यूज ब्रेक बिल्कुल नजदीक है और फिर आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शबगब, जिन लोगों ने भी सुनना शुरू किया उनको बताते चलते हैं कि टॉपिक यह है कि आप अगर किताब होती तो आपका क्या नाम होता। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।

ओके जी, और मैं मर रहा हूँ उसके लिए और वो जी रहा है किसी और के लिए. वल्ला हैवी भी कब से. अच्छा ओके जी, एक तो आप कॉल नहीं पिक कर दे, अगर किसी ने लाइव नहीं आना तो वो क्या करे, मूड खराब कर दिया आपने. मोहम्मद ज़ियाउल खान फ्रॉम ये वाले टॉपिक के हवाले से कहना चाहूँगा कि मैं अगर कोई किताब होता तो मेरा नाम होता गुमनाम सिपाही या मसीहा.

मतलब कि कोई आप ऐसे प्रिटेंड करवा रहा हो कि बड़ा दुख है जी उससे, लेकिन और एक दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी कि इसमें बताएं कि क्या चीज है जो उसकी गलती है, जवाब आया कि एक अंडे का हेत वो नजर आ रहा है, बाकी दुनिया च कोई शायद नहीं तो नजर आ रहा है।

0: तो किसी कुछ कॉल से पहले वो शामिल कर लेते हैं। लोग कहेंगे पता नहीं इन्हों की हो गया, की करना की चाह रहा है, की सुना की रहा सन। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम दम खुश, हर दम खुश। आप सुनाएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे, अगर आप कोई किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता?
1: टाइटल यही होता कि मोहब्बत के बोल।
0: मोहब्बत के बोल, दो बोल।
1: ये दो बोल,
0: हाय दो बोल से मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, जा तुझे माफ किया है।
1: हाँ जी, मैंने जितनी कॉलें मिला ली हैं, मैंने भी यही दिल में सोचा हुआ था कि यूसुफ भाई का बोलों का जा तुझे माफ किया।
0: जा तुझे माफ किया। अच्छा सही हो गया जी, ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर मैं यही
0: मतलब
1: कहना
0: आपको,
1: चाहूंगा, ये जो आपने आप
0: आप
1: तुछ में एक शेर पढ़ा है, जरा दोबारा तो पढ़ के सुनाए जरा।
0: जो स्ट्राइकी में मैंने पढ़ा था,
1: हाँ
0: चले मैं ऑन एयर फिर पढ़ दूंगा, ठीक है?
1: हाँ मैंने आपके मुंह से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं भाई को दोबारा बोलूंगा। ये तो भाई को
0: अच्छा,
1: ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, सर खुश रहे।
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।
1: ओके अल्लाह
0: ओके
1: हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी, लाहौर में भी सुने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का जो जहां हमें सुन रहा है। और
2: जा तुझे माफ
0: तो वो
2: किया,
0: सराइकी का शेर था कि
2: जा तुझे
0: तो उसी में को सुन दे पे हो।
2: माफ किया,
0: हाँ जी सुन दे पे हैं। नाराज ना थी मैं तेहे गाला खा, नाराज ना थी मैं तेहे गाला खा,
2: जा तुझे माफ
0: तेरे नाल मोहब्बत थी गई है।

नहीं ले, हम इस्लामाबाद से मसल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। दिल की आंख से देखें तो बहुत प्यारे हैं वल्ला, मुझको कुछ भी हैं।

कुछ नहीं हुआ जी, लोग ऐसे परेशान हो गए हैं भाई। आज आपको क्या हुआ है? कुछ खामोश दर्द गिला है भाई। किसने कहा आप खूबसूरत नहीं है? जिसकी वॉइस दूसरों को सुकून देती है वो खूबसूरत नहीं होता, तो क्या होता है? अच्छा ऐसे ही है।

नमस्कार 19 मिनट हुआ जाते हैं सामने और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ठीक रात के 12 बजे तक कुछ मैं शायद जल्दी ही लेफ्ट कर दूँ स्टूडियो, क्योंकि टीम भी जो है वो आने शुरू होगी और मैच के हवाले से यहाँ पे फाइनल जो मैच खेला जाएगा आज स्पेन वर्सेस अर्जेंटाइन, मैंने कुछ मेडिसिन जो है वो पिक करने के लिए मैंने अभी बहुत दूर जाना, मुझे वहाँ कैंट जाना था और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अभी अचानक मैंने घड़ी देखी है तो मुझे याद आया कि मैंने मेडिसिन पिक करनी थी और अभी मुझे यहाँ से वहाँ कैंट जो है वो जाना पड़ेगा। ओए होए, मुझे बिल्कुल मतलब माइंड से जो है वो निकला गया, दिमाग इतना उलझा हुआ है ना। तोड़ने क्योंकि वो मेडिसिन जो है वो बहुत जरूरी है

0: ओके जी, वेलकम करेंगे। और कुछ थोड़ा सा वक्त है जिसमें मैंने कुछ कॉल्स भी शामिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या
0: वालेकुम सलाम जी, हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तभी से ठीक है
1: हाल है सर?
0: आपके?
1: आपके ठीक हैं?
0: शुक्र
1: खैरियत से
0: अल्लाह,
1: हैं?
0: शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मैं बड़े दिन से सोच रहा था, मैंने कहा बात नहीं हुई यूसुफ साहब से।
0: बस जी, कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैंने कहा चलें आज कर ही लेते हैं बात। क्या है वो बात
1: हाँ,
0: करेंगे तो
1: क्या क्या खूबसूरत आपने भी वो मेडिएशन साहब का तेरी आंखों को देखा है जी।
0: बस आंखों में ही देखा था, उसके बाद से भुगत रहे हैं।
1: ये बड़ी खतरनाक होती है, सारा
0: हाँ,
1: सारा सिलसिला यहीं से शुरू होता है।
0: सारा
1: हाँ,
0: कसूर इन आंखियां दा।
1: वो कभी कभी मैं सोचता हूँ,
0: जी,
1: वैसे ये मैं बात बर्बला कह रहा हूँ, मैं बड़ा कम ये बात करता हूँ,
0: हाँ जी,
1: मुझसे ज्यादा वो भी नहीं होता, वो जिसे कहते हैं ना जी हजूरी भी नहीं होती,
0: आए
1: अपना अपना मिजाज होता है। लेकिन
0: आए
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर यूसुफ साहब शायरी का प्रोग्राम करते, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते।
0: स्टार्ट में किए थे, फिर वो टाइमिंग ऐसी है, सुबह मॉर्निंग में बहुत अर्ली जो है वो ऑफिस जाना होता है,
1: नहीं नहीं
0: तकरीबन
1: वो उस वक्त गजल सुनने को जी नहीं चाहता। रात
0: हाय ऐसे।
1: को गजल सुनी जा सकती है, वो सुबह जो होता है ना, वो फिर आपको पता है ना, वो और बड़े बखेड़े होते हैं सुबह। हाँ
0: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: हाँ हाँ बड़ी खूबसूरत आदमी, चार मिसरे आपको सुना के जाया चाहूंगा। आपने
0: जी
1: आपने
0: जी
1: वो
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने इतने अरसे बाद ये मेडिटेशन को सुना और मेरे उसने जहन में फौरन वो मिसरे यूं चल रहे थे ना, जैसे वो मेडिटेशन साहब की क्या खूबसूरत गायकी है जी। चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि अब
0: जी
1: मैं जहमत
0: इंशाल्लाह।
1: तमाम करता हूँ, अब मैं जहमत तमाम करता हूँ, ये गजल उसके नाम करता हूँ।
0: ये गजल उसके नाम करता हूँ।
1: आपने कहा आंखों कहें कि ये अब मैं जहमत तमाम करता हूँ, ये गजल उसके नाम करता हूँ, और मिसरा आपके सामने रहा हूँ क्योंकि मेरे अहबाब जानते हैं मुझे,
0: हाँ
1: मेरे अहबाब जानते हैं मुझे, मैं मोहब्बत को आम करता हूँ,
0: मैं मोहब्बत
1: मैं
0: को आम
1: मोहब्बत
0: करता
1: को
0: हूँ।
1: आम करता हूँ।
0: सही
1: ये है बस एक रज जोड़ों का सिलसिला, वो थोड़ा रज जगह सहल हो जाता है आप जैसे खूबसूरत समातों को सुन के, अब आपके जोश पर।
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हम यूसुफ जमान थे, अभी कल की बात है।
1: हाँ,
0: तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात है।
1: कल की बात है।
0: ए?
1: यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी हम भी जवान थे तेरी तरह, मेरा शेर है।
0: जी,
1: लेकिन ये मैंने अपने लिए, एक बच्चे को मैंने देखा तो हम इस दौर से गुजरे हैं, तो मैंने उसको देख के कहा कि कभी हम भी जवान थे तेरी तरह, बहुत खुशगुमान थे तेरी
0: तेरी
1: तरह।
0: तरह।
1: तो ये खुशगुमानियां थोड़ी जो होती हैं इस उम्र में, तो
0: हाँ,
1: वो आगे जाके आपको
0: अब हम भी उस
1: खुश।
0: उम्र से गुजर चुके हैं ना अब तो।
1: हाँ, वैसे दो मिसरे और सुना दूं आपको, पुराने हैं लेकिन पता नहीं क्यों आपने बात छेड़ दी। मैं कहता हूँ उस जमाने की बात है कि मैंने ये शेर कहा तो किसी ने कहा कि मेरे लिए कहा, किसी ने, मैंने कहा नहीं ये मैंने अपनी नवासी के लिए कहा था, कि वैसे वो बातें प्यारी करती है,
0: जी
1: वैसे की बात चाहूंगा सर, कि वैसे वो बातें प्यारी करती है, हाँ मगर ढेर सारी करती है।
0: हाय हाय।
1: उसमें मैंने एक मिसरा लगाया था कि फूल टांगती है दिलों पर भी, फूल टांगती है दिलों पर भी, हाय क्या दस्तकारी करती है।
0: हाय हाय हाय।
1: दस्तकारी की कोई शेर हो सुनाए, मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मैंने
0: अच्छा,
1: कहा इस लफ्ज को कहाँ पे इस्तेमाल किया गया।
0: हाय हाय। तुम निगाहें तो चुराते थे बहुत अरसे से,
1: हाँ
0: हम ही पागल ना समझ पाए इशारा क्या है।
1: क्या मैं दाद दूंगा आपके। अच्छा बड़ा मजा है क्योंकि मैंने किसी बंदे को कह दिया, आरजे को, मैंने कोई शेर सुनाए तो वो शेर मुझे उसके उल्टा सुनाए, कोई आरजे था रेडियो का, तो मैंने कहा सर ऐसे नहीं बात बनेगी, मैंने
0: अच्छा
1: कहा मैं शेर जो सुनाऊंगा आप उस पर आए में मुझे शेर सुनाएंगे, जैसे आपने अभी शेर सुनाया तो वो रिलेटेड है उसके ख्याल
0: ऐसे।
1: से। तो मैंने कहा आप एक लफ्ज पकड़ के मेरे साथ अगर शायरी करेंगे तो मैं नहीं करूंगा आपके साथ। तो मतलब मैंने किसी में मिसाल के तौर पे चरखा आ गया, तो वो कह जी मुझे चरखे पे एक शेर याद आएगा, मैंने कहा नहीं ये नहीं है शायरी, अगर आप शायरी करेंगे तो आप जो सुनाएंगे हम उसके हिसाब से आपके साथ शेर सुनाएंगे।
0: हम आपके साथ बराबरी पे खेलेंगे हैं?
1: जी
0: हम आपके साथ बराबरी पे खेलेंगे।
1: नहीं नहीं बराबरी की बात नहीं है, वो उसकी बात है सर, इसमें कोई वो तकाबुल की कोई ऐसी बात
0: नहीं, नहीं, नहीं वो जी जी पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में है कि हम बराबरी पे खेलेंगे, ये नहीं कि आप टू द पॉइंट जो है वो खेलना शुरू कर दें।
1: वो सबा जवेद का बड़ा अच्छा मिसरा था
0: जी जी,
1: हम ही ने खेल सिखाया हम ही से खेलते
0: हैं।
1: तो पता नहीं उसका दूसरा मिसरा क्या था, शायद आपके जहन में हो, सबा जवेद बड़े अच्छे लहजे के शायर थे
0: जी बिल्कुल, अभी नहीं आ रहा
1: है उनके वो बारह जी। ये जो चीजें हैं ये शायरी का शायद हमें शौक है और बस उसके वो थोड़ा कभी वो कैथारसिस का अमल है, जब ज्यादा तंग होते हैं तो वो बकौल उमैर नजमी के मैं एक शेर के साथ जाना चाहूंगा, उमैर नजमी का बड़ा अच्छा शेर है, तो मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है।
0: आए हाय कहानी में डाल मुझे गुस्सा निकालना है।
1: जी जी क्या कह रहे यूसुफ भाई?
0: मैंने कहा कि मुझे कहानी में डाल मुझे गुस्सा निकालना है।
1: मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है।
0: अच्छा है।
1: तो ये एक कैथारसिस का अमल है, वो आप समझते हैं इस बात को या शायद हम भी समझते हैं, सुनने वाले भी समझते होंगे कहीं ना कहीं से जो शायरी का शौक रखते हैं।
0: जी जी रखते हैं जी, बहुत
1: शौक रखना अलग बात है, शौक रखना अलग बात है।
0: ऐसी है, ठीक हो गया सरकार, बहुत शुक्रिया
1: सरकार, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह,
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, और कोशिश करते हैं कि कई क्वालिटी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाएं प्रोग्राम में। तो मैंने कहा चलें गपशप लगा लेते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो मैंने कहा खेल लेते हैं हम भी हैं
2: सामने।
0: वो अमीर खुसरो का एक शेर जो है वो माइंड में ऐसे घूम रहा था काफी देर से।

नहीं जीना जीना तुझे सिरे ला देते जीना मार के पूछते जीना।

सब कुछ गरम कर 38 मिनट हुआ चाहते हैं वसी शाह का खूबसूरत सा कलाम और उसको बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो गाया है अदनान धूल सोच बैंड है जी और उसके लिरिसिस्ट हैं। मैं तेरा हूँ तेरी मर्जी मुझे जैसा कर दे तेरा बीमार हूँ अजलों से न मर जाऊं कहीं एक नजर देख ले मुझको मुझे अच्छा कर दे।

0: तो सावन सावन भी जो है वो स्टार्ट हो चुके जिस तरह का मौसम है, और कोशिश करें जी पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा करें, कहीं ये ना हो कि अचानक चलते चलते फिर आपको लोग ढूंढते रह जाएं कि इतने देर से थोड़ी देर पहले। तुझसे बस इतनी सी ख्वाहिश मेरे मालिक की है,
1: तुझसे बस इतनी सी ख्वाहिश मेरे मालिक,
0: उसके दिल को मैं लुभा लूं।

0: तो लुभा लू लेकिन सानू कौन लुभाएगा।
1: मुझे जैसा कर दे।
0: रीमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कैसे हैं आप? और आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और शो भी नाइस। भाई किताब वाला जवाब जो मैं देना चाहती थी वो हैदराबाद से फौजी भाई ने जो है वो दे दिया। अच्छा उन्होंने क्या दिया था मुझे? अब वो पूरे रिफ्रेश ही हो गया, पेज गायब ही हो गया। तो अच्छा जी नहीं आज सेगमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके बाद ट्रांसमिशन है पूरी, तो पूरी ड्रैग हो जाएगी। लेकिन हम अपना रोना धोना जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है, मुझे जैसा करना है वैसे ही है।

ग्यारह बज के 44 मिनट हुए साथ हैं सामीन, और कुछ देर बाद हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो मौजूद होगी। मैं नहीं होऊंगा, बाकी सारे मौजूद होंगे, आपकी पसंदीदा आवाज़ें जिनको आप सुनना चाहते हैं और जिनसे आप बातें भी करते हैं। आप उनसे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, वो अच्छे मशवरे देते हैं आपको।

आहिर अपन फुल टाइम अगली मतलब जब आपसे मुलाकात होगी और जब भी मुलाकात होगी होपफुली एक नए अजम के साथ और भूले नहीं होंगे आप. लेट्स प्रूव इट. यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी. स्टे कूल से आप ही. अल्लाह हाफिज़.

साथ आप लोग।

0: अर्जेंटाइन को, आप किसको कर रहे हैं?
1: मैं स्पेन को,
0: स्पेन
2: स्पेन
0: को। ओ
2: स्पेन
0: माय
2: को दो
0: गॉड,
2: वोट हो
0: टू
2: गए थे।
0: वन
2: अस्सलाम वालेकुम जी
0: अभी
2: तमाम
0: आतिर
2: दोस्तों
0: भाई ने
2: को।
0: भी आना है। आतिर भाई क्या कह रहे हैं, आ रहे हैं?
2: आतिर भाई कह रहे थे मैं थोड़ी देर तक ज्वाइन करता हूँ।
0: ओके
2: दोस्तों, आपको 101 के नेटवर्क पे स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए डिजाइन एंड प्रोड्यूस किया मिस्टर दफरानी ने। और 23वां वर्ल्ड कप का फाइनल आज अब से कुछ ही लम्हों, जैसे कि ईशान नासिर भाई ने बताया कि खेला जाएगा। बड़ी जबरदस्त जो है वो एक तकरीब हुई जिसमें बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे, उन्होंने स्टेडियम में आए। और अब से कुछ ही देर पहले दोनों टीम्स की जो है वो भी स्टेडियम में आई। क्राउड की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमें स्टूडियो में खुर्रम भाई ने ज्वाइन किया, इनको खुश आमदीद कहेंगे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद का जो एरिया है यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है, उसकी क्या सूरत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल फुटबॉल मेरा फेवरेट है और आज इतना बड़ा मुकाबला हो रहा है और हम अगर ये कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इतना बड़ा इवेंट है। और इसको तकरीबन जो है वो 3 बिलियन के करीब जो लोग इस वक्त इसको देख रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर इसको देख रहे हैं और वहाँ पे फिजिकल भी लोग मौजूद हैं और इसको डिजिटली भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा मुकाबला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान भी कभी इस मैदान में होगा और हम उसको फिर मजीद जोश और जज्बे के साथ इसको इस तरह की ट्रांसमिशन करेंगे। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा एक इवेंट है और खासकर जो है वो आज का मैच बड़ा खास है, इसलिए कि अर्जेंटीना और स्पेन, अर्जेंटीना पहले जो है वो दिफाई चैंपियन भी है और उसमें मेसी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, अभी जैसे खुर्रम भाई ने कहा भी कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार आपकी टीम तो है नहीं है, पाकिस्तान की टीम तो है नहीं, तो आप किस चीज की इतनी आपको एक्साइटमेंट है? तो मैं उनसे अक्सर ही कहता हूँ कि हमने टीम नहीं भेजी लेकिन हमने वो चीज भेजी है कि अगर हम वो वापस ले लें तो मैच ही ना हो। सो इस वक्त जो फुटबॉल है ये भी एक बहुत ही प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जो फुटबॉल यूज हो रहा है दैट इज मेड बाय पाकिस्तान, सियालकोट में इसको बनाया गया है।
2: और मुझे याद पड़े जब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, मेरा और आपका एक प्रोग्राम था स्टार्ट में जिसमें हमने ये जिक्र किया था फुटबॉल के हवाले से, जब पहला या दूसरा मैच था स्टार्टिंग आगाज हुआ था जी फीफा वर्ल्ड कप का। तो दोस्तों मैच का आगाज हो चुका है और कल भी, बल्कि बैक टू बैक पिछले पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें, हमने अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में यही सवाल पूछा था जैसे ही दो टीमें फाइनल हुई थी कि कौन वर्ल्ड कप जीतेगा। तो मैक्सिमम जो रिस्पांस लिसनर्स की जानिब से था वो भी स्पेन का था। अर्जेंटीना के हवाले से जिशान भाई, आपकी टीम के हवाले से लोग ये कह रहे थे कि अंपायर्स ने भी इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया है। अब देखते हैं कि अर्जेंटीना जो है अपने इस टाइटल का दिफा कर रहे हैं, लास्ट वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था, और मेसी जो है वो क्या दोबारा अपने मुल्क को वर्ल्ड कप जितवा पाएंगे या नहीं, चूंकि ये वर्ल्ड कप इनका लास्ट वर्ल्ड कप है। रोनाल्डो का भी लास्ट वर्ल्ड कप था, उनकी किस्मत में वर्ल्ड कप नहीं रहा। तो फाइनल दोस्तों शुरू हो चुका है, आप हमें 4471 पे बताएंगे कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम आपके लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, फेसबुक पे एक अदद पोस्ट मौजूद है और इस वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ रिकॉर्ड्स भी इंशाल्लाह आपके साथ हम इस ट्रांसमिशन में शेयर करेंगे कि येलो कार्ड्स कितने दिखाए गए, रेड कार्ड्स, और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टैट्स हैं वो इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में आपके साथ शेयर करेंगे। जिशान भाई, मेसी को सपोर्ट करने की कोई खास वजह या इस वर्ल्ड कप में या शुरू से ही मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं आप?
0: यार मेरी जो पहली चॉइस थी दैट वाज ऑब्वियसली रोनाल्डो। उसकी वजह ये थी कि वो जितने बड़े प्लेयर हैं उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, तो मैं चाहता था कि उनकी जो कबर्ड है, जो हॉल ऑफ फेम है, उसमें जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शामिल हो जाए, जो कि नहीं हो सकी। सो आई रियली वांट कि जो मेसी हैं, बिकॉज अगर आपने लास्ट गेम देखी हो, लास्ट से लास्ट इनफैक्ट, जिसमें कहा गया, जिसके बाद जो आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि फीफा सपोर्ट करता है एंड ऑल दैट, 72 मिनट्स तक कुछ भी नहीं था और उसके बाद मेसी आए और फिर गेम चेंज हो गई। तो समटाइम हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि
1: अर्जेंटीना जो टीम है ये इस तरह की टीम है कि जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलटती है। और दूसरा जो अर्जेंटीना की स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप 75 मिनट्स तक वो स्टे करते हैं, ग्राउंड को स्टडी करते हैं, प्लेयर्स को स्टडी करते हैं, उनकी साइकी के ऊपर काम करते हैं। और आफ्टर 75 आपने देखा होगा कि पिछले मैचेस के अंदर भी जिस तरह अर्जेंटीना ने कमबैक किया है, या उससे पहले वाला जो टूर्नामेंट था, जो इससे पहला फीफा था, जो वर्ल्ड कप था, जो से प्रीवियस वर्ल्ड कप था, उसके अंदर भी अगर आप फाइनल में देखें तो अर्जेंटीना की यही एक स्पेशलिटी है कि वो 75 मिनट्स तक स्टडी करता है और रिसर्च करता है अपने जो उस वक्त टीम के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, और उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटजी फिर इंप्लीमेंट
0: करते हैं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डिक्लेमर, मैं ये इंफॉर्मेशन देने से पहले दे रहा हूँ कि बैटिंग बिल्कुल बुरी बात है, लेकिन जाहिर है जब स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उसमें बैटिंग और फेवरेट और नॉट फेवरेट वाला किस्सा होता है. तो इस वक्त अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर ऑन करें तो उनके मुताबिक भी जो गैम्बलर्स हैं या जो बेटर्स हैं उनके मुताबिक भी स्पेन इस वक्त फेवरेट है. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त 1000 रुपए कोई लगाएगा तो उसको 2300 रुपए मिलेंगे स्पेन के ऊपर, और अगर कोई 1000 रुपए अर्जेंटीना के ऊपर लगाएगा तो उसको 3600.
1: इसका मतलब
0: नहीं लगाया यार,
1: इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना जो है वो ज्यादा कैपेबल है एज कम्पेयर टू स्पेन. क्योंकि देखिए अगर उन्होंने गैम्बलर्स ने अगर पैसे शुरू में ज्यादा लगाए ना, इसका मतलब है कि उन्होंने पैसे,
0: हाँ ये भी होता है, हाँ ये भी होता है,
1: तो उन्होंने स्ट्रांग टीम के ऊपर पैसे कम लगाए हैं और जो वीक टीम है उसके ऊपर लगाए.
2: क्योंकि अर्जेंटीना के वाले से कहा जाता है ना आखिरी कुछ टाइम जो है 15 से 20 मिनट में गेम पलटती, और हमेशा से लास्ट वर्ल्ड कप में भी इस तरह हुआ था कि आखिर के कुछ मिनट थे उसमें अर्जेंटीना ने बहुत आउटस्टैंडिंग गेम खेली. और इस दफा भी अर्जेंटीना के तमाम जो मैचेस हैं, एक मैच में थोड़ा सा टफ टाइम मिला था, अदरवाइज तमाम मैचेस में बड़ी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज रही, आखिर में आके मैच पलटते हैं. और फुटबॉल की चूंकि ये दीगर गेम से दोस्तों बहुत डिफरेंट है, इनकी तमाम प्लेयर्स की फिटनेस लेवल जो है वो हम अगर अमूमन क्रिकेट से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है. चूंकि इनका जो रनिंग का सिनेरियो होता है ड्यूरिंग द मैच, और इसके अलावा बाकी भी इनकी फिटनेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. स्पेन की अगर बात कीजिए दोस्तों, बड़ी जबरदस्त टीम है,
1: बहुत ही करीब था
2: पहला ट्राई, मतलब पहला अटैक किया गया स्पेन की जानिब से. और यमाल जो है इनके यंगस्टर हैं, इनकी कुछ एक तस्वीर जो थी जो रोनाल्डो के साथ, ये उस टाइम काफी छोटे थे और रोनाल्डो सॉरी मैसी के साथ वो तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, उस पर भी लोगों ने काफी बातचीत की. आज देखें दोनों एक ही मैदान में हैं, एक अपने मुल्क को जितवाना चाह रहा है दूसरा अपने मुल्क को. एक अटैक किया है स्पेन ने और स्पेन की टीम जो है वो अर्जेंटीना की डी से बाहर नहीं जा रही,
1: और ये दूसरा अटैक और अटैक्स पे अटैक्स कर रही है.
0: और यहाँ पे एक ट्रिविया फैक्ट है कि जो मेसी हैं उनको सिर्फ 2 गोल चाहिए, अगर वो आज 2 गोल कर लेते हैं तो गोल्डन बूट के कंटेंडर हैं वो.
2: जी दोस्तों ये एक और स्टैट्स आपके साथ शेयर किए कि अगर 2 गोल वो कर लेते हैं तो गोल्डन बूट इस दफा एक दफा फिर जो है वो मेसी के साथ जाएगा. जैसे कि स्पेन के हवाले से अभी हमने बताया कि गेम के आगाज से अब तक 2 अटैक उन्होंने किए हैं और बड़ा टफ टाइम फिलहाल दिया जा रहा है, वो डी से बाहर नहीं जा पा रही अर्जेंटीना की टीम जो है फिलहाल जो डिफेंड कर रही है इस तमाम मामलात को, देखते हैं कि वो कब अटैक करते हैं. 5 मिनट और 24 सेकंड का जो है सिलसिला गेम हो चुकी है जी स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान ये फाइनल दोस्तों इस वक्त खेला जा रहा है. और ये तीन ममालिक ने मुश्तरका तौर पर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, जिसमें कैनेडा मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की जो मुल्क था इसमें ये होस्ट किया गया. बड़ा जबरदस्त वर्ल्ड कप रहा, 48 टीमों ने हिस्सा लिया था. और इस दफा फीफा वर्ल्ड कप के दरमियान में जो फीफा के हेड हैं उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि 64 टीमें उनको शामिल किया जाए. अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान रैंकिंग में,
0: आई थिंक इस दफा भी क्वालिफायर तो खेला है पाकिस्तान ने, हार गया था शायद गालिबन, क्वालिफायर खेला है पाकिस्तान ने,
1: है ना,
0: कि हर साल खेलते हैं लेकिन जीत नहीं पाते. और आई थिंक नेक्स्ट जो ईयर है वो कतर में हो, सॉरी नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है दैट विल बी इन कतर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसे ही
2: जो दोस्तों खेला जाएगा 2030 में, नहीं वो मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में है, कतर का हो गया है लास्ट प्रीवियस 2022 में कतर में था, और 2034 में दोस्तों जो खेला जाएगा वो सऊदी अरेबिया ने जो लास्ट जो है वो बीट जीती है. नेक्स्ट 2030 में जो होगा वो मोरक्को पुर्तगाल और स्पेन में तीन ममालिक उसको होस्ट करेंगे. और 2034 में जो 25वां वर्ल्ड कप होगा वो सिर्फ एक मुल्क यानी जैसे कि कतर ने सिंगल हैंडेडली होस्ट किया था सऊदी अरेबिया. और गल्फ कंट्रीज जो है खुरम भाई वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं फुटबॉल को, और सऊदी अरेबिया का एक क्लब
1: क्रेजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का है, वहां पे क्रिकेट और इस तरह की गेम्स को कम ही देखा जाता है. सारा फुटबॉल आप देखेंगे रोनाल्डो के ऊपर उन्होंने कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है, और उसके अलावा भी वहाँ पे जो लीग्स आप देखें अब सऊदी लीग भी आ चुकी है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर. और डेफिनेटली जी जो अगर कहें कि सही अगर जान वाली को गेम है या टेक्निक वाली गेम है तो वो फुटबॉल ही है, और पूरी दुनिया फुटबॉल को देख रही है. और अभी मैं जब आ रहा था गजनफर तो मैं डी चौक के पास देख रहा था, इतनी आवाम थी लिटरली कि वहां पे बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर जो जगह थी वो सारी गाड़ियों से फिल अप हो गई है. फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, बच्चों को लेके लोग आ रहे हैं, तो उसको एंजॉय करने के लिए तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा क्रेज है.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, सीडीए की जानिब से इस इवेंट को मुनाकिद किया गया है और ओपन इन्विटेशन था तमाम तर फैमिलीज के लिए, तमाम तर लोगों के लिए कि अगर वो अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल देखना चाहते हैं तो फूड स्टॉल्स मौजूद हैं. अगर आप इस वक्त हमारी आवाज भी सुन रहे हैं और अगर आप घर जा रहे हैं और आप कहते नहीं यार फुटबॉल मैच किसी अच्छी जगह देखना है, अब आई थिंक अब रश की क्या सूरत हाल है वो हम जाहिर है हमें नहीं पता, बिकॉज़ यार काफी रश है. तो वी आर इन द स्टूडियोज, लेकिन एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी जो है वहां पे ऑर्गेनाइज की गई है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में CDA की कोलैबोरेशन से जारी है। और अच्छा, मुझे एक फील आ रही है खुर्रम कि मुझे लग रहा है कि ये फैसला जो है प्लेंटी शॉट आउट्स पे होगा।
1: आई डोंट थिंक सो,
0: मुझे लगता है
1: क्योंकि जिशान बात यह है कि इस वक्त जो स्पेन की स्ट्रेटजी है ना, जो इस वक्त नजर आ रही है, वो ये है कि वो पहले कुछ मिनटों के अंदर लीड लेना चाहते हैं, वैसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो अब उनको वो बड़ा अटैकिंग खेल रहे हैं, लेकिन इसका उनको नुकसान भी हो सकता है कि अगर अर्जेंटीना थोड़ा सा अगर अटैकिंग खेला डिफेंडिंग से हटके तो वो गोल स्कोर कर सकता है। और अगर आप देखें लास्ट जो थर्ड पोजीशन का मैच हुआ था फ्रांस का और इंग्लैंड का, उसके अंदर 6 गोल स्कोर हुए हैं इंग्लैंड की तरफ से और 4 जो है वो फ्रांस की तरफ से हुए हैं। तो गोल स्कोर जो है वो होने की जो है उम्मीद है वो बहुत ज्यादा है। तो ये वहां पे आई थिंक सो पेनल्टी किक्स के ऊपर चीजें जाती हैं जहां पे दोनों टीमें बिल्कुल ही हम पल्ला हों और इतनी ज्यादा हम पल्ला हों कि गोल स्कोर ना कर सकें, और जहां गोल स्कोर ना हो तो वहां जा सकते हैं, लेकिन हाँ जा भी
0: सकते हैं। ऐसे ही जाहिर है, दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं तो डेफिनेटली अच्छा खेला है तो ही फाइनल में पहुंची हैं। और हमेशा से हम कहते हैं ना कि हॉकी बाय चलाकी, फुटबॉल बाय फोर्स एंड क्रिकेट बाय चांस। तो अब
1: फुटबॉल जो है वो टेक्निक की गेम हो चुकी है,
0: की भी गेम है,
1: टेक्निक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है।
0: और आपको क्या लगता है कि इफ वी कंपेयर अ प्लेयर्स अर्जेंटाइन एंड स्पेन, तो ज्यादा टेक्निक इनकी अच्छी है?
1: टेक्निक अर्जेंटीना के पास है,
0: अर्जेंटीना के पास है ना।
1: और लेकिन स्पेन स्पेन को भी आप कम नहीं कह सकते, क्योंकि स्पेन का जो क्लब है बार्सिलोना, वो एक ऐसा क्लब है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे
0: हैं,
1: तो उसमें सारी स्ट्रेटजीज उनको पता है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्पेन की टीम में, इसमें से मैक्सिमम प्लेयर बार्सिलोना के,
2: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, उनका डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब देखते हैं कि गेम जो है 9:33 की दोस्तों गेम हो चुकी है, और अब देखते हैं कि आज पहला गोल जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का वो कौन कर पाता है। अभी चूंकि गेम का आगाज हुआ है, स्पेन ने कुछ अटैक्स किए हैं लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। अर्जेंटीना अभी तक उस तरह स्पेन की डी में नहीं पहुंच पाया सिंगल टाइम भी, लेकिन वही बात है कि चूंकि अभी गेम का आगाज हुआ है, एक आधा मिनट या कुछ सेकेंड जो है वो गेम का पासा पलटते हैं। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा जो जब फाइनल में क्वालिफाई किया था अर्जेंटीना की टीम ने, और जिस तरह मेसी ने पासेस करके गोल करवाए थे, बहुत कमाल के पासेस किए थे मेसी ने, और अर्जेंटीना की टीम जीतने में कामयाब हुई थी। 10 मिनट का दोस्तों खेल हो चुका है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं नंबर आपको हम बता देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम लाइव कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, 051-111-0101 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, SMS के लिए 4471। फेसबुक पे एक अदद पोस्ट मौजूद है, आप उस पर वहां कमेंट करेंगे। आप जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या जिसको चाहते हैं कि आज वो जीते, अपना नाम लिखना है और उस टीम का नाम लिखना है कि आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में निशा नासिर और खुर्रम बेग हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम भाई, शायद आप सिर्फ के भी अनाउंस करते हैं या खुर्रम बेग पूरा भी बताते हैं?
1: कभी कभार कह देता हूं,
2: किसी किसी को पता है कि खुर्रम बेग
1: नहीं, सब कुछ पता है।
2: अच्छा, नहीं वैसे अनाउंस आप के भी करते हैं?
1: हाँ, वो जरा लंबा हो जाता है खुर्रम बेग, तो बस
2: जान भाई आपने ZN करना है,
1: और दोस्त भी कहते हैं ना।
2: अच्छा, आप
0: जी, हाँ आप GN कर दें,
2: GN कर दें,
0: गुड नाइट। अच्छा, वैसे अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, सिंस मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप दोनों को ही फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, तो कैन वी से कि जैसे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज खेला करती थी कभी क्रिस गेल के ऊपर, तो अर्जेंटीना मैसी के ऊपर खेलती है? इज इट
2: ऐसा है
0: लेकिन या उनके अलावा भी प्लेयर्स कुछ हैं
2: तगड़े?
0: फॉर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम मेसी, अर्जेंटीना का कौन सा प्लेयर है जिसको भी देखना होगा?
1: अच्छा, जिशा मैं बताऊं ना कि अर्जेंटीना के अंदर जितने प्लेयर्स हैं ना, उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत है, बहुत ही कमाल है। आपस में जितनी भी टीमें जलन है, अगर इनको आप देखेंगे ना अटैक करते हुए तो ये पूरी टीम अटैक करती है, और अगर आप इनको डिफेंड करते हुए देखेंगे ना तो ये पूरी टीम डिफेंड करती है, और यही सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ।
0: और जो चीज हम मिस करते हैं पुर्तगाल में, बिकॉज वो रोनाल्डो को, वैसे मैंने सुना है, अब हो सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि कुछ प्लेयर्स इनसिक्योर होते हैं रोनाल्डो से पुर्तगाल की टीम में, पास ऑन नहीं करते हैं, और ये कुछ है ऐसा? मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पूरी अभी पिछले दिनों में अभी बैठा हुआ था,
1: तो इस वक्त जो सिनेरियो था जो इस वर्ल्ड कप के अंदर था, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं रोनाल्डो को, उनको पता है कि रोनाल्डो की वजह से हमारे मुल्क को बहुत फेवरेट समझा जाता है, और डेफिनेटली कि रोनाल्डो से बड़ा ब्रांड जो है वो फुटबॉल में कभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, और इससे बड़ा ब्रांड जो जितना फीफा ने उसको एंजॉय किया है, या पुर्तगाल ने एंजॉय किया, पुर्तगाल की टीम ने इवन एंजॉय किया, तो उसमें कोई शक नहीं है कि रोनाल्डो बहुत बड़ा ब्रांड था, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं
0: वो चाहेंगे कि
1: हम उससे उनको फायदा ही है, नुकसान नहीं है. और दूसरा ये है कि हाँ हर कोई रोनाल्डो बनना चाहता है.
0: हाँ ये है, बल्कि इवन आई थिंक इसमें स्पेन में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बकायदा जिनके बयान थे कि आई वांट टू डू इट फॉर द रोनाल्डो एंड ऑल दैट स्टफ. तो स्पेन के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है रोनाल्डो,
1: डेफिनेटली रोनाल्डो के साथ खेलते हैं और रोनाल्डो वाकई बहुत बड़ा ब्रांड है और जिस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज उनके पीछे जाती हैं, क्योंकि देखें जिशान अल्टीमेटली हम सारी चीजें तो करते हैं, हमें फेम भी चाहिए होता है, बाकी चीजें भी चाहिए, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है दैट इज मनी, जिसके लिए फुटबॉल खेला भी जाता है, हर काम इंसान करता है. तो जितने भी फुटबॉलर हैं तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो ये समझेंगे कि भाई हम रोनाल्डो जैसी पर्सनालिटी ना बने.
0: सही बात.
1: और जिस चीज को वो हाथ लगाते हैं, जिस चीज के ऊपर वो,
0: हमारे पाकिस्तान में कभी भी कहते हैं इतना अमीर है उसका अपना जहाज है,
2: इसमें कोई शक नहीं है. बड़ी जबरदस्त बात की है. और फीफा जो फुटबॉल है इसका कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा है और इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. फुटबॉलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं. कुछ दिन पहले हमने इसके विनर और रनर अप के हवाले से और जितने भी टीम्स हैं उनको कितना मुआवजा मिलेगा वो डिटेल भी शामिल की थी, अब से कुछ ही देर में भी करेंगे. तो वो अरबों में जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में अगर उसको कन्वर्ट करें तो वो फाइनल जीतने वाली और रनर अप टीम को दी जाएगी आज फीफा की जानिब से. बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो इस
0: मैच पहला येलो कार्ड आया है भाई,
2: वो भी एक शो हुआ था. अंपायर जो है वो आए हैं, एक देखते हैं कि क्या येलो कार्ड यहाँ पे उनको दिखाते हैं कि नहीं. दोस्तों कुछ स्टैट्स इस वर्ल्ड कप के हवाले से आपको हम बताएं. और इस दफा वर्ल्ड कप में 2024 के वर्ल्ड कप में 272 इस फाइनल से पहले की हम बात करें, 272 येलो कार्ड्स दिखाए गए और 15 रेड कार्ड्स दिखाए गए हैं. और 2024 में ये कार्ड्स की तादाद 272 येलो और 15 रेड कार्ड्स, जबकि अगर मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप की तारीख के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कार्ड्स की तादाद थी वो 2006 के वर्ल्ड कप में थी और जिसमें 345 येलो कार्ड्स और 28 रेड कार्ड्स दिखाए गए थे. और इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा कम है चूँकि इस दफ़ा एआई का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे ना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुई हैं चीज़ें. अभी देखते हैं कि ये फाइनल जो है दोस्तों आज के दिन कौन जीतता है.
0: अच्छा एक चीज़ काबिल गौर है थोड़ी सी, मैच दिन में हो रहा है, ये वैसे एक चीज ऐसी है कि नाइट में नहीं होना चाहिए था, आपको क्या लगता है?
2: टाइमिंग का काफी ज्यादा ये यहाँ का वहाँ का आप देखें,
1: वहाँ मौसम बहुत अच्छा है,
0: मौसम बहुत अच्छा. लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट आई थिंक जितने भी आपके अगर आप मेन स्पोर्ट्स इवेंट्स देखते हैं जो वर्ल्ड कप के हवाले से, या डे नाइट होते हैं या फिर नाइट में होते हैं, इट्स लुक गुड एक्चुअली और क्राउड पुल इन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना.
2: बिल्कुल ऐसे. लेकिन फाइनल का चूंकि निशान भाई फुटबॉल फैंस बहुत क्रेजी है, आप ये पिछले दिनों में एक मैच हुआ था और मैच के बाद जो फैंस ने हाल किया था, लेकिन वो एक क्लब लेवल का मैच था, तो इस लिहाज से भी अगर चीजों को देखा जाए, चूंकि वर्ल्ड कप का फाइनल एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा मैच है, इसको होस्ट इस वक्त यूनाइटेड स्टेट भी दोस्तों इस वक्त कर रहा है और यहाँ पर
0: इस वक्त मेसी को धक्का दिया गया है और 10 नंबर की शर्ट पहने हुए मेसी इस वक्त ग्राउंड में गिरे हैं और आई थिंक क्लियरली पुश किया गया था,
2: 15 नंबर के शर्ट पहने वाले ने उनको धक्का दिया. ऐसे ही शुरू में जिशान भी लास्ट जो मैच हुआ था जिसमें सेमीफाइनल था उसमें भी जो बहुत ज्यादा स्टार्ट के कुछ मिनट से एक प्लेयर्स में आपस में दोनों को एक दूसरे के प्लेयर्स को काफी ज्यादा टफ टाइम दिया गया. 16 मिनट की गेम दोस्तों हो चुकी है, स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना इस वक्त फाइनल जारी है और अर्जेंटीना यहाँ पर डी के करीब है, उनको जैसे मेसी को गिराया गया तो एक फ्री हिट जो है वो मिली. अब देखते हैं कि इस पे क्या अटेम्प्ट की जाती है, अटेम्प्ट की लेकिन प्लेयर जो है वो फुटबॉल से काफी दूर रहे. तो ये फर्स्ट अटैक अगर कहा जाए अर्जेंटीना की जानिब से स्पेन की टीम को था. आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज 4471 पे और फेसबुक पे मैसेज कीजिएगा. कॉल्स हम 12:30 की जो उसके बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप लोगों ने सिर्फ फुटबॉल के हवाले से बराए मेहरबानी बात करनी, आज कोई गाना आपने कुरम भाई को नहीं सुनाना.
0: नहीं यार क्यों, कुरम भाई आज इतने जबरदस्त लग रहे हैं ग्रीन कपड़ों में,
2: बहुत प्यारे लग रहे हैं.
0: हां तो उनको मैं क्यों ना करें वो बात यार,
2: रेडियो टीवी आर्टिस्ट फोन अंदर अंदर आपके प्रोग्राम में आते
0: हैं रेडियो टीवी
1: आर्टिस्ट.
2: बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 0511 111 0101. आतिर अली सैयद का आज प्रोग्राम था, अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो ابھی ان کا میسج آیا ہے گول ہی کروا دیے انہوں نے, مطلب
0: نہیں آ رہے وہ تو کہہ رہے تھے میں آ رہا ہوں,
2: بس کچھ ملا جلا, اور ابھی کہتے تھے آپ لوگ انجوائے کریں.
0: میرا کیا ہے,
1: ارجنٹینا میں ایک اور چیز بھی غزنفر میں آپ کو نشان بتاؤں گی جو سب سے خاص یہ ہے کہ ان کے گول کیپر جو کہ مارٹینز ہیں, ان لاسٹ ورلڈ کپ کے اندر بھی کنفرم گول سکور تھا جو انہوں نے روکا تھا امباپے کا, اور انہوں نے اس طرح سے جو میچ جو ہے وہ جتوایا تھا, اور بہت ہی تجربہ کار گول کیپر ہیں اور بہت ہی اسٹرانگ گول کیپر ہیں, تو ایک ان کو یہ ایج بھی ہے اگر پینلٹی ککس پہ میچ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ارجنٹینا کے پاس ایک ایج ہے مارٹینز کا. تو اس وقت جو ہے وہ کافی سینئر پلیئرز اگر جو ہے وہ ہم دیکھیں تو ارجنٹینا کے اندر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں,
0: کیونکہ جو بھی ٹیم پہلا گول سکور کرتی ہے عمومی طور پہ جو میں نے نوٹس کیا ہے پھر ان کی اسٹریٹجی مور اور لیس ہو جاتی ہے کہ بال پوزیشن اپنے پاس رکھا جائے اور لنگر آن کیا جائے ٹائم کو
1: تاکہ پاسز کھیلے جاتے ہیں
0: جیتنے کے چانس زیادہ ہوتا.
2: بالکل ایسے ہی ہے جو کہ دوسری ٹیم کو پھر
0: جان کے کر رہے ہیں,
2: وہ جاتی ہے

0: एक्चुअली वो यमाल को उन्होंने गिराया, यमाल जो है वो उनके मोस्ट फेवरेट हैं और दूसरी तरफ मेसी हैं, तो दोनों टीम्स की तरफ से साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है और फिजिकल प्रेशर भी बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों डेंजरस प्लेयर्स हैं दोनों साइडों की तरफ से।
1: दोस्तों 18 मिनट का जो है वो खेल हो चुका है, अब आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? और आज जैसे कि बताया गया ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लियारी को जैसे कि न्यू ब्राजील कहा जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी वहाँ पे ओवरऑल पूरा वर्ल्ड कप ना इसी तरह स्पिनिंग करके दिखाया गया, तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जाते रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के अहदेदार भी, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है वो जाके उन्होंने देखे, आमिर खान जो बॉक्सर रहे हैं वो के
2: He's from Lyari as well, if I'm not wrong. क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक बॉक्सिंग एकेडमी जो है वो ओपन की थी लियारी में, क्योंकि बॉक्सर्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं वहाँ से,
1: ठीक हो गया,
2: जो बॉक्सर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और फुटबॉल जो स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे निकलते हैं
1: ऑब्वियसली, जो कि लियारी को इसीलिए,
2: क्योंकि मैंने एक ब्रांड के लिए, एक ड्रिंक का ब्रांड है उसके लिए हमने एक फुटसॉल लीग हुई थी जो मैंने होस्ट की थी, लाइक आई वॉज होस्टिंग इट, तो वो हम जब लाहौर गए, कराची गए, रावलपिंडी गए, तो ऑडिशंस के लिए जब लड़के आ रहे थे फुटसॉल लीग के लिए, फुटसॉल इज आप यूं समझ लेंगे फुटबॉल का कजन होता है, तो उसमें थोड़ी जगह थोड़ी होती है, प्लेयर्स की तादाद थोड़ी होती है, मोर लेस होता फुटबॉल ये, तो वो उसमें ज्यादातर है ना
0: सिक्स सेवन
2: प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो लड़के आ रहे थे दे आर फ्रॉम लियारी,
1: ठीक हो गया जी, इसमें कोई शक नहीं है वहाँ पे बहुत टैलेंट पाया जाता है जी फुटबॉल के हवाले से,
2: काफी टैलेंट पाया जाता है
1: ये तो इसमें कोई
2: शक भी गए
1: नहीं सर,
2: अच्छा उधर तीन टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं सिंस आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, तो एक फुटबॉल जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, एक बॉक्सिंग का और तीसरा रैपिंग का, रैपिंग का भी बहुत टैलेंट अच्छा है रैपिंग का भी वहाँ,
1: क्या बात है।
2: या आपने वो बरोही आबिद बरोही जो है ही इज फ्रॉम लियारी, अली जफर के साथ जिन्होंने वो है ना अली जफर बीट दबा वो उसमें वो अच्छा आबिद बरोही इज फ्रॉम लियारी,
1: ठीक हो गया। दोस्तों जो स्पेन है वो इस वक्त अटैक कर रहा है और जैसे कि कुरमन ने कहा कि फिजिकली फिलहाल टॉर्चर कर रहे हैं एक दूसरे की टीम को,
2: सर मैं आपको बता रहा हूँ प्लेंटी शूट आउट पे ये फैसला होगा,
1: और आप अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं,
2: मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर
1: रहा हूँ, जी कॉलर देखते हैं कि कौन हमें सबसे पहले कॉल करते हैं और किस टीम को सपोर्ट करें, निशान भाई
2: जी तुसे इसको को वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाए आप ठीक है,
1: ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच फजल महमूद साहब कराची से, तो दोस्तों आज जस्ट आगे अपने अपना नाम बताना है कि शहर से कॉल कर रहे हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी हमने ढेर सारी कॉल शामिल करनी है, खुर्रम भाई नेक्स्ट कॉल आप
2: आई लग जाए बहुत इंस्ट्रक्शन में
0: हेलो
2: तो कॉल आई है दूसरी लेना भाई, अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम जी भाई क्या हाल है जी, उस्मान साहब कहाँ से जी बताइए, उस्मान साहब किस टीम को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं
3: जी, मैं को कर
0: रहा। ओके जी वेरी बिल्डर कहते रहे
1: जी जी,
3: मैं
2: चले यार थैंक यू अल्लाह
0: सो मच, आप सुने हम आपको पूरा बॉल टू बॉल बताते हैं जी क्या हो रहा है, ठीक है
3: जी,
2: ओके सुनते रहिए यार, वी आर हियर फॉर यू ओनली इंशाल्लाह, वो एक वीडियो भी आई थी जिसमें एक वो बाप जो अपने बेटे को बकायदा यूं हाथ से फील करवा रहा था एंड ऑल दैट, ओके अब से कुछ देर पहले तक की इतलात के मुताबिक सामईन हम आपको बताते चलें कि 22 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका है, पहला हाफ इस वक्त जारी है, दोनों टीम्स इस वक्त कोई भी गोल स्कोर करने से नाकाम रही हैं, ऑल दो के अच्छा अटैक हमें देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स की जानिब से लेकिन गोल स्कोर करने में नाकाम हुई है।
0: अच्छा निशान अभी जो मैं इस वक्त जो वो सेंस कर रहा हूँ ना कि अर्जेंटीना की जो टीम इस वक्त खेल रही है वो अपनी गेम पे आ चुके हैं, लॉन्ग पासेस वो खेलना शुरू कर गए हैं जो कि वो 75 मिनट्स या 70 मिनट्स तक टीम को थकाते हैं खूब थका रहे हैं, लॉन्ग जो पासेस है वो खेल रहे हैं इस वक्त और उन गेम के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है, तो इससे पहले के वो कंट्रोल संभाले स्पेन को गोल स्कोर करना होगा और बाकी वो इसकी इसी स्ट्रेटजी के खिलाफ भी देखें स्पेन भी इसको मॉनिटर कर रहा है, तो स्पेन चाह रहा है कि मैं पहले लीड ले लूं ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करूं और जो वो बड़ी कूल एंड काम होकर खेलते हैं ना तो ताकि उनके माइंड के अंदर से ये वाली बात हम निकाल सके, तो इसलिए अभी अटैकिंग पोजीशन पे है स्पेन लेकिन अर्जेंटीना जो है वो बॉल पोजीशन रख रहा है और लॉन्ग पासेस के ऊपर खेल रहा है
2: ऐसे ही। अच्छा यार द बेस्ट थिंग अबाउट फुटबॉल इज जो मुझे अट्रैक्ट करती है दैट कि जो उनके कोच हैं कोचेज कोई भी टीम हो जो उनकी ड्रेसिंग है जिस तरह वो इन्वॉल्व होते हैं गेम में एंड ऑल दैट स्टफ है.

0: that is something very exciting at fitness level.
1: और जिस तरह जितनी टेंशन प्लेयर्स को ऑब्वियसली टेंशन होती है, लेकिन बाहर जो उनके मैनेजर्स और कोचेज जो हैं उनको भी बहुत ज्यादा नजर आता है कि यार वो पेन फील कर रहे हैं. और ये ओवरऑल बड़ी जबरदस्त गेम, आपको पता है कि फुटबॉल के हवाले से. दोस्तों स्पेन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लास्ट जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2010 में, साउथ अफ्रीका ने उसको होस्ट किया था. नेदरलैंड के खिलाफ इन्होंने जो है वो फाइनल खेला गया था, स्पेन वर्सेस नेदरलैंड. 1-0 से कामयाबी हासिल की थी. जबकि जो लास्ट वर्ल्ड कप 2022 में कतर में खेला गया, वो अर्जेंटीना ने वर्सेस फ्रांस जो है वो कामयाबी हासिल की थी 4-2 से. तो आज 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ये फाइनल खेला जा रहा है, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन. लाइव कॉल के थ्रू अभी अर्जेंटीना के दो वोट्स आ चुके हैं और स्पेन का अभी तक वोट कोई नहीं है. तो हम वोट भी काउंट करेंगे स्टूडियोस में भी. स्पेन बस वो हल्का फुल्का आपके लिए.
0: जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर. जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी कैनी साहब, अर्जेंटीना या स्पेन?
2: जी पहले तो मैं ऋषान साहब और एमबी साहब और मुजफ्फर कैनी साहब को हमें ये मैच देखने में जितना लुत्फ आ रहा है, हमको मैच देखने में नहीं आ रहा. तीनों माशाल्लाह लेजेंड हमारे,
0: लेजेंड वाह क्या बात.
2: और दूसरा ये है कि
0: सर पकड़े
2: बहुत अच्छे हैं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी फैन जो है ना वो ईरानी कबाब खा गया है, इंशाल्लाह स्पेन ही जीतेगा.
1: बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और नेक्स्ट कॉल,
3: अर्जेंटीना पहले जीता हुआ वर्ल्ड कप.
4: हां हां, अर्जेंटीना 3 से 4 वर्ल्ड कप
0: अब फिर ठीक है.
1: स्टैंड्स पर था. अस्सलाम वालेकुम जी.
4: और अगर ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीत जाता है तो दो लिहाज से बड़ा डिफरेंट है. एक तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री हो जाएगी,
0: वेरी नाइस.
4: दूसरा ये हो जाएगा कि अर्जेंटीना बैक टू बैक दो वर्ल्ड कप आगे पीछे कंसेक्यूटिव जीतेगा. तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि मेसी दो वर्ल्ड कप बैक टू बैक
0: जीताएगा.
4: तो अर्जेंटीना ने जीत गया तो उनके लिए तो ये बहुत
0: बड़ा न्यारा हो जाएगा, गुड हो गया.
1: अर्जेंटीना ने दोस्तों पहला जो वर्ल्ड कप 1978 में जीता था वर्सेस नेदरलैंड, 3-1 से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. उसके बाद एक वर्ल्ड कप के गैप, मतलब जो 1978 में अर्जेंटीना ने जीता, 1982 में इटली ने जीता था. फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ 1986 में, अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी की टीम को शिकस्त दी थी दो वर्ल्ड कप. और उसके बाद तीसरा वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने जीता था. ये अगर इस दफा जीत जाते हैं तो फोर्थ वर्ल्ड कप हो जाएगा अर्जेंटीना
0: के, यानी कि फुटबॉल की दुनिया की ऑस्ट्रेलिया है.
1: हाँ, हो जाएंगे अगर ये जीत जाते हैं. और स्पेन के पास एक वर्ल्ड कप है जो उन्होंने 2010 में जीता था वर्सेस नेदरलैंड, फाइनल खेला गया था.
0: ये बीच में ब्रेक किस चक्कर में दी है इन्होंने यार, ये तो स्ट्रेट
4: हाइड्रेशन ब्रेक होती है. हाइड्रेशन ब्रेक,
0: हाइड्रेशन ब्रेक
1: होती है. ऑफिशियल जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का दोस्तों वो भी हम आप
0: शकीरा ने गाया इस दफा.
4: हां शकीरा ने गाया ना
0: यार, वो वका वका बड़ा अच्छा, वो है आपके पास वीडियो में लगाइएगा. अच्छा
1: आपको दिखाता हूं आपसे दे सारी बातें करेंगे, लाइव कॉल भी शाम करेंगे.

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और बीटीएस ने क्या ही जबरदस्त परफॉर्म किया है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अब हमें लग रहा है कि द गेम शुड बी ऑन द फास्टर एंड। आप लोगों की वैसे इसमें राय क्या, कैन बी आप बता दें और फिर खुरम भाई आपकी, आपको क्या लगता है अब जब टीम्स दोबारा आएंगी आइदर दे विल बी गोइंग टू अटैक या डिफेंड, क्या होने वाला है बताएं।
1: मुझे लगता है कि अटैक में जाएंगी दोनों टीम्स। स्पेन चूंकि पहले हाफ से ही उन्होंने अटैक पोजीशन रखी है और अर्जेंटीना अब कोशिश करेगी कि ऐसा ऐसा अपना रिदम पकड़े, चूंकि अगर स्पेन इस दौरान कोई गोल कर देता है फिर इनके पास थोड़ा सा मुश्किल होगा, चूंकि पहले हाफ का आपको ना एक मेंटली एक साइकोलॉजिकली आपके पास ये होता है कि यार अभी एक हाफ नहीं हुआ। जैसे ही अगर कोई एक टीम स्पेन पहले गोल कर देती है तो मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हम फुटबॉल के हवाले से भी कुछ मजीद भी गपशप कर रहे हैं, एक और परफॉर्मेंस भी है ये भी लाइव जो इस वक्त न्यू जर्सी न्यूयॉर्क स्टेडियम में चल रहा है।
0: जस्टिन बीबर
1: हल्का फुल्का आपको दिखाएंगे, दाढ़ी रख ली है इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे उनको। थोड़ा सा आपको लाइव
0: लेकर बड़ा क्रेज था यार एक टाइम पे इसका।

0: वो शेर है ना एक के, देखकर उसे दिल उदास तो हुआ लेकिन उम्र भर कौन हसीन कौन जमा रहता है। मतलब मुझे अपना वो कॉलेज टाइम याद आ गया कि उस टाइम पे बड़ा एक इनका एक ट्रैक था बेबी बेबी, उस टाइम पे बहुत इनका एक क्रेज था एंड ऑल दैट। लेकिन चले बाहर दुनिया चलता है।
1: तो इस वक्त आप लाइव मनाजर जो है हम देख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं जिस वक्त न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में जिसमें बीबर जो परफॉर्म कर रहे हैं
0: इस वक्त। अमीरों के आसिम अजहर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 फिनाले में। आप तो ऐसे कोई बात नहीं कहते क्या भैया ना अच्छा यार वो खुरम भाई से सवाल रह गया था जिसका जवाब आपने भी दिया। खुरम भाई क्या लगता है वापस टीम आएंगी गोइंग टू बी द फास्ट गेम या आपको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ा सा लिंगर ऑन होगा?
2: डेफिनेटली दोनों टीमें अटैकिंग पोजीशन पे खेलेंगी लेकिन मुझे लगता है कि अर्जेंटीना थोड़ा सा 10 से 20 मिनट मजीद जो है वो डिफेंडिंग पोजीशन पे जाएगी।
0: अच्छा।
2: और 10-20 मिनट के बाद आप फिर अर्जेंटीना को आप बिल्कुल डिफरेंट एक टीम पाएंगे। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम एज कम्पेयर टू स्पेन
0: दूसरे एंगल से नहीं है। ठीक बिल्कुल
2: ठीक है। तो आपको स्पेन जो है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि आप अगर उन्होंने पहले हाफ के अंदर भी काफी अटैकिंग खेला और दूसरे हाफ के अंदर भी वो फुल टाइम अटैकिंग खेलेंगे तो इसका उनको एज जरूर मिलेगा।
0: वाह वाह वाह। तो ये हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त तो है मैं बताता चलूँ सामईन आपको कि थोड़ी देर पहले बीटीएस ने परफॉर्म किया फिर जो है जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया और अब शकीरा परफॉर्म कर रहे हैं।
2: शकीरा को लगाए जी सुनने वालों को भी सुनाए हम भी सुने देखें शकीरा क्या कमाल है जी।
0: और ये
2: एज के अंदर
0: मक्का वक्का में भी ऐसी थी अभी भी ऐसी
2: आई थिंक सो 45-50 की होगी और क्या कमाल है किस कदर उन्होंने अपने आप को म्यूजिक में उन्होंने मेंटेन रखा है किस तरह उन्होंने अपनी ऑरा को मेंटेन रखा है कि आज भी फुटबॉल में अगर किसी म्यूजिशियन को देखा जाता है तो वो शकीरा के बगैर
0: जी क्या नहीं भाई इन्हीं को देखा जाता है।
1: बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको इशारा करता हूं कि माइक ऑन नहीं है
0: नहीं तो इन्हीं को ही देखा जाता है
1: जी बिल्कुल ऐसे ही देखें पूरी दुनिया उनको देख रही है। और
2: अच्छा आपने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है?
0: नहीं नहीं मैंने
2: किया
0: है। अच्छा वेरी नाइस। ये साथ स्नूप डॉग है मेरा ख्याल से
1: वही है।
0: अच्छा मेरे आज सारे तुक्के सही लग रहे हैं।
2: ये वैसे बंदा मुझे ना समझ में नहीं आया।
0: शकीरा को समझ में आया हुआ है
2: इसको बड़ा मैंने फॉलो किया लेकिन ये बंदा मुझे समझ आया कि ये शकीरा के लेवल का सिंगर नहीं था कि जिस तरह उन्होंने इसकी फीफा की ओपनिंग सेरेमनी पे भी इसने आगे गाया शकीरा के साथ परफॉर्म किया और आज क्लोजिंग सेरेमनी पे भी है।
0: ये वहां का आयमा बेग होगा
2: लेकिन आई थिंक सो ये जो गाना उन्होंने बनाया ना जो इनका जो ऑफिशियल एंथम है फीफा का तो इसमें इसके साथ है इसलिए
1: और क्या जबरदस्त किस्म की तकरीब जी इस वक्त जा रही है न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में।
0: यार स्टेडियम बाकी अच्छा है
1: क्राउड की बहुत बड़ी
0: तादाद
1: 3 जो टीयर्स में ये बना है स्टेडियम। अच्छा अब खुरम भाई आपसे एक सवाल भी पूछना है मैच के जब आगाज होगा तब भी साथ साथ हम गपशप करेंगे। इस वर्ल्ड कप में न्यू टैलेंट जो है वो काफी ज्यादा सामने देखने को आया है। वैसे ओवरऑल दुनिया में अगर बात की जाए जो लोग नॉर्मली फुटबॉल फॉलो करते हैं वो तो हर प्लेयर को जानते हैं। बहुत कम लोग जो हैं रोनाल्डो मेसी इसके अलावा अगर बात की जाए यमाल जो हैं और इसके अलावा जिन्होंने रिटायरमेंट ली ब्राजील के जो खिलाड़ी उन लोगों को जानते हैं। इस वर्ल्ड कप में नया टैलेंट आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी जो फ्यूचर के स्टार बनेंगे लाइक रोनाल्डो मेसी?
2: देखें एक तो स्टार आपका बन गया है जो कि स्पेन जैसी फाइनल में पहुंचे हैं तो यमाल। यमाल एक ऐसा स्टार है कि जो आपको देखने को मिलेगा कि ये नेमार और आपको आई थिंक सो रोनाल्डो और मेसी के लेवल का खिलाड़ी आपको नजर आएगा। लेकिन एक खिलाड़ी और है जिसको जो है वो आई थिंक सो लोगों ने शायद कि उसको नोटिस किया हो या ना किया हो लेकिन मैंने उसको नोटिस किया है और मुझे लगा है कि वो खिलाड़ी बाकी बहुत बड़ा नाम बनेगा। नेमार को रिप्लेस करेगा वो ब्राजील का वो खिलाड़ी है जिसका नाम है विंसी जूनियर। और विंसी जूनियर जिस तरह नेमार जेआर था उस तरह अभी विंसी जूनियर आया और बड़े छोटे कद का एक सांवले रंग का खिलाड़ी है लेकिन क्या कमाल खेलता है क्या उसके पास टेक्निक है क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है और आई थिंक सो उसने गोल स्कोर्स भी किए हैं आई थिंक सो 4 के 5 उसके गोल स्कोर्स भी हैं। तो विंसी जूनियर गजनफर जो है वो एक कमाल खिलाड़ी जो है वो इस वक्त निकला है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में। और जो यमाल है ये तो वैसे भी बार्सिलोना के स्टार थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इन्होंने परफॉर्म किया है उसके बाद अपनी टीम को इस तरह वो लेके आए हैं फाइनल के अंदर, तो यमाल जो है वो एक नया ब्रांड आपको देखने को मिलेगा आफ्टर रोनाल्डो मेसी।
1: जी जी दोस्तों, ये कुछ नए प्लेयर्स के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, आपको दोबारा एक दफा कुछ लम्हों के लिए स्टेडियम में ले जाते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है आप एंजॉय करें, फायरवर्क्स भी हो रहे हैं, लेकिन फायरवर्क्स तब अच्छा लगता है कि नाइट वाला सिलसिला
0: नहीं, ये वाला भी फायरवर्क्स ठीक है,
1: ऑन ही ठीक है,
0: हां तो सही है ना, अच्छा है ना यार, ये वाला भी अच्छा है, इन्होंने पैसा लगाया। आप
1: आपके फेवरेट आ गए हैं इंशाल्लाह,
0: मेरे फेवरेट पहले थे इससे। अच्छा वाह जी वाह, वो टिकटों का पूछ रहे थे भाईजान, वो मैच खत्म होने के बाद बताएं आप टिकट कितने की है। हां जी टिकट है, पूछ रहे थे उस पे वो वीजा लगा हुआ है उनका अमेरिका का, सारा जहाज रेडी है बस टिकट नहीं मिली उसको, बताएं जी क्या कीमत थी टिकट की।
2: चलिए दोस्तों, अभी मुझे निशान थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया।
0: तो हां सो यू हैव ओ वाकई
2: लाइफ टाइम फाइनल आई थिंक सो देखने चाहिए था मुझे
0: वाकई। चलें कोई नहीं, फिर हमारे साथ कौन होता है आप
1: कुछ डिटेल फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की, एक टिकट जो है वो की कीमत 64 करोड़ रुपए तक पहुंच गई आज की ये लेटेस्ट, जो इसके अलावा जो है
0: सिर्फ मैच मैच की टिकट।
2: अच्छा ये कोई स्पेशल बॉक्स होगा,
1: $20 लाख से तजावज कर गया। हाँ ये जैसे फिर वो लोग कहेंगे आप क्रिकेट की बात करते हैं, वो जो इनक्लोजर्स नहीं होते डिफरेंट किस्म के, उसकी
0: 64 करोड़
1: आपके, तो आप जब जाते हैं आप वीआईपी इनक्लोजर में बैठते हैं,
0: लेकिन 64 करोड़ वाले में तो मैं भी नहीं बैठा अभी तक मेरे दोस्त, मुझे जानना है कि इसमें होगा क्या, सिर्फ मैच तो नहीं होने लगा
1: बिल्कुल, वो इसीलिए खुरम भाई ने आपको कहा कि वो थोड़ा सा,
0: काश खुरम भाई चले ही जाते वापस आके हम पूछ लेते खुरम भाई होता क्या है वहां पर, है ना, एक बंदा बाकी हमारा होना चाहिए। हम आपको बताते चलें जनाब, इस वक्त यहाँ पर भी फेस्टिविटीज इस्लामाबाद में भी जारी हैं, और CDA की कोलैबोरेशन के साथ इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त फेस्टिविटी जारी है, जिसमें फूड स्टॉल्स हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब है, और मेरा ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन जो है वो डी चौक में इस वक्त नस्ब है, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल दिखाया जा रहा है। सो अगर आप इस वक्त रोड पर निकले हुए हैं, सोच रहे हैं कहां जाएं, तो जा सकते हैं वहां पे, ट्राई कर लें, बाकी हम यहां पे स्टूडियोज में आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करने के लिए
2: बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा जिशान, टिकट्स की बात हो रही थी,
0: तुसी दो ना चाबी,
1: तो खुलता खलता है
2: डॉक्टर साहब। जिशान जो टिकट की बात आप कर रहे थे, तो मैंने कुछ डेटा निकाला है, उसमें जो सपोर्टर एंट्री टिकट है टीयर 1 का वो है $60 का, जो कि पाकिस्तानी 16,680 रुपए बनते हैं,
0: ठीक है।
2: कैटेगरी 3 जो है वो $2,030 का है, जो कि 5 से 6 लाख का बनता है, और ये जो सपोर्टर एंट्री टियर है, ये स्टेडियम से बाहर जो स्क्रीन्स लगी होती हैं, ये उनका टिकट है, ठीक है। और जो आपका मैच का अंदर टिकट है वो 5 से 6 लाख का टिकट
0: शुरू
2: है। जी जी, जो नॉर्मल कैटेगरी 3 का है, चीपेस्ट स्टैंडर्ड जो है, और उसके बाद जो कैटेगरी 2 है वो $4,210 का है, जो कि तकरीबन 11 लाख रुपए का बनता है पाकिस्तानी, और कैटेगरी 1 जो प्रीमियम सीट है वो 6,730 है, जो कि तकरीबन 18 लाख रुपए का बनता है, जो कि इट्स आई थिंक सो के अंडरस्टैंडेबल, लेकिन करोड़ का नहीं हो सकता,
0: 64 करोड़ वाली पता लगाएं ये इसमें क्या है।
2: 64 करोड़ का जो होगा वो आई थिंक सो बॉक्स होगा पूरा, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आपका 100, 150, 100 बैठते हैं, और वो कंपनीज को बेचा जाता है,
0: वो बॉक्स होगा,
2: वो उठा लेती हैं, जिस तरह भी क्रिकेट के अंदर भी अगर आप देखें तो कंपनीज जो है वो बॉक्सेस दे लेती हैं,
0: एग्जैक्टली वो बॉक्स होगा, वो बॉक्स बंद होगा,
1: इसीलिए इतना महंगे,
0: और उसमें मैच के लिए स्क्रीन लगाई गई होगी।
1: जी दोस्तों, आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टिकट्स की डिटेल भी आप तक हमने पहुंचाई है,
0: हाँ वो हमने बता दिया, वीजा आपने खुद लगवाना है,
1: जैसे गेम का आगाज होता है इंशाल्लाह दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, आपने हमारे
2: साथ, हम पाकिस्तानी बेचारे यही सोचते रहे कि हम वर्ल्ड कप खत्म होगा टिकट सस्ते हो जाएंगे फिर जाएंगे
0: ऐसा ही है वाकई। खैर

0: اوکے سامعین, ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس خبر کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 اسپیشل ٹرانسمیشن غزنفر محمود کیانی, آر جے خرم بیگ اور ذیشان ناصر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوسرے ہاف کا کھیل شروع ہو چکا ہے, دونوں ٹیمز ابھی گول سکور کرنے میں ناکام ہی رہی ہیں, اور جیسا کہ ہم بات کر بھی رہے تھے بالکل ایسا ہی ہے, فرام دا ورلڈ گو ہمیں اٹیکنگ نظر آ رہی ہے
1: جتنے بھی بالز دیکھ رہے ہیں وہ مارٹینز کے پاس ہی جا رہے ہیں,
0: وہ ایک ہی طرح سے کک کر رہے ہیں
1: ایک ہی طرح سے, اور اتنا بھی اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی مارٹینز کو کہ وہ بال کو آپٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک سو اگر انہوں نے گول اسکور کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو کافی اچھی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی, اور بال کو اس ایریا کے اندر ہٹ کرنا ہوگا جہاں سے مارٹینز کی پوائنٹ سے دور ہو.
2: بالکل ایسے ہی جی, دوسرے ہاف کے اسٹارٹ میں یہ ایک اٹیک کیا گیا لیکن گول کیپر جو ارجنٹینا کے ہیں انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو سیو کیا, اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اب ارجنٹینا جو ہے کیا پہلے کے کچھ منٹ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گی گیم کو اور پھر اٹیک کی پوزیشن میں جائے گی, چونکہ ابھی تک 46 منٹ کی گیم ہو چکی ہے, ارجنٹینا نے اس طرح اٹیک نہیں کیا جس طرح وہ اپنی گیم کے آخر میں جو ہے وہ دوسری ٹیم پہ حاوی ہوتی ہے. اور اس وقت میچ فائنل جاری ہے دوستو, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس.
1: غزنفر سوری ونس اگین, میں کچھ چیز آ رہی ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اس میچ کے اندر بھی نا آپ کو فائنل بھی وہ فائنل نظر نہیں آ رہا جس طرح آپ نے سیمی فائنلز دیکھے ہیں یا اس سے پہلے کے جو میچز دیکھے ہیں, جس طرح اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح گول کرنے کے لیے کھلاڑی جان لڑا رہے ہوتے ہیں, تو دونوں ٹیمیں مجھے اس طرح دکھ رہی ہیں کہ آج انہوں نے اس طرح سے کوئی اٹیکنگ
2: مطلب اس سے پہلے جو میچ تھا وہ شروع کے پہلے ہاف میں نا وہ جان مارنے والے جو ایک
0: اور تھوڑا سا سلیجنگ پہ زیادہ دھیان دونوں ٹیمز کا مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ
2: اس میں کم ہے. پہلے جو میچ ہوا تھا جو سیمی فائنل
0: میں اس میں زیادہ آئی تھنک چانس بن گیا ہے نا
2: ارجنٹینا دوستو, یہاں پر ان کو آئی تھنک ڈی کے اندر ایک جو ہے وہ بیسی
1: کارنر ہے
0: اور میسی لے رہے ہیں 10 نمبر کی شرٹ پہنے ہوئے اور
2: اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, کارنر پہ میسی نے تھرو کیا تھا بال,
1: اچھا بال نہیں پک کر سکے میسی.
2: 47 منٹ کی گیم دوستو ہو چکی ہے اور اب دوبارہ ہم آپ کی لائیو کال پروگرام میں شامل کریں گے, اور فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون دوست ہمیں کہاں سے جنہوں نے جوائن کیا ہے. خرم بھائی, اس ورلڈ کپ کا سب سے جو فیورٹ آپ کا میچ رہا ہے وہ کون سا, اوور آل اگر بات کی جائے وہی ایجپٹ والا میچ ہوگا یا اس سے پہلے چونکہ کچھ ٹیمز نے ٹف ٹائم بھی دی ہے چھوٹی ٹیمز نے بڑی ٹیم کو اس دفعہ؟
1: بالکل جی, ایجپٹ والے میچ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو تھرڈ میچ ہوا ہے نا تھرڈ پوزیشن کے لیے جو ابھی فرانس اور انگلینڈ نے کھیلا ہے
2: جو کل کھیلا گیا,
1: یہ بہت بیسٹ میچ تھا آئی تھنک سو, جس طرح انہوں نے گول اسکورس کیے ہیں اور جس طرح وہ لڑے ہیں, حالانکہ وہ تھرڈ پوزیشن کا میچ تھا اور اس کے اوپر جو اتنی محنت کرنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی ٹیم کا, ویسے ہی دل ٹوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, لیکن پھر بھی بہت اچھا کھیلا انہوں نے. اور باقی بھی اگر بیلجیم کے آپ میچز دیکھیں, آپ نیدرلینڈ کے میچز دیکھیں, تو سارے ہی میچز ایسے تھے کہ جو کوئی غزنفر کو مٹھا میچ نظر نہیں آیا, سارے میچز کے اندر ہی ہمیں کافی اچھا فٹ بال دیکھنے کو ملا, کافی نئی ٹیکنیکس دیکھنے کو ملی ہیں اور پلیئرس کے اسکلس دیکھنے کو ملے ہیں, لیکن آج کا میچ تھوڑا سا جو ہے ڈس اپوائنٹ کر رہا ہے مجھے کہ اس طرح سے ابھی تک, شاید کہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہو کہ ہم اس کو ورلڈ کپ کے فائنل میچ ہے اور ہم آخری منٹس کے اندر جو ہے وہ تمام تر اپنے ایفرٹس پٹ ان کریں, لیکن آئی تھنک سو کہ جتنے فینس بیٹھے ہیں وہ پہلے جو میچ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ, اور میچ کے اندر گرما گرمی جب تک نہ ہو فینس انجوائے نہیں کرتے,
2: ٹھیک
1: ہے, تو اگر گول پوسٹ کے اوپر, ہاں تو گول پوسٹ پہ اٹیکس کریں گے, اگر ڈیفینس ہوگا گول کیپر کوئی اچھلے گا کچھ ادھر ادھر چلانگے مارے گا, مزہ آئے گا.
2: دو ایگزیکٹلی جو اٹیک کیے اسپین کی ٹیم نے وہ گول پوسٹ کے مڈ سے, ان کے گول کیپر ارجنٹینا کے آرام سے, ان کو کوئی دقت پیش نہیں آئی, گو کے یہ ایک بڑا کارنامہ کہ آپ فٹ بال فائنل میں فٹ بال ورلڈ کپ کے جو ہے وہ گول سیو کرتے ہیں. 48 ٹیمیں دوستو اس دفعہ مد مقابل تھی اور آلموسٹ 104 میچز کھیلے گئے اس فائنل کو چھوڑ کے, اور جو کہ کسی بھی اس سے پہلے جو ورلڈ کپ تھا اس میں سے سب سے زیادہ میچز اس دفعہ کھیلے گئے, اور 173 گول جو اسکور کیے گئے آلموسٹ ابھی تک اس فائنل سے پہلے کی اگر بات کی جائے, 60 لاکھ مطلب 6 ملین سے زیادہ شائقین نے صرف اسٹیڈیمز میں جا کے میچز دیکھے, اور باہر کی جیسے کہ خرم نے تھوڑی دیر پہلے ڈیٹیل شامل کی, اسٹیڈیم سے باہر بھی جو ہے وہ آرگنائز کروایا جاتا ہے, وہاں کا بھی ٹکٹ ہوتا ہے, تو یہ اس دفعہ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ رہا کارڈز کے حوالے سے. پہلے آپ کو بتایا 272 یلو اور 15 ریڈ کارڈز, آج ابھی ایک یلو دکھایا, مطلب اس کی تعداد 273 ہو چکی ہے, और 50 मिनट की गेम हो चुकी है। कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं, देखते हैं जी आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। निशान भाई
0: जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब, करम अल्लाह का सर। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। स्पेन और अर्जेंटीना किसको सपोर्ट करेंगे सर? अर्जेंटीना। चल ठीक है, ओके थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच जी।
0: अच्छा क्यानी भाई, वो आप बंदा ब्लॉक कर सकते हैं पेज से?
2: हाँ।
0: फजल महमूद नहीं तो करो, जरा चेक करो कमेंट। वो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं यार पोस्ट के नीचे हमारी, ये तो गलत बात है रहा यार, वो बहुत गंदी बातें लिख रहे हैं वो नीचे, मतलब मेरे मुताबिक नहीं लिख रहे लेकिन गंदी लिख रहे हैं।
1: धो के लिखा करें जी।
0: हाँ वही ना,
1: सर्फ शर्फ इस्तेमाल किया।
0: मैं बता दूं फिर क्या कह रहे हैं आपको, पता मैं तो मासूम आदमी।
2: कॉल की थी काफी लंबी, वो कहानी कह रहे थे कर लेते हैं
0: जल्दी इनको करें। आप असल में मासूम आदमी, क्या हो गया, लग गई किसी को? हाँ जी
2: नहीं, मेरे पास वो लिमिटेड वाला लिमिटेड।
0: अच्छा, आपको हदूद में रख दिया उन्होंने।
2: हाँ तो ये सिलसिला इसी वजह से ना,
0: वसीम राणा को लोएगा। अच्छा खैर, एनीवे हम कमिंग बैक। अच्छा मजे की बात है, सारे अब फोन चेक करें कि कमेंट आया कि कमेंट आया।
2: नेक्स्ट कॉल जी, फरो भाई आपके लिए लाल लाल साथ साथ कॉल
1: जी। अस्सलाम वालेकुम
2: जी।
3: हेलो
2: यही है।
1: हेलो,
0: मैं तो नहीं क्या गुरु
2: मुकम्मल हो चुके हैं। और दोस्तों अब तक सेकंड हाफ की अगर बात की जाए, अब भी स्पेन जो हावी है, और इस वक्त देखते हैं कि एक दफा फिर अर्जेंटीना की डी के करीब पहुंच चुकी है स्पेन की टीम, और यहां से क्या वो गोल करने में कामयाब होंगे, अटैक करते हैं या नहीं, ये सिलसिला हम दोस्तों आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। और स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना ये फाइनल खेला जा रहा है। जिशान भाई वैसे ओवरऑल आपकी प्लेयर्स तो चलो रोनाल्डो या मेसी, आप किसी एक को सपोर्ट करते हैं, टीम कौन सी आप अच्छी आपको लगती है इनके?
0: यार टीम मेरी फेवरेट है ब्राजील।
2: ब्राजील,
0: ब्राजील ना मेरी बड़ी फेवरेट टीम है।
2: चूंकि उन्होंने बड़ा राज किया है
0: सर, उन्होंने मैं कहता हूँ कि मुझे ना उनकी किट का कलर ही बड़ा पसंद था। ग्रीन कलर की उनकी मेरा ख्याल से शॉर्ट्स होती थी, येलो कलर की उनकी शर्ट, वो बड़ा अच्छा लगता है। आपने कभी नोट किया हो ना जरा, वो बड़ा अच्छा कंट्रास्ट था, तो मुझे ब्राजील बहुत पसंद।
2: ब्राजील। और खुरम भाई आप?
1: सॉरी मैं कहीं और,
0: कह रहे हैं आपको कौन सी पसंद थी टीम?
1: टीम या आप किट की बात कर रहे हैं?
0: टीम टीम
1: टीम मुझे मेरी मेरी ब्राजील
0: फेवरेट, मेरी भी ब्राजील
2: फेवरेट,
1: क्योंकि ब्राजील बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे ब्राजील, पता नहीं अब उनको क्या हो गया। इटली बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, लेकिन अब इटली लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया।
2: ऐसे दोस्तों कुछ हिस्ट्री वर्ल्ड कप की आपके साथ हम साथ साथ शेयर करते चले, जैसे कि स्पेन के हवाले से हमने आपको बताया कि इन्होंने वर्ल्ड कप कब जीता था, लास्ट 2010 में इन्होंने जीता था वर्ल्ड कप। फुटबॉल का आगाज, पहला जो वर्ल्ड कप दोस्तों खेला गया वो 1930 में खेला गया था, यूरोगे जो है वो चैंपियन बना था, और अर्जेंटीना फुटबॉल में रनर अप रहा था। पहली दफा जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था 1930 में, उसमें अर्जेंटीना रनर अप रहा था, रनर अप टीम रही थी, और यूरोगे ने उसमें कामयाबी हासिल की थी। सेकेंड 1934 में खेला गया, इटली ने इसको फर्स्ट टाइम जीता था, और थर्ड जो है 1938 फ्रांस ने होस्ट किया था इटली वर्सेस हंगरी। इटली ने बैक टू बैक दूसरा वर्ल्ड कप, जैसे अभी खुरम भाई ने कहा कि इटली ने बहुत अच्छा वर्ल्ड वो गेम
1: खिलाड़ी वो कर रहे थे कजन से पिरलो, बहुत कमाल खिलाड़ी था।
2: और ये आप देख लें कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मतलब बैक टू बैक दो वर्ल्ड कप हासिल किए थे इटली ने 1934 और 1938 का। उसके बाद 1942 और 46 में वर्ल्ड कप नहीं हो सके थे वर्ल्ड वार टू की वजह से। 1950 में ब्राजील फर्स्ट टाइम रनर अप रहा था, यूरोगे ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था। फिर 1954 में जब पांचवा वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट जर्मनी ने यह टाइटल अपने नाम किया था। सिक्स वर्ल्ड कप 1958 में ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1958 में जीता था, स्वीडन को उन्होंने शिकस्त दी थी 5-2 से, कामयाबी हासिल की थी। फिर बैक टू बैक दूसरा वर्ल्ड कप 1962 में ब्राजील ने जीता, और उसके बाद 1966 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड ने पहली दफा जो है वो वर्ल्ड कप जीतने का एजाज अपने नाम किया था। फिर ब्राजील ने तीसरा वर्ल्ड कप 1970 में, मतलब पहला 1958, सेकंड 62 और 1970 में तीसरा वर्ल्ड कप जीता। 1974 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था, वेस्ट जर्मनी ने नेदरलैंड को शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम किया था। उसके बाद अर्जेंटीना ने जो सेकंड टाइम वर्ल्ड कप जीता वो 1978 में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, 3-0 से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। नेदरलैंड वो टीम थी जो बैक टू बैक दूसरा फाइनल खेल रही थी, 1978 भी उन्होंने खेला और उसके बाद 1974 का भी खेला था। 1982 में स्पेन ने होस्ट किया था वर्ल्ड कप, इटली ने इसमें कामयाबी हासिल की थी 3-1 से, वेस्ट जर्मनी को शिकस्त दी थी। और अर्जेंटीना ने एक दफ़ा फिर 1986 में मैराडोना जब इनकी टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था वेस्ट जर्मनी को शिकस्त देकर। फिर उसके बाद 1990 में वेस्ट जर्मनी ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी और ब्राज़ील ने नेक्स्ट वर्ल्ड कप 1994 में जीता था इटली को शिकस्त देकर। और इसके बाद फ्रांस ने 1998 में ब्राज़ील को शिकस्त दी थी और फिर 2002 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो ब्राज़ील ने जीता, 2006 का इटली ने जीता, स्पेन का 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ स्पेन ने, और 2014 में जर्मनी ने, और 2018 में फ्रांस ने जीता था, फिर 2022 का जो अर्जेंटीना। ये वो टीम्स थी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली, इन्होंने बैक टू बैक ना वर्ल्ड कप के फाइनल भी काफ़ी ज़्यादा खेले और फाइनल होने का चैम्पियन बनने का एजाज़ भी इन्होंने हासिल किया। तो अर्जेंटीना जो है उसके पास ज़्यादा वर्ल्ड कप है, स्पेन के पास सिर्फ एक 2010 का है, लेकिन इस वक्त एज कम्पेयर टू अगर बात की जाए अर्जेंटीना की यंगस्टर ज़्यादा है स्पेन की टीम में, और जैसे कि अब तक की गेम अगर देखी जाए वो स्पेन की टीम ने ज़्यादा अटैक किए हैं इनकी अर्जेंटीना की टीम पे। लेकिन अब देखते हैं चूंकि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है टफ कंडीशंस होंगी दोनों टीम्स के लिए, दोनों टीम्स चाहेंगी कि गोल कर लें, अगर कोई भी एक टीम पहले गोल करने में कामयाब हो जाती है तो साइकोलॉजिकली दोस्तों दूसरी टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, फिर पहली टीम जो गोल करने में कामयाब होगी वो कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी लॉन्ग पासिस के या किसी ना किसी तरीके से टाइम को जब किल करने के। अभी रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दी गई
1: है, आउट हुए हैं, मोलिना इन हुए हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी
2: जी, तो एक चेंज हुई है अर्जेंटीना ने। और आप देखते हैं कि अब चूंकि ओवरऑल 257 मिनट और 40 सेकंड की गेम हो चुकी है और अब देखते हैं कि आप भी किस टीम को सपोर्ट करें, और ज्यादातर जो है वो स्पेन को ओवरऑल लोग सपोर्ट करें, अर्जेंटीना के भी बहुत बड़ी तादाद में फेवरेट प्लेयर हैं, जिस तरह के कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी तो उस वजह से आप उस टीम को सपोर्ट करते हैं, सेम वही सिलसिला इस वक्त चल रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त लोग जाग रहे हैं। और फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो कि आपको नहीं भी अगर पसंद तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जब होता है जिशान भाई तब लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, खासकर आज चूँकि फाइनल है, आज सुबह से टेलीविजन चैनल पे स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही हैं, इसके अलावा जो सोशल मीडिया है फेसबुक टिकटॉक
0: हमारी भी दिहाड़ी लग रही है
2: और इधर हम भी आए
0: हैं रात है ना रात साढ़ी भी रात लगी। अच्छा वो यहाँ पर हम मैं बताता चलूँ कि जैसे कि आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, पूरी दुनिया में ही फेस्टिविटी का माहौल है तो पाकिस्तान भर में है। हम एक्चुअली इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं लेकिन चूंकि मुझे भी याद आया कि सिंस वी आर ऑन अ नेटवर्क आई होप तो कराची लाहौर इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में हमें सुना जा रहा होगा। तो अगर आप कराची में हैं तो कराची की जो सबसे बड़ी स्क्रीनिंग है दैट विल बी इन KHA लेजेंड्स अरीना गुलशन इकबाल में हो रही है, तो अगर आप लाइव स्क्रीनिंग में देखना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं। डी चौक इस्लामाबाद में सबसे बड़ी स्क्रीनिंग इस वक्त हो रही है और उसके साथ साथ FM 101 जो है वो आपके साथ साथ है ही। जी सर
2: जी दोस्तों इस वक्त काफ़ी जो है वो प्लेयर्स एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं और देखते हैं कि आज कौन जीतने में कामयाब होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि उनकी फेवरेट टीम पहले गोल करे और वो जो है दूसरी टीम को टफ टाइम देने में कामयाब हो, और अब देखते हैं कि किस्मत जो है वो किस साइड जाती है। फ्री हिट यहाँ पे एक स्पेन को बिल्कुल अर्जेंटीना के डी के करीब मिली है, अब गोल पोस्ट से कितना दूर है और जो भी प्लेयर इसको अटेम्प्ट करेगा क्या वो खुद ही ट्राई करेगा, क्योंकि अब इतने टैक्टिक्स आ गए कि एक दो प्लेयर एक दूसरे को पास करने के बाद वो सिलसिला करते हैं।
0: खोखला गई यार खुदा की कसम
1: खतरनाक हो सकता है।
0: और काफी यंग है,
1: यंग है अभी,
0: क्योंकि 20s में होगा अपने,
1: आई थिंक सो, यस हां 20s में,
0: लेट 20s में,
1: लेकिन स्पेन अगर इससे फायदा उठा जाता है तो डेफिनेटली स्पेन को बहुत बड़ा एज मिलेगा।
0: नहीं होता जी, नहीं होता, प्लेंटी शूट आउट्स पे फैसला होगा सर,
1: आई थिंक सो कि 60% तो चांस है।
0: सर जी कहते ने कि तकदीर दी मुड़ जांदी है, नहीं फकीर दी मुड़ जांदी है, नहीं तकदीर दी मुड़ जांदी है, फकीर दी नहीं मुड़दी। नहीं हुआ फिर, मानते हैं कि नहीं।
2: फ्री हिट दोस्तों एक बिल्कुल डी के करीब स्पेन को चांस मिला था, लेकिन बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उसको किल किया गया।
0: और पिज्जा जो ठंडा हो गया इसको तो गर्म करवा रहे हैं
1: जी इस वक्त स्पेन में भी। दो खिलाड़ी जो हैं
0: यार करिए नजर
1: फॉरेन चेंजिंग में है,
0: निशान भाई
1: सी के कौन से लोग जो हैं वो चेंजिंग में आ रहे हैं।
0: यार हमने सुना है माशाल्लाह, दूरों भी इतनी पानी लेके आए हैं यार, मैं आगे कुछ चिप्स चोप्स कोई नहीं।
1: टॉरेस और पेड्री जो है भाई नु, अच्छा मैं आपको बताऊं जी कि जो पेड्री हैं ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं स्पेन के अंदर,
0: अच्छा।
1: और बार्सिलोना के भी काफी बड़े सुपरस्टार हैं।
0: फिर हुआ है दोबारा से आए थे ना,
1: हाँ, तो पेड्री दो जो है वो दो खिलाड़ी स्पेन के अंदर अभी जो है वो चेंजिंग,
0: क्या नाम है इनका, ये प्लेयर रहे हैं ना सबका, आई थिंक कोच है और प्लेयर भी रहे हैं, आई थिंक काफी फेस इनका है। हाँ करें करें, हाँ वही वही यार

0: इतना मजा आ रहा है गजनपुर भाई। वेल जनाब, हम आपको बताने चले सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि हमने सैंडविचेस का ऑर्डर दे दिया है। एंड आज अल्लाह ताला करे आपका, अल्लाह ताला आपका बेटा नर्सरी से फर्स्ट आए, अल्लाह करे आपको ठंड में बेहतरीन रजाई मिले। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं। गोल होने लगा तो फिर कुछ हो रहा है, आई थिंक ये मुझे लग रहा है जबरदस्ती गोल करवा के रहेंगे। वो आपकी बात ठीक थी,
1: स्पेन जी एक दफा फिर ट्राई करेगा, बल्कि किया था लेकिन वो एक दफा दोबारा,
0: यार बहुत क्लोज था, यार बहुत क्लोज था ना।
1: जो है जो गोलकीपर है अर्जेंटीना के, तीन ऑलमोस्ट गोल उन्होंने जो बिल्कुल गोल पोस्ट के मेट पे थे वो उन्होंने सेव किए हैं। कॉर्नर एक मिला है, अब देखते हैं इस पे क्या परफॉर्मेंस होती है। तो एक और चांस अभी भी डी के करीब है बॉल दोस्तों, और यहाँ पर स्पेन की टीम डी से नहीं निकल रही। यहाँ पर अर्जेंटीना जो है वो अभी तक डिफेंडिंग गेम, खुरम भाई आज को बहुत ही अलग गेम खेल रही है अर्जेंटीना अभी तक। मतलब जिस तरह ये देखिए स्पेन ने जितने भी अटैक किए, बेशक उस जो एक पेस के हैं उससे नहीं किए, लेकिन जिस एनर्जी के साथ स्पेन खेल रहा है अर्जेंटीना क्यों ढीला अभी तक?
2: डेफिनेटली मगजन पर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो वो स्पेन डोमिनेट कर रहा है अर्जेंटीना की टीम के ऊपर, और यंगस्टर जो है वो काफी हावी है इस वक्त, और अगर ये पल्ला भारी रहा तो स्कोर निकालने में कामयाब हो जाएगी स्पेन की टीम। और अगर एक से दो गोल स्कोर अगर स्पेन निकाल गया तो अर्जेंटीना के लिए कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त 65 मिनट का खेल हो चुका है, और जैसा मैंने कहा था कि 75 मिनट तक जो है वो अर्जेंटीना डिफेंडिंग पोजीशन में खेलती है, और अगर उन्होंने स्ट्रेटजी जो है वो चेंज ना की आफ्टर 75 मिनट, तो इससे फिर हम ये नतीजा जो है बॉक्स कर सकते हैं कि अर्जेंटीना वाकई आज स्लो है।
0: और सर फॉर माय इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं, अगर टाइम पूरा हो जाता है तो अप्रेंटी शूटआउट्स होंगे। yes. अगर उसमें भी बराबर हो जाता है फिर क्या होगा?
2: उसके बाद फिर अगर दोबारा बराबर हो जाता है तो पेनल्टी, रनिंग पेनल्टीज होती हैं। तो रनिंग पेनल्टी से मुराद ये कि एक एक पेनल्टी लगी रहती है, उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आपका फैसला नहीं होता, क्योंकि ये फाइनल है। ठीक है, तो ये
0: नो रिजल्ट से और वो कोई ऐसा सीन नहीं होता,
2: बिल्कुल आज ही फैसला इस मैच का होना है। अगर जो है वो मैच पेनल्टी किक्स के ऊपर बराबर हो जाता है,
0: मैं कहे क्रिकेट वाला और रन रेट वाला सिस्टम ना हो, जो 4.5 हमेशा हुई वही ना, एंड जब पता लगे जी वो अर्जेंटीना का रन रेट अच्छा
2: है। अच्छा, यहां इसमें एक और मजे की बात ये भी होती है,
1: अटैकिंग पे देखा जाए तो अभी तक अटैक स्पेन ने ज्यादा किया उनको वो, अगर लेकिन ये है
0: अटैक 100% डैमेज 0% ये वाला साउंड।
2: अच्छा, रनिंग पेनल्टी बड़े मजेदार सीन होता है कि पांच जब आपकी पेनल्टीज हैं, पांच पेनल्टीज अगर बराबर हो जाती हैं तो फिर आपको छठी पेनल्टी मिलती है, छठी से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, अगर लेट्स सपोज 11 पेनल्टीज होगी और 11 की 11 जो है वो बराबर हो गई, तो फिर क्या होगा?
0: क्या होगा
2: फिर? दोबारा से वो प्लेयर जिन्होंने पेनल्टी किक लगाई होगी वो दोबारा से शुरू करेंगे।
0: वाह,
2: और फिर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक होगा।
1: खुरम भाई, गोलकीपर ने को बहुत कमाल का गोल किया जी अर्जेंटीना,
2: जैसे मैंने आपको बताया कि रीढ़ की हड्डी है मार्टिनेज,
1: बहुत कमाल का हेड के
2: अच्छा गोल करना चाहता। मैं खुद जो है वो निशान, जब मैं फुटबॉल खेलता था तो गोलकीपर था, तो गोलकीपर की ना सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, या उस गोलकीपर को बहुत अच्छा गोलकीपर समझ जाता है जो कि पोजीशंस को समझता है और जिसको पता होता है कि बॉल ने कहां हिट करना है, और वो अपनी पोजीशंस गोल के साथ साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि गोलकीपर की जो पोजीशन होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है कि वो कितना गोल पोस्ट से आगे है, कितना गोल पोस्ट से पीछे है, और जैसे जैसे वो गोल पोस्ट छोड़ के आगे आता है तो उसका जो कैनवस है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपका गोल पोस्ट ज्यादा सेफेस्ट फील होता है। लेकिन अगर कोई बॉल आपका ऊपर से हिट कर रहा है तो वो आपकी पोजीशन से ऊपर चला जाता है, तो इसलिए गोलकीपर की जो पोजीशन है वो बड़ी मैटर करती है आपको। तो मार्टिनेज तजर्बाकार होने की बुनियाद के ऊपर और जितना उन्होंने जितना मैचेस खेले, तो हम देख रहे हैं कि जहां कहीं भी बॉल जिस तरह भी हिट हो रहा है गजनफर, मार्टिनेज आपको वहां पाए जा रहे होंगे, तो उनको पोजीशन का पता है कि मैंने कहां पोजीशन ले ली है।
1: ये चौथा ऐसा अटैक था जो उन्होंने सेव किया है जी अपनी टीम के लिए, और स्पेन जो है वो वही बात के इस अब तक हावी है अर्जेंटीना की गेम पर, अर्जेंटीना पर। अब देखते हैं कि अर्जेंटीना कब फायर बैक करता है और अपनी नेशनल गेम खेलता है। अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि अर्जेंटीना जो है वो ज्यादा हावी है। स्पेन की टीम ने अब तक अच्छी गेम खेली है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब अर्जेंटीना, खुरम भाई कह रहे हैं कि 75 मिनट से ऑनवर्ड, इनको वैसे भी कहा जाता है कि लास्ट जो 15-20 मिनट्स होते हैं उसमें अर्जेंटीना जो है वो गेम जो है वो बिल्कुल पलटती है, अपने हाथ में लेके आती है।
0: मेरा ख्याल से कोई ऐसी दवाई खाते हैं कि जो असर 45 मिनट के बाद करती है, 55 मिनट के बाद, ऐसे ही है ना।
2: अच्छा, ये भी अभी ये भी उनकी पुरानी गेम्स स्ट्रेटजी की बात है जिहान, ये भी हो सकता है कि स्पेन जो है वो मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर हावी है, वो चाह रहे हैं कि वो अटैक करें लेकिन अटैक करने नहीं दे रहे
0: स्पेन। हाँ, दूसरी साइड से अच्छी गेम भी हो सकती है।
2: हाँ, तो अगर 75 मिनट्स के बाद अगर उनकी उनकी स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती है और स्पेन को कवर अप नहीं कर पाते तो फिर डेफिनेटली स्पेन उनके ऊपर डोमिनेंस कर रहा है और डोमिनेंस ही अगर आगे तक चली तो उनको स्कोर निकालने में कामयाब हो जाएंगे।
0: अच्छा, अगर फर्स्ट करें कि बराबर हो जाता है और प्लेंटी में बात जाती है तो देन व्हाट यू थिंक के किसके पास एज है फिर, या वो फिर किस्मत की बात है?
2: जो है वो 50-50 होती है,
0: 50-50 है।
2: और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अर्जेंटीना जो है वो ज्यादा फेवरेट है,
0: साइकोलॉजिकल एज उनको
2: है। उसकी रीजन बीइंग ये है कि अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं वो काफी तजुर्बाकार हैं और गोलकीपर का बड़ा किरदार होता है आपको पेनल्टी किक्स के ऊपर।
0: एंड फिर मेसी भी है उनके पास,
2: और मेसी तो चले एक पेनल्टी लगाएंगे ना, वो तो गोल स्कोर अगर करते हैं नहीं करते उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोलकीपर का बड़ा इम्पैक्ट क्योंकि उसने पांचों पेनल्टी सेव करनी है और आगे भी अगर उसने रनिंग पेनल्टी है तो उसे सेव करनी है। तो गोलकीपर का जो एज है डेफिनेटली स्पेन के पास भी बहुत अच्छा गोलकीपर है, लेकिन जो मार्टिनेज है वो एक ब्रांड है डेफिनेटली। और लास्ट जो 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें जिस तरह उन्होंने अपनी लेग्स स्प्रेड करके जो बॉल रोका था और वो क्या कमाल बॉल था, और वही शायद के उनके वर्ल्ड कप की जो है वो जीत थी।
1: जी ऐसी है जी, काफी कॉन्फिडेंस से लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इन्होंने जो है वो गोल रोके थे, और आज भी अभी अगर देखा जाए कि जितने भी अटैक्स हुए यहाँ पर अर्जेंटीना की टीम में एक और तब्दीली, और अब देखते हैं कि ये जो नए प्लेयर जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, 69 मिनट की गेम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 70 मिनट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों टीम्स अब तक जो है वो कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए हैं।
0: अच्छा, समटाइम ये रिस्की भी तो हो सकता है ना गैम्बल, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने 70 मिनट से एक प्लेयर को ग्राउंड में छोड़ा है, अब वो जाहिर है उसके रिफ्लेक्सेस सही चल रहे होंगे, बॉल को सही देख रहा होगा, आप अचानक किसी नए लड़के को भेजें आप ये सोचेंगे यार वो फ्रेश है अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसको एडजस्ट होते होते 5-10 मिनट।
1: असल में ये फुटबॉल का वो सिलसिला है, मतलब ये इनकी जो जो टीम इनका वो होता है जितना भी वो सिलसिला है ये सारे ऑलमोस्ट इनकी प्रैक्टिस इतनी हुई होती है। बारहा इस तरह हुआ है कि जैसे ही नया आपने ऐड किया और वो विद इन सेकंड में गोल मार दो मिनट में गोल होता है, वही बंदा गोल करके आपको ना, चूंकि ये स्पेशल कुछ ऑब्वियसली इनके मैथमेटिकली इतना ये चीजें देख रहे होते हैं कि इस बंदे को हम इस टाइम उतारेंगे और इसकी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने ग्राउंड में दाखिल होना है, बॉल को लेना है और अपना जो वो अटैक दिखाना है, और वो गोल करने में बारहा इस तरह हुआ है कि वो कामयाब होते हैं। दोनों टीम्स के जो मैनेजर्स हैं कोचेस हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में, ऑब्वियसली जी वर्ल्ड कप का फाइनल है फुटबॉल का, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पे हैं, वहां पर ये मैच खेला जा रहा है अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन के दरमियान दोस्तों ये मुकाबला इस वक्त जारी है। मेसी को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं स्पेन की टीम को यमाल की वजह से, और ओवरऑल वैसे भी लोग स्पेन को कह रहे हैं कि शायद इस दफा वो वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन अब तक जो है वो काफी अटैक कर चुके हैं, लेकिन कोई बहुत तगड़ा अटैक जिसे कहते हैं वो स्पेन उस तरह नहीं कर पाया। और उसके बरक्स सेकंड एंड पे अगर देखा जाए अर्जेंटीना को स्पेन अपनी डी तक आने ही नहीं दे रहा, गेम बॉल पासिंग फुटबॉल पास जो है वो ही मिड से वापस जो है वो अर्जेंटीना अपने गोलकीपर तक बॉल को पहुंचाते हैं। अब तक उस तरह अगर कहा जाए कि बहुत अटैक अर्जेंटीना की टीम ने नहीं किया, 71 मिनट की गेम दोस्तों हो चुकी है, और अब देखते हैं कि यहां से अर्जेंटीना कैसे गोल की तरफ जाता है।
0: शेख साहब जाग रहे हैं तो कॉल पे ले लें,
1: उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस तरह
0: अवेलेबल हुआ तो,
1: अवेलेबल मसरूफियत थी वो कह रहे थे कहीं पे। और
2: अच्छा आप जिशान आप जरा देखें चेक करें गेम, देखें कि अर्जेंटीना जो है वो
0: पलटेगी,
2: वो एज यूजुअल जो है वो उसने जिस तरह पोजीशन रखी है अभी पिछले 3 मिनट के अंदर, और जिस तरह गोलकीपर ने कॉन्फिडेंस के साथ बॉल्स को खिलाया, और जिस तरह वो अभी स्पेसेस बना रहे हैं लॉन्ग पासेस के साथ टीम को थकाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आपको अर्जेंटीना थोड़ी डिफरेंट टीम नजर आने देखने को मिलेगी। और देखें अभी आप अटैकिंग पोजीशन पे मेसी उनके साथ हैं और राइट से उन्होंने जो है वो अटैक बनाया अभी, और बिल्कुल सेंटर के ऊपर हैं, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अच्छा बॉल को टैकल किया है स्पेन के डिफेंडर ने, और इस तरह अटैक जब अब आप देखेंगे वही उनकी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने पीछे से पोजीशन बनाई और गोलकीपर से वो बॉल को आगे लेकर बढ़े और एक अच्छा अटैक बनाया उन्होंने, लेकिन उसमें कोई जोर जबरदस्ती करने वाली बात नहीं की, पोजीशन नहीं बनी तो वापस बॉल को लेके आ गए। तो अर्जेंटीना बहुत टेक्निकल टीम है, दैट्स व्हाई दे आर हियर। और देखें अब पूरा डोमिनेंसी इस वक्त आपको अर्जेंटीना की नजर आ रही है कि एक खिलाड़ी के साथ जो है वो पूरा अटैकिंग पोजिशन बना रहे हैं, लेकिन स्पेन अब चीजों को समझ रहा है और स्पेन भी डेफिनेटली उनको पता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के बारे में उनके पास तोड़ तो जरूर होगा जिशान, जिसके लिए वो अभी जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पेन जो है वो पहले कुछ गोल स्कोर एक दो हासिल कर लेता तो अभी शायद की पोजीशन डिफरेंट होती, लेकिन अभी अर्जेंटीना जो है वो काफी डेंजरस टीम है स्पेन के लिए।
0: ये अच्छी गेम है यार, देखनी चाहिए वैसे, मतलब मजा आ रहा है। मैंने बहुत अरसे के बाद पहला फुटबॉल मैच देखा है उस तरह पूरा लाइव।
1: फैंस भी जो है वो काफी ज्यादा अब उनका जोश
0: है। अच्छा वहाँ पे गर्मी आई थिंक, देखें सबने हाफ शर्ट्स और वो सर पे वो
2: अच्छा है, इतना गर्मी है ना सर्दी।
0: अच्छा जी, अवेल सामीन आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन 2026 फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान मैच जारी है, दूसरे हाफ का खेल जारी है, ऑलमोस्ट 75 मिनट का खेल हो चुका है, यानी कि मजीद हमारे पास 15 मिनट होंगे साथ में और फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और अभी तक दोनों ही टीम्स जो हैं वो गोल स्कोर नहीं कर सकी
1: जी। ट्राई कर रही है, स्पेन ने ज्यादा अटैक्स किए हैं इसके, लेकिन अर्जेंटीना जो है वो नहीं
0: रिप्लेसमेंट
1: अब तक गोल कर पाई, उन्होंने कोई अटैक इस तरह नहीं किया। एक रिप्लेसमेंट सामने आई है स्पेन की जानिब से, और अब जो है वो दोस्तों चूंकि आखिरी मराहल में गेम दाखिल हो चुका है और दोनों टीम्स की ये कोशिश होगी कि वो गोल करें, और ये तारीखी लम्हा होगा जो पहला गोल कोई भी टीम जो है वो गोल पोस्ट में गोल करेगी तो यकीनी तौर पर उनकी टीम। देखें काफी देर से सेकंड हाफ जब से स्टार्ट हुआ है मिड से स्पेन की टीम ने अर्जेंटीना को साइड पे जाने ही नहीं दिया, वो बिल्कुल अर्जेंटीना के बी के करीब ही बॉल जो है वो लेकर घूम रहे हैं, और अब देखते हैं कि यहाँ पर इस गेम में बकरा भाई जो रेफरी होता है उसका भी बहुत अहम किरदार ऑब्वियसली डिसीजंस के वाले से, और उनकी फिटनेस भी अगर आप देखें प्लेयर्स के मुताबिक मुताबिक ही होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा गेम
2: में अच्छा गजब में एक मजे की बात आपको बताऊं कि प्लेयर से ज्यादा फिटनेस है वो रेफरी की होती है जो मेन रेफरी होता है, क्योंकि उसने फुल टाइम बॉल के साथ भागना है, और जो प्लेयर्स हैं वो उनको फिर थोड़ा रेस्ट मिलता है कि अगर आपके अगर राइट विंग्स के जो खिलाड़ी हैं तो लेफ्ट विंग के ऊपर बॉल चल रहा है तो राइट विंग वाला 2 सेकंड के लिए रिलैक्स कर सकता है, और अगर अटैकिंग पोजीशन पे तो डिफेंडर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और अगर डिफेंड हो रहा है तो अटैक पोजीशन पे एक दो खिलाड़ी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रेफरी है उसने कंटिन्यूअसली रन करना है, और अब तो रेफरी के साथ भी कैमरा चिपका दिया गया इस वर्ल्ड कप के अंदर, और रेफरी ने वो कवरिंग भी करनी है, इस वक्त वो कैमरामैन भी है, तो रेफरी की जो फिटनेस है जो रेफरी जिस तरह है उसने फिर आंखें भी रखनी है चारों तरफ, और जो लाइन रेफरीज हैं जो लाइन मैन हैं उनकी तरफ भी उसने देखना है कि उनके कॉर्शन, क्योंकि उनके पास विसल नहीं होती, और बहुत अच्छा अटैक, लेकिन फिर वही बात गोलकीपर के पास जब बॉल को वो प्लेस कर रहे हैं और मार्टिनेज बहुत अच्छी पोजीशन।
0: अच्छा वैसे जस्ट फॉर माय नॉलेज, जैसे आप लोग दोनों टीम्स की जो प्लेइंग एक एथिक्स है उससे वाकिफ है, तो अमूमी तौर पर जब हमने देखा है कि जब इतना क्लोज होता है तो जरा ट्रिकी करके लेकर आते हैं, तो ये अभी तक नहीं देखा गया, ये खेल टीम्स खेलती है
2: इसलिए नहीं ट्रिक्स बन नहीं पा रही,
0: जैसे रोनाल्डो करता है या वो
2: नहीं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैच है और इसमें जो है वो पोजीशंस बन नहीं पा रही, और अभी आप देखें कि जिस तरह यमाल को जो है वो बॉल पास ऑन किया गया लेकिन उससे पहले वहां पर डिफेंडर मौजूद थे,
0: ओके
2: तो इस वक्त दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा मैच है, डेफिनेटली वर्ल्ड कप फाइनल है, तो वो कोई भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है, और ना के खिलाड़ी रिस्क लेने की पोजीशन में और ना के डिफेंडर्स, और इस वक्त बहुत ही खतरनाक अटैक, बार बार स्पेन अटैक्स पर अटैक्स कर रहा है और कॉर्नर देन करने में कामयाब हुए।
1: 1.5 मिनट की अगर बात की जाए दोस्तों, ये स्पेन की टीम डी से बाहर निकली ही नहीं है अर्जेंटीना की, और ये जो बहुत जोर से बड़ी एफर्ट से एक किक की गई थी और उसको भी गोलकीपर ने बड़े आराम से, ऑलमोस्ट ये पांचवा या छठा अटैक होगा जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर ने, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल उनके हाथ में नहीं आया लेकिन उसके बावजूद दोबारा अटेम्प्ट
2: किया। ये तो 15 साल का बच्चा है, ये देखें स्पेन के अंदर कितना यंग बच्चा खेल रहा है,
1: और यहाँ पर कॉर्नर अटैक करेगी यहाँ पर स्पेन की टीम, और अर्जेंटीना जो है वो अपने डी से बाहर निकालने में कामयाब अब तक नहीं हो पा रहा स्पेन की टीम को, और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी अर्जेंटीना के गोलकीपर की, उन्होंने बड़ा जबरदस्त गोल जितने भी अटैक्स अब तक हुए हैं वो किए हैं, अंपायर की बड़ी हेक्टिक ड्यूटी जिस तरह फरमान ने भी बताया, प्लेयर्स के टेम्परामेंट्स डिफरेंट, और जिस तरह वो एक दूसरे को कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हाथों से दूर करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल इस वक्त मरहला होता है। एक कॉर्नर और था लेकिन वो ऑलमोस्ट बहुत बुरा पास किया गया प्लेयर की जानिब से। 78 मिनट की गेम हो चुकी है, ये लगता है निशान भाई
0: सर मैंने अब कहा है कि तकदीर दी मुड़ बैठी है, फकीर दी नहीं मुड़ दी, मैंने पहले ही कहा था कि वन ऑल हो जाएगा।
1: यहाँ पे देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल होती है दोस्तों। आप लोग भी इस वक्त यकीनी तौर पर जो लोग रेडियो सुन रहे हैं आप लोग इस प्लेटफॉर्म से इंतजार कर रहे होंगे कि कब यहाँ से अनाउंसमेंट की जाए कि गोल हो गया। जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने है वो ऑब्वियसली इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी फेवरेट टीम, और आज स्पेशली हर उम्र के लोग जो है वो यकीनी तौर पर टेलीविजन के सामने चुके।
0: और सर
1: रोनाल्डो एक ऐसे प्लेयर है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ी एज के लोगों
0: और एज कंपैरेटिवली चूंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है तो लोग आज वैसे बाहर निकलना भी चाह रहे होंगे, तो एक मुझे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि यार लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही होगी बाहर,
1: ऐसे ही है जी। और यहाँ पर 78 मिनट की गेम दोस्तों हो चुकी है, स्पेन ने अपनी भरपूर जान मारी है। अब तक की अगर बात की जाए जितना ज्यादा कंट्रोल हासिल किया वो स्पेन ने कंट्रोल हासिल किया रहा इस गेम पे, काफी ज्यादा अटैक्स उन्होंने किए लेकिन कोई अटैक ऐसा नहीं था जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर को मिस करके बॉल जो है गोल पोस्ट के अंदर जाए। फिलहाल जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए इनके जाने से अटैक्स किए गए बड़े इजीली उन्होंने उसको,
0: मेसी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं नजर आए गेम में कहीं भी, है ना, बहुत ज्यादा पोजीशन बॉल के उनके पास नहीं
1: आए, नजर ही नहीं आए, पता नहीं
0: ऐसे ही आए हैं वापस
2: रिप्लेस। अभी आप देखिए कि मेसी जो है वो असिस्ट पोजीशन पे जाएंगे क्योंकि मेसी जब पहले हाफ के अंदर या ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब उनको अटैकिंग पोजीशन पे खिलाया जाता है तो अगर गोल स्कोर ना निकले तो फिर उनको असिस्ट पोजीशन पे खिलाया जाता है ताकि वो एक अच्छा बॉल निकाल के दे सके और दोनों गोल हुए थे। तो अभी मेसी जो है वो आपको असिस्टेंट की पोजीशन पे आपको नजर आएंगे और वो अब काफी की पोजीशन होती है जो कि सेंटर की पोजीशन है, सेंटर से बॉल बनता है और सेंटर से ही बॉल जो है वो खिलाया जाता है और सेंटर से आगे वाली जो पोजीशन है बिल्कुल सेंटर के मिड के ऊपर जो खेलते हैं वो पोजीशन मेसी अक्सर ऑप्ट करते हैं और अगर उस पोजीशन पे मेसी खेलते हैं तो डेफिनेटली गोल स्कोर निकालने की वो रखते हैं ताकत के वो गोल स्कोर निकाल सकते हैं।
0: गुड हो गया
1: स्पेन की टीम दोस्तों, एक दफा फिर अर्जेंटीना की डी में दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर स्पेन दोबारा ट्राई करेगा लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा प्लेयर को
2: कि अच्छा बॉल
1: एक और शानदार बॉल
2: एक दफा फिर मार्टिनेज जगह पे पोजीशन पे मौजूद था,
1: एक और बड़ा जबरदस्त अटैक रोका
0: यार। वैसे मेरा ख्याल से जो उनके गोलकीपर हैं उन्होंने थ्रू आउट मैच बचाए रखा है अभी तक।
2: जी जी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जिसने मैंने आपको पहले बताया।
0: हां सर भाई ये वाला जो गोल बचाया ना उन्होंने ये वाकई बड़ा करीबी मामला था यार।
1: मार्टिन्स जो हैं दोस्तों अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं और ये तो जानबूझ के
0: अर्जेंटीना
1: के प्लेयर स्पेन के और यही प्लेयर काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। बड़ा जबरदस्त गोल सेव किया मार्टिन्स ने जी, अपने राइट हैंड पे जाके डाइव लगाया उन्होंने और बॉल चुके फुटबॉल अब जब बहुत तेज अगर ये खुरम भाई बेहतर बता सकते हैं बिल्कुल फ्रंट से जब खुरम भाई फुटबॉल गोलकीपर रोकता तो बड़ा हार्ड
2: नहीं आई थिंक सो क्या नहीं वो हेडर था, हेडर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती और अगर वो अगर हिट किया जाता किक की जाती तो मार्टिन्स आई थिंक सो इस बॉल को नहीं रोक पाते। लेकिन मार्टिन्स की पोजीशन बहुत अच्छी थी कि उनकी बिल्कुल कहते हैं कि जब भी आप गोलकीपर जब बॉल को ऑप्ट करता है तो उसके पीछे उसकी पूरी बॉडी होनी चाहिए, अगर उस बॉल के पीछे उसकी बॉडी नहीं है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कवर अप करना और अगर उसकी बॉडी पूरी उस बॉल के पीछे है तो वो बॉल बहुत इजीली सेव कर लेता है चाहे वो कितनी ही मजबूत शूट क्यों ना हो या कितना ही खतरनाक बॉल क्यों ना हो। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो सेव हुआ है इसके पीछे पूरी मार्टिनेज की बॉडी थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रास्प किया बॉल को।
1: बिल्कुल ऐसे ही जी, एक और मतलब स्पेन की टीम
0: येलो कार्ड हो गए
1: यहाँ पर काफी टफ टाइम दे रहे हैं जी अर्जेंटीना की टीम को अगर देखा जाए यहाँ पर अब तक ओवरऑल टफ टाइम दिया स्पेन की टीम ने और अभी भी यही इस तरह का सिलसिला चल रहा
0: है। मुंडा कितने गया साडा
1: ऊपर ले जोक जाएगा तो फिर क्या आएगा शो पूरा करेगा
0: ओ पैसे लाके इधर निकल गया और क्या मेरी दिहाड़ी लग गई इन्होंने तो 3 महीने
1: बाद एडवांस मिल गई उन्हें कहना कि भाई जी ये आप थे सुबह तक बैठे। बहरहाल दोस्तों बड़ा जबरदस्त मुकाबला इस वक्त फुटबॉल का जारी है, आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग जरूर कॉल करें, हम आपके कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 051-111-000-101 पर फेसबुक पे भी काफी ज्यादा दोस्तों ने कमेंट किया आप थे सुबह तक बैठे। बहरहाल दोस्तों बड़ा जबरदस्त मुकाबला इस वक्त फुटबॉल का जारी है, आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग जरूर कॉल करें, हम आपके कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

0: मैच को पेनल्टी किक्स पे लेकर जाया जाए। लेकिन अगर वो इस तरह से डिफेंडिंग पोजीशन पे खेलेंगे तो आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आपको एक सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा, और डेफिनेटली वो फॉरवर्ड की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट खिलाएंगे। और अगर कोई सब्स्टिट्यूट इस तरह का आ गया और उसने गोल पोस्ट के अंदर बॉल को दाग दिया, तो फिर उस वक्त जो है वो गोल को बराबर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: वही बात करो भाई कि अभी सेकंड हाफ के आगाज से ही ना स्पेन ने बहुत अटैकिंग गेम खेली और ऑलमोस्ट तीन अटेम्प्ट्स ऐसी गेम
0: इस मैच के ऊपर, तो टोटली आपको नजर आ रहा है कि स्पेन जो है वो उसे
1: डोमिनेट कर रही है, और एक आधा गोल भी जैसे कि आपने कहा कि सब्स्टिट्यूट आके गोल कर देता है, तो फिर आपके पास वापसी के मेसी के पास बॉल है और डी के करीब उन्होंने बॉल पहुंचाया, लेकिन जो पास उन्होंने किया वो काफी तेज निकला
2: और वो स्पेन के खिलाड़ी को दे दिया,
1: स्पेन के खिलाड़ी के पास बॉल गई है। तो यहाँ पर मेसी नजर जरूर आए, कैमरे पे के सामने आए हैं।
2: मेरे ख्याल से अर्जेंटाइन को ना ये इजिप्ट की बदवा लग गई है।
0: बाहर हो जाता उसमें, वाकई जो है वो बहुत ज्यादा अंपायर की रेफरी की तरफ से जो है वो या फीफा की तरफ से साथ दिया गया, जिस तरह एक पूरी पेनल्टी केक थी उनको मिली थी इजिप्ट को, वो 100% पेनल्टी केक थी, लेकिन वो इस तरह के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी, वीआर के दौर के अंदर भी वो पेनल्टी केक जो है वो नहीं दी गई, और उसी के काउंटर अटैक के ऊपर ही अर्जेंटीना ने गोल किया था और वो मैच वो इजिप्ट से जीते थे। तो आई थिंक सो कि मेरे मुताबिक अर्जेंटीना का जो है वो हक नहीं बनता कि वो वर्ल्ड कप जीते।
2: सो अगर फॉर एग्जांपल ये जो आप अभी सिनेरियो बता रहे हैं कि ना होता तो इजिप्ट वुड बी इन द फाइनल,
1: मोहम्मद सलाह को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो बड़े अच्छे फुटबॉलर, लास्ट कुछ ईयर में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रैग हुई थी जिसकी वजह से उनको जो क्लब ने भी कुछ मैचेस में उनको ड्रॉप किया, लेकिन फिर एक आधे मैच में उनका कमबैक हुआ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी और इस वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली सबकी नजरें उन पे थी कि वो अपनी टीम को आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन सेफ साइड में उनको ये मिली जब रेफरी की जानिब से बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ अर्जेंटीना को, तो फिर ऑब्वियसली वो अब कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर स्पेन की टीम एक दफा फिर डी में के करीब पहुंची है जो अर्जेंटीना के, और यहाँ से काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी, बॉल एक दफा फिर यहाँ पर अर्जेंटीना के पास। अगर ओवरऑल टाइम काउंट किया जाए तो बॉल इतना ज्यादा रहा नहीं है, स्पेन ने ही पासेस में अपने पास बॉल रखा और काफी ज्यादा अटैक्स उन्होंने किए। 85 मिनट का दोस्तों खेल हो चुका है और अब तक
2: मैच मोमेंटम की भी बात करें तो जैसे आप दोनों कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि ज्यादातर डोमिनेट जो है वो देखिए रेड लाइन में स्पेन ही रही है,
1: अर्जेंटीना का देखें ऑलमोस्ट 3-4 और ज्यादातर जो गेम है वो स्पेन ने हावी रहा है ओवरऑल अर्जेंटीना पे, और अर्जेंटीना के प्लेयर जब बॉल जा रहा है स्पेन के खिलाड़ी के पास तो बहुत ज्यादा उनके पास जाके उनको अटैक नहीं कर रहे। आप देखिए जैसे ही बॉल किसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी के पास पहुंचता है तो
0: खतरनाक एक अच्छा डिफेंस ही, और डिफेंडर ने बॉल को टच किया है, एक कॉर्नर किक मिली है उनको स्पेन को, और स्पेन ने बहुत अच्छा अटैक किया था, और अगर ये डिफेंडर बॉल को टच ना करते तो डेफिनेटली गोल था ये।
2: अच्छा
0: यस
1: ये उनके यहां से क्लियर पता चलेगा कि
0: डिफेंडर से बॉल टच हुआ है ना। अच्छा ओके
1: शूट नहीं बाहर था, बाहर था। okay, उनकी कोशिश थी वो असल में पाउन का अगर
0: बॉल बैठा
1: बॉल को लगता तो शायद बॉल में एनर्जी होती तो वो
2: गोल। ये बड़ा हीरो बनने का टाइम है सारे प्लेयर्स के लिए है ना, जो भी इस टाइम गोल स्कोर करेगा विल बी रिमेंबर्ड।
0: जिशान जो इससे 2018 का वर्ल्ड कप था कि जिसके अंदर मारियो गोट्ज़े ने आके जर्मनी से गोल किया था और क्या कमाल एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो आए और जिस तरह उन्होंने चेस्ट के ऊपर बॉल उतारा और उन्होंने एक हेड की, तो एक यंगस्टर थे वो और वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर एक यंगस्टर आके और इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आके गोल स्कोर कर लेता, तो मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि इस बंदे के लिए जो 2 सेकंड या 1 सेकंड का जो टाइम था इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जितना मतलब जब अल्लाह नवाजता है तो 1 सेकंड में नवाज देता है,
2: एंड ऑब्वियसली उस 1 सेकंड के लिए उसकी प्रैक्टिस जो है
0: उसने कितने सालों मेहनत की होगी, लेकिन अल्लाह ने जब उसको रिवार्ड देना था वो 1 सेकंड में दे दिया।
2: इसी तरह
1: अर्शद नदीम आप देखें,
2: अर्शद नदीम हमारे सामने। इसके अलावा आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप का ही मैच था, ज़िनेडीन ज़िदान शायद थे, उन्होंने हेड मारा था किसी को, उस पर प्लेंटी मिली थी और फिर वो फैसला हो गया था। इसमें अगर कोई अभी जज्बात का मुजाहरा ना किया जाए तो मेरा ख्याल से गेम अब जो है वो पेनल्टी की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है।
1: देखिए टाइम बहुत कम रह गया, 87 मिनट
2: और उसके बाद 4 मिनट

0: देंगे गालिबन या सात मिनट,
1: सात मिनट, सात मिनट कंफर्म है बताते हैं।
2: लेकिन एक खतरनाक अटैक बनाया इस वक्त स्पेन ने, लेकिन डिफेंडर्स कोई चूक चूक नहीं दे रहे।
0: अच्छा अच्छा,
2: पोजीशन बना रहे हैं स्पेन के खिलाड़ी, लेकिन
0: उन्होंने भी कॉल कर लो, उन्होंने नाके तो नहीं रोक
2: पाए। अर्जेंटीना जो है वो कोई पोजीशन दे नहीं रहा। एक अच्छा बॉल लेफ्ट विंग के ऊपर बनाया है, 17 नंबर के खिलाड़ी के पास है बॉल, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंडर बॉल लेने में कामयाब हुए हैं। ऐसा थ्रो एक दफा फिर स्पेन ने लिया। अच्छा अर्जेंटीना उतना ज्यादा अच्छा, इसको अभी लॉन्ग किक करके आप अपनी डी से प्रेशर आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उधर ही बॉल को खिलाया और एक दफा फिर से जो है वो बॉल की पोजीशन स्पेन के पास है। और स्पेन छोटे छोटे टचेस के साथ जिस तरह बार्सिलोना के खिलाड़ी करते हैं उस तरह जो है वो कर रहे हैं, और इस वक्त सेंटर पोजीशन के ऊपर बॉल मौजूद है। बड़ा ही गलत हिट था, आई डोंट थिंक सो कि ये हिट उनको करनी चाहिए थी
0: इतनी, खासतौर पे इस टाइम पे।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए हमें स्पेन के खिलाड़ी भी, आपको जितने फैंस हैं ना वो भी आपको दिख रहे हैं कि
0: फ्रस्ट्रेटेड हैं,
2: फ्रस्ट्रेटेड है कि यार स्पेन क्या कर रहा है आज, आज क्यों अटैक्स नहीं बना पा रहा आज क्यों, और ये वाकई में बहुत बड़ी गलती कर रहा है स्पेन की, इतना पोजीशन रख के।
0: हालांकि एक दो जगह बड़ा अच्छा उन्होंने बना लिया था।
2: नहीं जीशान, आई थिंक सो कि कोई भी ऐसा अटैक उन्होंने नहीं किया जो कि डेंजरस हो, जो कि
0: क्लोज मामला,
2: जो कि मार्टिनेस ने जिसको जो है वो असेस ना किया हो या उसकी बसात से बाहर हुआ और कुदरतन एक मौजजाती तौर के ऊपर वो बचे हों, ऐसा नहीं था। हर बॉल को उन्हें असेस किया और डिफेंडर्स ने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया, तो स्पेन को ऐसा मौका बना नहीं पाया।
1: 30 मिनट मिलेंगे 90 मिनट के बाद, 15-15 मिनट के दो सेशन खेले जाएंगे और उसके बाद भी अगर फैसला नहीं होता फिर पेनल्टी पे मामला
0: जाएगा। लेकिन वो 4 मिनट तो पहले हाफ में भी मिले थे,
1: वो चूंकि एक्स्ट्रा टाइम तो बीच में इंजरीज या वो जाया होता है वो उस तरह उनको
0: ठीक है, यानी कि आधा घंटा मजीद 2 2 15
1: 30 मिनट और दोस्तों दिए जाएंगे उसके बाद
0: अभी पता चल जाएगा। वेल व्यूअर्स, सामीन आपको हम बताते चलें कि मजीद 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है और दूसरे हाफ का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और दोनों हाफ में दोनों टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही हैं और पहले हाफ में भी 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे, अभी भी 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब 4 मिनट के बाद क्या आया, 15 मिनट का फिर एक हाफ होगा और फिर 15 मिनट का एक हाफ होगा, ये भी देखना बाकी है, या फिर 4 मिनट के बाद हम पेनल्टी शूटआउट्स की जानिब जाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। बट हैविंग सेड दैट, दीज 4 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी ऐसे ही है दोस्तों, चूंकि ये वो टाइम होता है जिसमें अगर कोई हाफ के दरमियान कोई इंजरी हो रही है या कोई प्लेयर गिर जाता है तो वो टाइम काउंट करके एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस हाफ में 4 मिनट से इन 4 मिनट के बाद दोबारा 30 मिनट दिए जाएंगे, अगर उसमें भी गोल नहीं कर पाती दोनों टीम फिर उसके बाद पेनल्टी पे ही मामला जाएगा। और ओवरऑल 90 मिनट से ऊपर हो गया पहले दोनों हाफ की अगर बात की जाए, स्पेन की टीम ने बहुत ज्यादा अटैक्स किए हैं और मैक्सिमम जो गेम है या मैक्सिमम जो अटैक्स हैं वो उन्होंने अपने पास ही रखे हैं और अब सूरत हाल जो है वो देखते हैं। मैसी यहाँ पर उनको एक डॉच किया गया था वो गिरे और इसमें वैसे देखा गया अगर जाए तो स्पेन की प्लेयर की कोई गलती नहीं थी, मैसी जो है वो भाग रहे थे तो वो अचानक से वो पहले वहां पे खड़े थे, अगर जानबूझ के अगर कहा जाए स्पेन के प्लेयर ने ऐसा नहीं किया, वो जैसे ही भागे तो वो सामने उस टाइम वो मौजूद थे तो उनके साथ टकरा कर गिरे, तो रेफरी ने मैसी को उठाया और उन्होंने कहा जी कोई नहीं इजी। आप
0: ईरान की टीम थी,
2: ईरान की टीम
0: कौन से ग्रुप से
1: पहले ही
0: स्टार्टिंग से
1: स्टार्ट से बाहर हुए,
2: प्लेऑफ मरहले से पहले ही आउट हो गए थे।
0: ओके जी, मजीद ऑलमोस्ट 2 मिनट रहते हैं और उसके बाद जैसा कि क्यानी भाई ने कहा कि 15 मिनट का एक हाफ और फिर 15 मिनट का एक हाफ और फिर उसके बाद पेनल्टी शूट आउट्स की जानिब हम जाएंगे। सो लेट्स सी, जो मुकर्रा गोल्स का टाइम होता है, लाइक जो गेम का टाइम होता है 45-45 के 2 मिनट दो हाफ जो होते हैं उसमें गोल स्कोर करने में अभी तक दोनों टीमें नाकाम ही रही हैं।
1: अर्जेंटीना में अब थोड़ा सा करंट दोस्तों दिखाई दे रहे चुके
2: और एक बहुत ही खतरनाक पोजीशन बनी है, कहीं साहब ये बहुत खतरनाक हो सकता है और इस तरफ अगर ये आउट विंग पे लेके आते हैं बॉल को और
1: एक और अच्छा डिफेंड किया है जी मार्टिन्स ने, डी के करीब जाकर एक पावरफुल शॉट खेली,
2: बॉल को क्रॉस करना चाहिए था और इस तरफ
1: दोस्तों देखा जाए कि दोनों टीम्स जो है वो थोड़ा सा
2: और रेड कार्ड और पहला रेड कार्ड और अर्जेंटीना के खिलाड़ी को रेड कार्ड हो चुका और वाकई इनका बनता है फर्नांडिस ने पहले भी येलो लिया और ये वाकई बहुत ही रफ प्लेयर है अर्जेंटीना का और इसने पहले भी लास्ट मैचेस के अंदर भी इसने बड़ा खतरनाक खेला और इस दफा भी और वाकई बिल्कुल बिल्कुल राइट इसको जो है वो रेड कार्ड दिया गया, बहुत ही रफ खेलते हैं ये फर्नांडिस।
1: देख लेते हैं जी ये रिप्ले में दिखाया जाएगा कि ये कहां से भाग के आए और ये वैसे दोनों की पोजीशन ऐसी बन चुकी थी यहाँ पे,
0: ये तो बंदे की अपनी गलती नहीं वैसे,
1: ये वैसे है वैसे वरुण भाई, क्योंकि वो जिस पेस से भाग के आ रहे थे बॉल पे
0: और वो रुके भी हैं,
2: नहीं उसके उसके पांव को टच किया, ओके ओके, टेक्निकली उसने बॉल को टच नहीं किया, उसके पांव को टच किया है, और उसके पांव को टच करने की वजह से उसका बैलेंस डिसबैलेंस हुआ और वो बहुत बुरी तरह गिरा, उससे उसका बाजू टूट सकता था, टांग टूट सकती थी, और उसके पांव को होता ही है फुटबॉल के उसूल के मुताबिक जिशान एंड कैनी साहब कि अगर के आप बॉल को पहले टच कर लेते हैं तो आप जितना डेंजरसली किसी को भी हिट कर लेते हैं तो आपको फाउल नहीं होता, और अगर आपने बॉल को टच नहीं कर पाए और अगर आपने किसी की बॉडी को टच कर दिया तो वो फाउल कहलाता है, और अभी उन्होंने बॉल को टच नहीं किया और उसके पांव को टच किया तो रेफरी ने बिल्कुल जो है वो राइट डिसीजन किया और उनको
1: यहाँ पे पहला रेड कार्ड दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का
0: दिखाया गया, 4 मिनट भी पूरे हो गए ना
1: अर्जेंटीना के प्लेयर को, और यहाँ पर ये कुछ टाइम रेफरी के टेम्परामेंट को दाद देनी होगी,
2: और अभी 10 खिलाड़ियों के साथ कैनी साहब खेलेगी अर्जेंटीना, बहुत मुश्किल हो चुका है अर्जेंटीना के लिए, जिशान साहब आपके लिए भी मुश्किल हो चुका
0: है। हैविंग सेड दैट, आपको बताते चलें कि दोनों हाफ का खेल मुकम्मल हो चुका है और दोनों ही टीम स्कोर करने में नाकाम रही हैं, और अब जो है 15-15 मिनट के दो हाफ होंगे और उसके बाद फिर हम प्लेंटी शूट आउट की जानिब जाएंगे। जिशान कितने रह गया यार, इतनी दूर तो है नहीं,
1: चक्कर
2: इतनी देर में कॉल ले लें आप।
1: चलें जी हम कॉल शामिल करते हैं 0511100 पर, देखते हैं कौन सी कॉल हमारे से मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: प्यारे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज यानी बोल रहा हूं गोलपुरी से।
1: सर
3: मैं जिशान साहब को और केपी को कहूंगा कि यानी साहब की कोच लगी थी सुबह, साहिल और बजा ने बताया कि बिल्कुल ऐसे प्रचार जैसे मैं
1: दोस्तों कोई टीम गोल नहीं कर पाए। आपकी कॉल्स हम बैक टू बैक शामिल करेंगे चूंकि आप लोग भी इस वक्त जाग रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में टेलीविजन के साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये
2: नेटवर्क बना रहा है
1: इस वक्त ट्रांसमिशन यहाँ से, चूंकि जब गोल होता है तो विद इन सेकेंड जो है गेम पलटती है। एक दफा फिर स्पेन की टीम डी में दाखिल और ये
2: खतरनाक आउट ऑफ डी,
1: डी के करीब अगर तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, नहीं पेनल्टी मिल सकती
0: है। आ गया भैया, आ गया
2: कार्ड, एक और भी आ सकता है जी, एक और येलो
0: कार्ड। वाह वाह वाह, क्या कहने मत कर, किधर से लाया अंडे वाले बर्गर,
1: क्या हवा है, सादे नहीं
0: आ, तुझे पिछु मैसेज तो नहीं कीता सी,
1: कोई मैसेज नहीं किया। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर
0: तीन लेकर आए हैं तो आपने नहीं खाना था,
1: जैसे ही गेम का दोबारा आगाज होगा आपके साथ हम ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ साथ रहें।

0: इंतजार था और स्पेन पहला गोल स्कोर करने में कामयाब हो गए। मार्टिनेज ने बहुत कोशिश की लेकिन एक गोल स्कोर जो है वो करने में कामयाब हुए। आई थिंक सो अभी तक तो स्कोर बोर्ड पे नहीं किया उनने अपडेट। आई थिंक सो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ग्लिच है। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन गोल स्कोर आई थिंक सो कि ये गोल स्कोर है क्योंकि वो ऑफ साइड भी नहीं थे और एक अच्छा बॉल मिला है। अकॉर्डिंग टू मी ये गोल है, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है कि रेफरी क्या फैसला देते हैं।
1: अभी तक दोस्तों अपडेट नहीं किया गया, रेफरी और प्लेयर्स के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है और ये उन्हीं के पांव से बॉल लग के गोल की गोल पोस्ट में गया जिनने थोड़ी देर पहले हेड के थ्रू किया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको ये बताते चलें कि रेफरी और प्लेयर्स के दरमियान बातचीत चल रही है, 0-0 ही।
2: आई थिंक गोल काउंट नहीं किया गया है बिकॉज जो बॉडी लैंग्वेज बताई जा रही है स्पेन की उसके हिसाब से और वर्ल्ड कप फाइनल है और फाइनल टाइम है,
1: अभी तक रेफरी जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। 96 मिनट से ऊपर ये मामला पहुंच
2: गया, गालिबन शायद हैंड हुआ है, आप चेक करें जब वो बॉल फर्स्ट आ रहा है।
1: ये प्लेयर जो डी में गिरा शायद उसकी वजह से उन्होंने वो प्लेयर अभी तक
0: नहीं, असल में होता ही है कि अगर के बॉल गोलकीपर के पास है तो गोलकीपर के साथ प्लेयर को टच भी हो जाता है तो वो फाउल करा दे दिया जाता है।
2: ओके
0: तो वो मार्टिनेज के साथ आई थिंक सो के प्लेयर स्पेन के टच हुए हैं इस वजह से गोल स्कोर नहीं दिया गया। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया कि गोल स्कोर है या नहीं है, लेकिन आई थिंक सो ये गोल नहीं है क्योंकि वो मार्टिनेज को आई थिंक सो टच हो गए थे स्पेन के।
2: और मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये फाउल है या नहीं, लेकिन इसके बाद बात बहुत होगी इसके ऊपर कि अर्जेंटीना अगर जीतता है या, क्योंकि ये अर्जेंटीना के अगेंस्ट जाएगा ये फैसला ना अगर गोल हो जाए तो। सो अब वो जो एक बहस चल रही है उसको एक हवा जरूर मिलेगी।
1: ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर जो है एक सिनेरियो इस तरह बना था कि स्पेन की टीम ने फुटबॉल को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया जरूर, लेकिन उसको फाउल करार दिया गया। अब तक डिस्कशन जारी है, चूंकि एक प्लेयर जो है वो अर्जेंटीना के डी के अंदर जो है वो गिरे भी, यहाँ पर एक और तब्दीली, एक और रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुई है और अब देखते हैं।
0: रोड्री आउट हुए हैं और लिपोर्टी इन हुए हैं, लिपोर्टी और रोड्री आउट हुए हैं और दो खिलाड़ी और गार्सिया और बड़ा मुश्किल सा नाम है
2: गोल स्कोर नहीं हुआ है क्योंकि प्ले जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया,
1: दोबारा स्टार्ट
2: हो। सो देयर इज नो गोल, द स्कोर इज 0-0 स्टिल।
1: 98 मिनट ओवरऑल हो चुके हैं दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ओरिजिनल टाइम के बाद 15-15 मिनट के दो स्पेल्स होंगे और यहाँ पर स्पेन की टीम जो है अब अटैक कर रही है और यहाँ पर एक और जो सिनेरियो बनाया है, अर्जेंटीना के पास बॉल इस वक्त उनके पास मौजूद है, यहाँ पर एक लॉन्ग पास दिया गया लेकिन स्पेन के खिलाड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आपको इस वक्त भी दिखाई दे रहे, जैसे गेम का आगाज हुआ था जो एनर्जी स्पेन के खिलाड़ियों में उस वक्त थी इस वक्त भी ऑलमोस्ट 100 मिनट के गेम हो चुका है उसके बावजूद अब भी वही एनर्जी और वो अर्जेंटीना की डी से बाहर नहीं जा पा रहे, बल्कि अर्जेंटीना उनको अपनी डी से बाहर नहीं कर पा रहा है। एक और चांस लेकिन इसको अर्जेंटीना के प्लेयर ने बॉल को काफी पहुंचाया, यहाँ पर मेसी के पास अल्वन बॉल लेकिन
0: फाउल करा दे दिया,
1: प्लेयर जो है वो गिरे हैं और इसको फाउल करा दिया गया रेफरी की जानिब से। ये देखिएगा मार्टिन्स का यहाँ पर जो वो फाउल वाला सिलसिला हुआ था और ये पहले बॉल रुका और ये यहाँ पे खुरम भाई देखिए उन्होंने उसको बैक करने की कोशिश की थी लेकिन ये फाउल हुआ जो एक गोल पोस्ट
0: आई थिंक सो साहब ये फाउल बनता नहीं था,
2: यानी कि आप ही कह रहे हैं कि अर्जेंटाइन को थोड़ा सपोर्ट मिला है,
0: फेवर मिली है, ये फाउल बनता नहीं था क्योंकि अगर आप देखें ना तो ग्रास्प किया हुआ था अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने स्पेन के खिलाड़ी,
2: लेकिन उसके ऊपर स्पेन का कोई उस तरह प्रोटेस्ट नजर आया नहीं, मतलब जितना बड़ा ही मैच है उस तरह प्रोटेस्ट भी नहीं किया स्पेन ने,
1: थोड़ी देर उन्होंने प्रोटेस्ट किया लेकिन वो भी उस तरह नहीं किया जैसे प्लेयर्स जो है वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का फाइनल है, लेकिन आप देख रहे हैं उसके नतीजे में अभी तक जो फुटबॉल है वो मैक्सिमम टाइम रहा भी स्पेन के पास और स्पेन बिल्कुल डी के करीब करीब है। एक और चांस यहाँ पे बन सकता है डी के पास, बिल्कुल स्पेन के पास ही बॉल है, अर्जेंटीना के प्लेयर ट्राई करे बॉल लेने की और
2: चांस
1: यहां
2: है
1: पर चांस और काफी ऊंचा हिट स्कोर किया गया मैनेजर उनके जो कोच
2: चाचा आज
1: खुश
2: खैर ही हुए
1: काफी ज्यादा लमी यमाल की जानिब से ये हिट किया गया था यहां पर अर्जेंटीना के जो कोच है वो भी काफी ज्यादा जो है वो चूंकि बड़ा टफ टाइम है ये दोनों टीम्स के लिए ऑब्वियसली जी वर्ल्ड कप का ताज जो है वो आज क्योंकि अर्जेंटीना अपने टाइटल का दिफा करके लास्ट वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है और अभी देखते हैं कि मजीद जो या तो फिर जब आगे पेनल्टी पे बॉल जाएगा फिर तो बहुत इजी ऑब्वियसली फिर जो गोलकीपर के साथ साथ प्लेयर्स चूंकि आपके पास जब मौका होता है बाज़ूकात इस तरह देखा गया है कि बड़े बड़े प्लेयर से भी मिस हो जाते हैं
2: और एक प्लेयर एक ही पेनल्टी की क्लिक सकता है
1: बिल्कुल ऐसे ही
2: जैसे 10 ओवर एक बॉलर
1: वो जो रेशो क्रिकेट में भी होती है दोनों उसकी और यहाँ पर दोस्तों 101 मिनट का गेम हो चुका है
2: यानी कि 4 मिनट मजीद रह गए हैं पहले हाफ में
1: की टीम उस तरह अटैक बिल्कुल नहीं कर पा रही जिस तरह कि अगर काउंट किए जाए 6 से 7 अटैक किए हैं यहाँ पर स्पेन की टीम ने स्पेन की टीम के पास एक दफा फिर बॉल डी के पास पहुंचेंगे और टाइम जो है वो इस वक्त
2: एंड फीफा इज लाइक जैसे आईसीसी है ओके
1: नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है कि 64 टीमें होंगी अब देखते हैं यहां पर एक और चांस लेकिन स्पेन का जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा पीछे था
2: आज किस्मत की देवी बिल्कुल स्पेन पे मेहरबान नहीं है
1: मेहरबान
2: काफी चांसेस बनाए
1: अपने अपनी जानिब से बहुत ज्यादा किए देखिएगा खुरम भाई की कितना क्लोज
2: ये खुरम भाई थले हुई देख रहे हैं मेरे ख्याल
1: और
0: तो
1: और अगर यहाँ पे हेड
2: टच हो जाए
0: जो है हेड टच हुआ है लेकिन गोल पोस्ट से थोड़ा सा दूर था
1: उनका
0: ये मार्टिनेज की भी बस की बात नहीं थी अगर ये बॉल थोड़ा सा गोल पोस्ट के अंदर होता
1: ये दोस्तों एक और चांस यहाँ पे मिस हुआ और देखिए कि मतलब यहाँ पे वो बातें तो वैसे खुरम भाई दम तोड़ रही है उनके तोड़ चुकी है कि आखिरी 15 मिनट में अर्जेंटीना के पास बॉल उस तरह आने नहीं दी और जिशान भैया सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो इसमें वही शुरू वाला 1000 रुपए मुझे याद आ रहे हैं
2: अच्छा जी ओके मूविंग फॉरवर्ड सामीन आपको बताते चले कि इस वक्त कंप्लीट हाफ हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा हाफ होते हैं उनका खेल जारी है और 2 मिनट के बाद वो पहला हाफ भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर 15 मिनट का हाफ होगा और मैं तो जैसे गेम स्टार्ट होते ही मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि पेनल्टी शूटआउट की तरफ ये मुकाबला जाएगा उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह तो उसकी ये भी है कि इंटरेस्ट भी ज़रा पैदा होता है
1: ठीक है जैसे सुपर ओवर अल्लाह खैर के बॉल पहुंची अर्जेंटीना के प्लेयर के पास यहाँ पे फिर फाउल होगा
2: वेल जनाब अगर इस वक्त एक
1: रेट उतर गया
2: हाँ रेट उतर ही बहुत उतर चला गया अगर आप स्पेन पे 1000 रुपए लगाते हैं तो आपको 800 रुपए वापस मिलेंगे यानी कि 1800 और अगर आप अर्जेंटीना पे लगाते हैं 1000 रुपए तो 32,000 वापस आएगा इस टाइम 32 रेट
1: शुरू में 23,000 था ये
2: 2300 था डबल था चूंकि वो एक प्लेयर के कम के साथ खेल रही है दैट्स व्हाई
1: क्या बात है जी दोस्तों यहाँ पर ये दोनों से अनइंटेंशनली हुआ है कि दोनों प्लेयर जो है वो बॉल की तरफ ही देख रहे थे ये देखें और बड़ी देर बाद बॉल पहुंच रही थी अर्जेंटीना तो ये इन्होंने बिल्कुल एहतजाज जरूर किया लेकिन उसमें उस प्लेयर की गलती नहीं थी जो कि वो भी बॉल ये उन्होंने यहाँ पे लमी यमाल को आके अटैक करने की कोशिश की मतलब प्लेयर्स आपस में ऑब्वियसली इतना हाई इंटेंसिटी वाला मैच है तो इतना सा
2: मारने लगे
1: का सिलसिला तो
2: अच्छा वो शायद चाह भी रहेगा थोड़ा सा कोई ऐसा केस हो जैसे पेनल्टी वगैरह मिल जाए वो देखिए जैसे उन्होंने पकड़ा
1: पेनल्टी तो डी के अंदर ही किसी को गिराएंगे तभी मामलात ऐसे हो सकते हैं और यहाँ पर हेड कोच अर्जेंटीना के काफी टेंस दिखाई दे रहे हैं सेम जो स्पेन के हेड कोच है वो भी काफी ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं अर्जेंटीना के पास बॉल है इस वक्त दोस्तों लेकिन वो उस पोजिशन और उस पेस के साथ नहीं अटैक कर पा रही यहाँ पर स्पेन की टीम में और मेसी भी काफ़ी देर से उस तरह बीच में टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर एक दफ़ा फिर
2: प्लस 3 मिनट यानी कि 18-18 मिनट के 2 हाफ होंगे अब
1: अभी सिलसिला कुछ इसी तरह का लग रहा है लेकिन एक चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे खुरम भाई स्पेन ना कामयाब हो जाएगी क्योंकि अर्जेंटीना बिल्कुल ही ना
2: अच्छा वैसे मुझे लगता है कि शायद ये सेकंड हाफ ना हो यही टोटल एक्स्ट्रा टाइम हो 15 मिनट
0: नहीं बाद है, इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा
2: एक हाफ टाइम होगा
0: जी बिल्कुल
2: ओके यानी कि 18-18-36 तकरीबन ये तो पूरे का पूरा गेम ही है दोबारा
1: ये देखते हैं कि इसमें क्या इनको टाइम मिलता है क्या
2: 18-18 मिनट
1: सूरत हाल होती है और 105 मिनट दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं
2: और एक्स्ट्रा 3 मिनट दिए गए हैं,
1: एक्स्ट्रा 3 मिनट दिए गए पहले 15 मिनट के बाद, जो 3 मिनट वो दरमियान में किसी भी रीजन की वजह से जाए हुए हैं। यहाँ पर बॉल लिया गया अर्जेंटीना की जाने, फिर बॉल एक दफा, फिर मुश्किल ये हो रही है कि वो पास नहीं कर पा रहे ना, इतना ज्यादा उनको वो कंट्रोल किया हुआ है, वो पास लॉन्ग पास करते हैं तब भी ज्यादा एनर्जी और ज्यादा तेज भाग कर स्पेन के जो जो प्लेयर है वो बॉल उनसे वापस खींच लेते हैं। 105 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर क्राउड की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है और वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 मिनट और उसके बाद जो 15 मिनट का हाफ होगा उसमें कौन सी टीम गोल करने में कामयाब होगी। तो हर एक मिनट बाद कोई ना कोई प्लेयर थले लेट जाता है, समझ ही नहीं आती, हाथ लाते ना तो लेट जाते हैं कि ध्यान पे कि हम इन्हें देखो।
2: वो आपको याद होगा एक अफगानिस्तान का मैच था किसी टीम के साथ, जो अगर अफगानिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान ने थ्रू होना था, उसमें वो आपने गुलबदीन जो है वो लेट गए थे और वो बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो वाला साहब। यार हम लोग कितनी क्रिकेट देखते हैं ना, हमारे पास एग्जांपल भी क्रिकेट की हैं, अभी भी 2-3 दफा हम अटैकिंग अटैकिंग कहते हुए अगला लफ्ज़ क्रिकेट बोलने लगे थे, यहाँ भी बोलने लगे थे, माने इस बात को, ऐसे ही है ना।
1: 105 मिनट के गेम हो चुका है दोस्तों और दोनों टीम्स भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह गोल हो जाए, और चूंकि फाइनल इस वक्त जारी है न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में,
2: ना मैच खत्म होना है तो ना अभी घर जाना है, 3:15 बजे फजर हो जाती है तो थोड़े 3 हो गए, अच्छा 18 मिनट तो आप है तो उसके बाद प्लेंटी शूट आउट,
1: उसके बाद दफ्तर भी जाना है। वैसे इस वक्त सारे लोग जा गिरे होंगे, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो सुबह के टाइम ना 10-12 मिनट की क्लिपिंग देखेंगे कि पूरे मैच की,
2: वो 12 मिनट की क्लिपिंग ठीक होती है,
1: ठीक होती है
2: लेकिन टाइम बच जाता
1: है, ध्यान नहीं लानी दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कि मजीद जो ये टाइम मिला है इसमें कौन सी टीम अभी तक फॉर फर्स्ट मिनट हावी राय जी स्पेन अर्जेंटीना के ऊपर, और काफी ज्यादा उन्होंने अटेम्प्ट्स भी किए, बॉल गोल पोस्ट तक पहुंचाई,
2: हो गए जी 3 मिनट पूरे,
1: लेकिन यहां पर
2: बड़ी पहला हाफ कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आप सेकंड हाफ और 15 मिनट्स का हाफ होगा, एक्स्ट्रा टाइम अगर चाहिए हुआ तो 3 मिनट होंगे, यानी कि 18 मोर मिनट्स टू गो, और उसके बाद फिर भी फैसला नहीं होता तो पेनल्टीज की तरफ हम जाएंगे, और आई थिंक 5 मिनट का तो ब्रेक होगा गालिबन, है ना।
1: चलें जी अब इतना चूंकि शॉर्ट टाइम है, आई थिंक 5 मिनट का, तो दोस्तों वापस आते जैसे गेम का आगाज होता है हमारे साथ रहेगा।

0: जिसका इंतजार था वो हो चुका और इस दफा कंफर्म गोल स्कोर है और बहुत ही जबरदस्त गोल स्कोर किया है। स्पेन के तमाम खिलाड़ियों के अंदर खुशी की एक लहर है और मेसी जो है वो इस वक्त परेशान दिख रहे हैं और इस तरह पहला गोल स्कोर करने में कामयाब हुई है स्पेन की टीम और इस तरह स्पेन एक गोल की लीड के साथ, अर्जेंटीना 0 स्पेन 1 और मेसी बहुत परेशान दिख रहे हैं और मेसी को जैसे लग रहा है कि उनके हाथों से ये वर्ल्ड कप जो है वो जा रहा है और वो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप कंसेक्यूटिवली अपनी टीम को जितवाए और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं जी यमाल और यमाल के साथ उनके वो खिलाड़ी जिन्होंने गोल स्कोर किया और राइट विंग के साथ साथ बाल जो है आगे बढ़ा और एक हेड स्कोरर के साथ आई थिंक सो बाल बचा और ले यमाल, आई थिंक सो यमाल ने गोल स्कोर किया है, नहीं यमाल नहीं थे
1: लेकिन बहुत ही यंग है जो
0: इतना ही पावरफुल गोल था और यकीनन ये गोल जो है वो रोकना मार्टिनेज की बस की
1: बात से नाम स्टार्ट होता है
0: और 7 नंबर की जर्सी में
1: खिलाड़ी थे, नहीं
0: 7 नंबर की जर्सी में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर उन्होंने पहना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत गोल। और लीजिए जनाब देखिए स्पेन वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब करीब और खुशी दीदनी है दिख रही है और मेसी की परेशानी दिख रही है कि मेसी जो है उनको लग रहा है कि हाथ से मैच जो है वो जाता दिखाई दे रहा है और जीशान डेफिनेटली स्पेन जो है वो इस बात का हकदार है कि वो इस वर्ल्ड कप को लेके जाए,
1: कोई शक नहीं
0: क्योंकि जिस तरह स्पेन खेला है आज और जिस तरह स्पेन ने अटैक्स किए हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो
2: काफी देर से जो अटेम्प्ट्स की जा रही थी गेम के
1: क्राउड इज क्राइंग एक्चुअली यार इमोशंस आर एट द पीक और बादशाह फुटबॉल का बादशाह बनने और स्पेन के फुटबॉल का बादशाह बनने के दरमियान सिर्फ और सिर्फ अब आई थिंक 10 मिनट का फासला है। अगर 10 मिनट कोई गोल स्कोर नहीं होता अर्जेंटीना की जानिब से तो फिर स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया बादशाह बनने जा रहा है, ऐसा ही है
2: बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों। यहाँ पे स्पेन ने गोल कर दिया है और कमाल का गेम स्पेन की जानिब से खेला जा रहा है और इस वक्त जी आरजे सलमान खान जो है वो भी हमें सुन रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया है और कह रहे हैं कि स्पेन इंशाल्लाह जीतेगा। प्यारे दोस्तों को उन्होंने सलाम कह दी, वालेकुम सलाम सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपने कहा कि जो मेरा मैच में पसंदीदा खिलाड़ी अंपायर है ये आपने पहले कहा था लेकिन अभी गोल होने के बाद मेरे ख्याल से सलमान भाई आपकी जो राय है वो बदल चुकी होगी चुके
0: हैं और स्पेन ने और 11 जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर अटेम्प्ट्स किए हैं और एक बहुत ही मजेदार बात वो ये मजेदार बात कि अर्जेंटीना ने 0 अटेम्प्ट्स किए,
2: 0 वही मैं हम बार बार जब बात करें कि जब से गेम का आगाज हुआ है ऑलमोस्ट हम साथ साथ गिनवा रहे हैं कि ये अटेम्प्ट किया गया गोल पोस्ट के पास बॉल की जैसे भी आपने बिल्कुल क्लियर बताया तो अर्जेंटीना की जानिब से बिल्कुल उस तरह नजर नहीं आया था गेम। पहले तो हम ये इंतजार कर रहे थे कि 75 मिनट्स खत्म हो फिर उसके बाद वाला सिलसिला जो है वो शुरू होगा लेकिन यहाँ पर स्पेन ने वो कर दिखाया जो
1: लड़का हीरो बन गया भाई है ना काफी यंगस्टर है
2: करियर जो है वो यकीनी तौर पर बूस्ट अप होगा। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों फुटबॉल में आप वर्ल्ड कप में उस मैच में जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो चैंपियन बने एक बहुत अहम किरदार होता है लेकिन अर्जेंटीना भी हार नहीं मानने की कोशिश करेगी वैसे भी काफी ज्यादा उनको सपोर्ट किया जा रहा है लेकिन वही है कि एक चांस यहाँ पर बनाया गया अर्जेंटीना के प्लेयर की जानिब से लेकिन बॉल जो है इस वक्त स्पेन की डी में मौजूद है जो कि ज्यादातर रहा ही नहीं एक अटेम्प्ट भी उस तरह नहीं की गई अर्जेंटीना की जानिब से कि स्पेन के गोलकीपर को किसी भी किस्म की एफर्ट करनी पड़े। मार्टिन्स ने 5 से 6 गोल्स जो हैं वो गोल पोस्ट के दरमियान से उनको सेव करने की कोशिश की लेकिन जो ये लास्ट गोल हुआ ये उनके बस की बात नहीं थी और काफ़ी दूर से हिट किया गया बॉल जो कि स्पेन के गोलकीपर के पास बॉल पहुंचा और अब इन्होंने इसी तरह टाइम जो है वो किल करना है। 110 मिनट हो चुके हैं दोस्तों ये वो गोल दिखाया जा रहा है पहले ट्राई किया गया ये तो उनके बालों ने बड़ा
1: अच्छा उन्होंने डेलिबरेटली हेडशॉट से पास दिया है उसको अगर आप देखें तो इट्स नॉट द फ्लूक और समथिंग डेलिबरेटली उन्होंने हेडशॉट से पास जो है उस तरफ भेजा है।
2: खुशी का अंदाजा करें जो वीवीआईपी बॉक्सर्स
1: उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसी पैंट कोट पाए हुए नहीं
2: फुटबॉल के फैंस बहुत क्रेजी है दुशान भाई ये खुरम भाई चूंकि उसको फॉलो करते हैं आप जब इनके क्लब लेवल पर मैचेस होते हैं और बाजूकात आप यकीन जानिए कि अमन अमान की जो सूरत हाल है स्टेडियम से बाहर
1: वो काम
2: करना काफी मुश्किल हो जाता
1: है
2: और ये डेफिनेटली अर्जेंटीना के फैंस जो हैं वो दुखी जरूर होंगे ये जो वर्ल्ड कप का दिफा था
1: अपने टाइटल
0: के लिए ना कैनी साहब पी लटकन शाह हो अगर तो फिर अर्जेंटीना जो है वो शायद के गोल स्कोर बराबर कर ले, इनको जरूरत है अभी पी लटकन शाह की
2: वो जाके वहां पे लटक जाए स्टेडियम के दरमियान वगैरह गोल सुपर नहीं जा सकता जी। और स्पेन की टीम यकीनी तौर पर जी बहुत मेहनत की ओवरऑल इस टूर्नामेंट में दोनों टीम्स ने, लेकिन दरमियान में कुछ सपोर्ट भी मिली अर्जेंटीना की टीम को। देखें
0: अच्छा अर्जेंटीना को कैनी साहब एक और प्रॉब्लम इस वक्त ये भी है ना कि वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी उनका आउट भी है और 10 खिलाड़ियों के साथ डेफिनेटली जो है वो डिफेंस करना, अटैक करना या सेंटर पे पोजीशन बनाना बाकी मुश्किल काम है। और अब तो एक गोल स्कोर भी लग चुका है, साइकोलॉजिकली भी वीक हो गए हैं, लेकिन स्पेन को इस वक्त ये चाहिए कि वो अटैक्स बरकरार रखे। अगर वो डिफेंडिंग पोजीशन पे गए तो अर्जेंटीना गोल निकाल
2: देगा, क्योंकि विद इन सेकंड में गेम पलटती है। जैसे कि स्पेन ने गोल किया तो यहाँ पे वो चूंकि साइकोलॉजिकली हावी है इस वक्त अर्जेंटीना की टीम पे, जिस तरह उनकी क्लोज पासिंग चल रही है और जिस तरह वो थ्रू आउट मैच खेलते रहे, ये टाइम अगर इसी तरह वो लेके चलेंगे तो डेफिनेटली
1: क्या खूबसूरत पासिंग चल रही है यार,
2: एक डेढ़ मिनट से किस तरह
1: क्या खूबसूरत पासिंग।
2: एक चीज का अंदाजा करना विहान भाई, जैसे अर्जेंटीना के किसी खिलाड़ी के पास बॉल जाती है स्पेन के खिलाड़ी उस पे हावी हो जाते हैं, और यहाँ पे अर्जेंटीना के खिलाड़ी दूर से बस उनको फॉलो कर रहे हैं कि कहीं दूसरे को पास करें तो हम उनसे बॉल खेचे। एक दफा फिर डी के पास बॉल पहुंचा और ये यहाँ पर देखते हैं कि अर्जेंटीना की डी के पास बॉल
0: ऑफसाइड ऑफसाइड करा दी है।
2: एक और यहाँ पे एक गोल तो हो चुका है, 112 मिनट की गेम हो चुकी है, अब
1: आखिर
2: कुछ टाइम है जो कि यहाँ पर
0: स्पेन ने जी 744 से वो पासेस कंप्लीट
2: किए और अर्जेंटीना ने
0: 324
2: वही देखें कि मतलब बिल्कुल ही
0: स्पेन का हक बनता है कि आज वो ये वर्ल्ड कप लेके जाए। बहुत अच्छा खेले स्पेन, और एक और चांस है जी, बहुत ही ओपन चांस, और ये लीजिए जी
1: गोल और सेम लड़के रे क्या कहने के बुला,
0: इट्स एन ऑफसाइड, इट्स एन ऑफसाइड, ये गोल नहीं है,
1: वापस जी सारियां चीका वापस
0: ऑफसाइड। अगर आप जो आपका खिलाड़ी अपोजिट खिलाड़ी है अगर आप उससे पहले खड़े हैं आप उस और बॉल आपको टच हो जाता है और आपको मिलता है तो आप ऑफसाइड करा दी जाते हैं। तो ये होता जरूरी है कि जब आपको बॉल पास ऑन किया जाए तब आप जो डिफेंडर हैं दूसरी टीम के उससे आप पीछे खड़े हो,
2: पीछे खड़े
0: हो आप गोल पोस्ट से दूर हो ताकि आपका बराबरी हुई है ना हो कि आप गोल पोस्ट, फिर अगर ऐसा हो तो सारे खिलाड़ी गोल पोस्ट में खड़े हो जाए उधर ही बैठ जाए और गोलकीपर ही बॉल उनको देता जाए।
1: मेरा कसम है मैन सर वे पता थी कि बॉल जावे तो गोल है
2: नहीं नहीं देखिए ऑफसाइड का चूंकि जो
1: मेरे नजदीक तो पिछला वाला भी गोल था वो जो हुआ है वो दिया नहीं था,
2: इजिप्ट वाला जो हुआ था ना वो भी ऑफसाइड उन्होंने एकदम करा दिया था, तो उस पे भी ये अर्जेंटीना के हवाले से बातचीत की। बहरहाल दोस्तों 1-0 है यहाँ पे और अर्जेंटीना अब तक उस तरह नहीं फाइट कर पा रही, और मैंने लगता है कोई 10 सेकंड ना फोरम भाई अगेन है
1: अब उन्होंने पेड वर्जन ले लिया
0: पहले भी शायद वो गेम
1: पहले 1-on-1 का वाईफाई होगा मैम जोक किया जरा
2: मैं इस दफा उन्होंने पहले 10 देता सामने
0: गरम हो गया मैच गरम हो गया।
2: अर्जेंटीना इस वक्त डी में दाखिल हो चुकी है स्पेन की, और
1: यार ऐसे गोल होना चाहिए जरा मजा आए थोड़ा,
2: तुम ही जानते हो अर्जेंटीना ये लगा हुए हैं
0: मेसी 50% गोल स्कोर जो है वो कंसीडर किया जाता है कॉर्नर किक को, अच्छा बॉल बनाया है अगर इससे फायदा उठा सकते हुए तो अच्छा बॉल है
2: और
0: ये है मेसी
2: गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल जो है
0: देखा होगा कि बिल्कुल गोल पोस्ट के पास बॉल गिरा है और जब आप उन्हें हिट किए तो आपको लग रहा था कि शायद ये मिलो दूर जाएगा,
2: मिलो दूर जाएगा जी, ये हिट जरूर किया मैंने, लेकिन
0: क्या करली बॉल फेंका है मेसी, ये मेसी की टेक्निक है, ये मेसी का जादू है।
2: आखिर के कुछ टाइम है देखते हैं
0: पोजीशन कहा जाता है
2: कि यहाँ पे वो गोल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। स्पेन यहाँ पे गोल करने में कामयाब हो चुका है, क्या जबरदस्त किस्म का गोल किया था उन्होंने स्पेन की टीम की जानिब से। मेसी और उनके फैंस जो हैं वो इस वक्त यकीनी तौर पर परेशान होंगे ऑब्वियसली, चूंकि उनके अगर मार्टिन्स की बात की जाए गोलकीपर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो गोल आखिर का नहीं रोक पाए। दोस्तों यहाँ पर 115 मिनट का खेल हो चुका है, स्पेन का एक गोल है, अर्जेंटीना 0, और स्पेन एक दफा फिर अर्जेंटीना की डी के करीब पहुंच चुका है, एक अच्छा पास यहाँ पे लेकिन बहरहाल अभी स्पेन जो है वो चूंकि एक गोल उनका हुआ हुआ है वो इतनी ज्यादा टेंशन फिलहाल नहीं ले रहे, लेकिन अर्जेंटीना यहाँ पे अपनी जो वर्ल्ड कप का सफर है वो इस वक्त किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गोल चंद सेकंड्स की बात, लेकिन यहाँ पे आज ये जरूर साबित हुआ, जैसे कि अभी हमने आपको अटैक्स भी बताए कि बहुत ज़्यादा फर्क रहा है अर्जेंटीना और स्पेन के अटैक्स के दरमियान। स्पेन ने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए, अर्जेंटीना असर नहीं कर पाई, एक दूर से पास जरूर दिया लेकिन ये भी बाहर की जानब जाएगा, कोशिश जरूर की गई अर्जेंटीना के प्लेयर की जानब से, और यहाँ पर हिट जरूर किया गया लेकिन बॉल जो है जो स्पेन के प्लेयर के फेस पे आई थिंक जाके लगी है। और 116 मिनट की गेम हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर 1-0 है स्पेन की टीम का, एक गोल है, ये मेसी ने ट्रायल जरूर किया था और फेस पे डायरेक्ट जाके बॉल लगा और काफी तेज पेस के साथ ये हिट की गई थी, बॉल डी के अंदर थे स्पेन के प्लेयर और मेसी का ये बॉल हिट हुआ था दोस्तों उनके जाके डायरेक्ट फेस पे लगा। ये मिल जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम चूंकि इसकी इंजरी शंजरी का टाइम होता है, लेकिन अगर ये कहा जाए 70-80% फॉर बाई मैच स्पेन जीत गया, बल्कि ज्यादा चूंकि एक गोल जो है वो ऑब्वियसली अगर 113-114 मिनट
1: आपने स्पेन की स्पोर्ट में रेड पहना हुआ था आज,
2: नहीं ये वैसे
1: कुदरती हो गया, ये हो गया
2: इत्तेफाक से, और ऑफ साइड ये जो पहले वाला गोल था ये शायद वो ऑफ साइड आपको दिखा रहे हैं, जी हाँ ये वही वाला सिलसिला है। बहरहाल दोस्तों स्पेन के फैंस दुनिया में जहां पर भी मौजूद हैं ऑब्वियसली वो सेलिब्रेशन का आगाज
1: आज उनके टिकटॉक पे देखने वाली होंगी।
2: हाँ वैसे ये भी
1: मैं कसम सोना नहीं आज जाके सारे इंस्टा पे रील्स देखना
2: जी ये इस वक्त डेफिनेटली जी अर्जेंटीना
1: के जिस बंदे ने पाकिस्तानी 5-5 लाख का टिकट लिया होगा अर्जेंटीना वालों ने, वो तो कह रहे होंगे यार गड्डी अपडेट कर लेंगे यार की होगा सर,
2: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये फुटबॉल के फैंस
1: सर जी ये पहले ही होता है, ये हम भी क्रिकेट की जब पीएसएल का फाइनल के टिकट लेते हैं ना वो 25-25 हजार की बात करता छोड़ो यार कड़ी एप्पल वॉच ले लेंगे यार अपडेट कर लेंगे।
2: दोस्तों 118 मिनट का खेल यहाँ पे हो चुका है, स्पेन इस वक्त 1-0 से बर्तरी उन्होंने हासिल की हुई है और फुटबॉल का नया बादशाह कौन बनेगा, टाइटल इस वक्त अर्जेंटीना के पास है और स्पेन की टीम यहाँ से टाइटल लेने में कामयाब ऑलमोस्ट वो हो चुकी है,
1: यानी कि 2 मिनट टाइम और 4-3 एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं तो मैक्सिमम 5 मिनट का गेम है, अब और 5 मिनट है अर्जेंटीना के पास अगर वो गोल स्कोर करती है
2: और देखिए वो मौका ही नहीं दे रहे उनको, जैसे अर्जेंटीना के पास बॉल जाता है तो उसका खिलाड़ी फौरन से उनके पास होता है, लेकिन जब स्पेन के पास मौजूद होती है बॉल तो यहाँ पर बी के करीब पहुँचाइए बॉल और यहाँ पर स्पेन के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल को एक दफा फिर दूर फेंका है। 119 मिनट हो चुका
3: है, रेफरी ने कार्ड इशू नहीं किया,
2: मेसी यहां से बॉल लेकर आगे जाएंगे दोस्तों डी के करीब तो खैर नहीं, लेकिन फ्री हिट का एक चांस बना है, अब इसको कैसे वो कन्वर्ट कर पाते हैं गोल में या कोई अटैकिंग पोजीशन बनाते हैं ये आपको हम जरूर बताएंगे। 119 मिनट और 26 सेकंड का गेम इस वक्त हो चुका है, अर्जेंटीना के पास बिल्कुल आखिरी कुछ लम्हे हैं कि वो फेस कर सके अपने इन तमाम मामलात को, पास हुआ तेज किया अर्जेंटीना ने, अच्छा पास और यहां पर मिस हुआ,
3: बहुत अच्छा बॉल, कमाल का पास था, बहुत ही कमाल। देखिए मैंने आपको कहा था कि मेसी जब असिस्ट की पोजीशन पे जाएंगे तो मेसी बहुत डेंजरस हो जाएंगे,
1: तो आपको नहीं लगता कि जितनी अच्छी गेम अब अर्जेंटीना खेल रहा है थोड़ा सा पहले अगर खेलता तो मामला बड़े,
2: मेरे ख्याल से पहला अटैक था इनका,
1: पहला अटैक था सही है,
2: एक इससे पहले जो मेसी ने बॉल
3: पोजीशन डू एंड डाई है ना,
2: हाँ अब तो वो सिलसिला नहीं है, तो एक
1: 5 मिनट मजीद दिए गए हैं जी,
2: लास्ट 5 मिनट चैंपियन इस वक्त कौन होगा, आखिरी 5 मिनट दोस्तों बताएंगे और यहाँ पर मेसी जो है यहाँ पर कॉर्नर से उन्होंने डी के दरमियान में ही बॉल है और यहाँ पर
3: अगेन कॉर्नर है,
2: एक और कॉर्नर
1: फिर वापस दोबारा,
2: ये वैसे मेसी के काफ़ी ज़्यादा ऐसे गोल जो कॉर्नर से भी हुए हैं लेकिन उसको डायरेक्ट उस पास को कन्वर्ट करे थ्रू हेड कौन, ये देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी
1: के साथ आया ना,
2: नहीं दोबारा आपको करना पड़ेगा। 120 मिनट दोस्तों एक्स्ट्रा 5 मिनट में से भी 43 सेकंड का गेम हो चुका है, स्पेन इस वक्त 1 गोल कर चुका है, अर्जेंटीना 0 स्पेन 1 और यहाँ पर कॉर्नर से ट्राई करेंगे मेसी एक कॉर्नर
1: पास,
2: लेकिन यहाँ
1: यार ये तो बहुत सही था, थोड़ा सा बहुत करीब,
2: ये दो अटेम्प्ट्स क्लोज क्लोज थी,
1: बहुत क्लोज थी, ये वाली तो बहुत ही क्लोज थी यार, इस पे तो टाइम भी था उसके पास, लेफ्ट राइट में कोई इतने बंदे नहीं थे यार। ओहो डोंट क्राई,
2: अर्जेंटीना के फैंस ही
1: क्या, वो अर्जेंटीना के फैंस क्राई,
2: डोंट क्राई, ये देखें टाइम था लेकिन बॉल जिस तरह उन्होंने
1: हिट, अरे तो बहुत टाइम है, ये देख रहे ऊपर मार दिए बॉल यार, दिस इज रॉन्ग यार,
2: वैसे रुला रहे अपने फैंस को दिखा,
1: सीरियसली दिस इज रॉन्ग, वो नीचे हिट तो नीचे करे, चले वो रोक भी लेता लेकिन लेट्स चांस तो बनता, ये ठीक नहीं बन रहा है। सही बात है,
2: एक मिनट और 39 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आखिरी 5 मिनट और उसके बाद ऐलान हो जाएगा कि कौन वर्ल्ड कप का बादशाह बनेगा। स्पेन के हवाले से काफी ज्यादा फैंस है
1: और हम भी अपना 2200 लेके घर जाएंगे।
2: तीन महीने यहाँ पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर जो गोलकीपर उसने देखें थ्रो किया काफ़ी दूर तक, वो बॉल पहुँचा और टाइम इस वक्त मजीद जो है वो 2 मिनट का गेम हो चुका है, आखिरी 3 मिनट है दोस्तों, और यकीनी तौर पर सेलिब्रेशन का आगाज़ कर दिया होगा स्पेन के फैन दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया के जरिए,
1: बहुत क्लोज था
2: यार, वैसे जितने भी लोग होंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे, और एक अच्छा यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, स्पेन के फैंस के लिए काफी ज्यादा इस वक्त गुड टाइम चल रहा है, और एक दफा डी के करीब बॉल पहुंची और ये स्पेन के खिलाड़ी यहाँ पे गिरे हैं, देखना ये पड़ेगा क्या आखिरी का थोड़ा सा
1: टाइम, स्पेन वाले जब खुश होते हैं वो एक बड़ा मजे का वर्ड है कुछ वो बोलते हैं, हम इधर गूगल चेक करते हैं, क्या मुबारकबाद को क्या कहते हैं, मुबारकबाद इन
2: स्पेनिश,
1: स्पेनिश
2: मैसी जो है वो ऑब्वियसली जी अपने करियर का वर्ल्ड कप का आखिरी मैच वो खेल रहे हैं,
1: फिलीज
2: फैंस यहाँ पर स्पेन के काफी ज्यादा चेहरे उनके मुतमैन हैं, टेंस जरूर हैं लेकिन जो कि उनका एक गोल हो चुका है,
1: समझ नहीं आ रही कि मैं जीत गया फैंस टू
2: नहीं, आज उन्होंने गेम बहुत अच्छी खेली अर्जेंटीना को,
1: सही गेम डाली है
2: बिल्कुल, अर्जेंटीना को आगे नहीं आने दिया, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अब से कुछ ही देर में बजर होगी और चैंपियन जो है वो सेलिब्रेशन का आगाज़ होगा, अब देखें थोड़ी थोड़ी छाऊँ स्टेडियम में, और ये शामिल जो आप कह रहे थे ना कि मतलब बिल्कुल अंधेरे में मैच होना चाहिए, और 120 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, 5 मिनट का भी जो वक्फा टाइम दिया गया था उसमें से भी 3 मिनट और 45 सेलिब्रेशन का आगाज़ होगा, अब देखें थोड़ी थोड़ी छाऊँ स्टेडियम में, और ये शामिल जो आप कह रहे थे ना कि मतलब बिल्कुल अंधेरे में मैच होना चाहिए, और 120 मिनट मुकम्मल

0: स्पेन के प्लेयर्स बहुत दूर दूर रहते हैं जब उनके पास बॉल है. स्पेन एक दफा फिर बॉल को
1: लास्ट 10 सेकंड पे काउंट डाउन करेंगे, ठीक है, काउंट डाउन करेंगे लास्ट 10 सेकंड्स पे, ठीक है,
0: बस नेड़े ही है.
1: हां जी
0: खुरम भाई तुसी थोड़ा गया दसो की होया.
2: अभी जो है वो काफी टेंस सिचुएशन चल रही है. अर्जेंटीना कोशिश कर रही है और अर्जेंटीना ने जो इस वक्त पोजीशन बनाई है कैनी साहब, वो ये बनाई है कि वो जो भी बॉल उनके पास आ रहा है वो उसको डी में पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब डी में आप बॉल पोस्ट करते हैं
0: तो जो उनके मार्टिन्स भी आ गए हैं दरमियान में.
2: हाँ, और मार्टिन्स भी आप
0: देखेंगे
2: भी अभी ना वो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे 10 खिलाड़ी जो है वो आगे हैं आगे और कोशिश कर रहे हैं गोल स्कोर.
1: 10
2: बहुत मुश्किल है.
1: 9
2: तो
1: 8
2: काफी डेंजरस पोजीशन है.
1: 7
2: आखिरी
1: 5 4 3 2 1 इसी के साथ आपको बताते चले फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल की दुनिया का नया बादशाह स्पेन.
0: स्पेन ने जी कामयाबी हासिल कर लिया फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026. स्पेन ने जीत लिया है, तारीख रकम कर दी है स्पेन ने एक वर्ल्ड कप. और अर्जेंटीना की टीम जो पूरे वर्ल्ड कप में सपोर्ट मिलती रही इनको, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी गेम भी खेली, लेकिन फीफा की जानिब से और कुछ डिसीजन की जानिब से काफी ज्यादा उनको सपोर्ट मिली, लेकिन यहां पर जीता वही जिसने मेहनत की. फाइनल में आज फॉर वन मिनट जैसे गेम का आगाज हुआ था हम आपको बताते थे कि स्पेन ने काफी ज्यादा एफर्ट की है, स्पेन जो है बहुत तगड़ी गेम खेल रहा है. ये अर्जेंटीना के कोच क्या कहना चाह रहे हैं स्पेन के प्लेयर को ये समझ से बाला तर है, लेकिन फाइनली फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन जीतने में कामयाब हुआ. हजारों की लाखों करोड़ों की तादाद में स्पेन के फैंस हैं जो इस वक्त यकीनी तौर पर इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा जो है वो खुशी का लम्हा है कि एक टीम जो है एक मुल्क जो है अपने टीम को फुटबॉल का वर्ल्ड कप, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखा जाता है और इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. फाइनली फुटबॉल की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ, नया बादशाह सामने आ गया. स्पेन अपना फीफा में दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ है वर्सेज अर्जेंटीना, 1-0 से कामयाबी हासिल की. ये देखना चाह रहे हैं हम काफी देर से. जी खुरम भाई
2: लीजिए जी, हमने जो
0: प्रेडिक्शन नजर नहीं आया अभी तक
2: निशान, हम
1: जी जी
2: क्यानी भाई और हम जो है जीत गए.
1: जी जी जी
2: इसमें फिर आप क्या हमें क्या आप
0: जो हमें आप इस तरह वो करके
1: दिखाएं, इस तरह करके दिखा
2: आप क्या फाइन देना चाहते हैं
1: सर, आप जो कहें सर, एनीथिंग सर.
2: और आई थिंक सो मुझे आज के इस मैच के बाद ये भी एहसास हुआ है कि यार मेरी फुटबॉल सेंस अच्छी है.
1: ऐसे ही अच्छा मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी दुआ बड़ी लगती है. देखिए मैच उस टाइम पे तो बराबर हुआ है ना, 0-0 हुआ था उस टाइम पे, मेन टाइम पे तो नहीं ना मैच.
0: ठीक कह रहे हो
2: यानी भाई आपको क्या एहसास हुआ?
0: मैंने बड़ा मजा आया जी आप.
1: हमें ये भी एहसास हुआ है कि सही लम्हे पीटीवी सेंसर कर देता है, ये भी बड़ा मजा.
0: आज नहीं कर पाया ना,
1: आज नहीं कर पाया
0: वही ना, उन्होंने समझ नहीं आरसी की. उसी टाइम आपको ये कह रहा था
1: यार ये लड़का हीरो बन गया ना.
0: ऑब्वियसली एक जो गोल
1: है क्या नाम क्या है भाई का,
0: और
1: एफ से नाम है कोई, आई थिंक टॉरेस.
0: क्या जबरदस्त गोल इन्होंने किया अपनी टीम के लिए, यमाल का पास था और अर्जेंटीना नो डाउट इस पूरी गेम में
1: और आज के प्लेयर रो रहे हैं उनके
0: जो नहीं वो कर सकी. और फाइनली फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त सेलिब्रेशंस का तो थोड़े से लम्हात हैं दोस्तों आपको सुनवाते हैं.
3: To report, it's purely incidental and academic that Leandro Paredes, we are told, was sent off after the final whistle then in the fracas. That is the detail. Oh brother, how proud he must be, the three-year-old Lamal, who has such a fraternal bond with Lamine. And stellar Spaniards and every regular walk in the streets of Madrid and Valencia, of Pamplona, of Girona, they are all united now in a moment of huge, huge triumph.

0: उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुम पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झुक कर गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया।
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔